0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर स्वागत है आप सबका। कितना कुछ हम जान गए हैं और कितनी आसानी से उसे अगर हम अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं तो जिंदगी आसान हो गई है। पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि जो कार्मिक पूरा का पूरा एक सिनेरियो है, जो कार्मिक फिलॉसफी की हम बात करते आ रहे हैं, एक बात बहुत क्लियर हुई थी कि कितने जन्म कितने ही लिबास हम बदलते आ रहे हैं, लेकिन जो संस्कार जो हम कर्म करते आ रहे हैं वो साथ साथ उसकी याद उसका इम्प्रेशन हमारे साथ साथ चलता आ रहा है, क्योंकि हम वो सोल हैं। और आगे अगर हम देखें तो एक और बात बहुत क्लेरिफाई हुई थी कि मैं अगर आज इंसान या मनुष्य की योनि में हूँ तो मैं मनुष्य की योनि में ही रहूंगा या रहूंगी, और अगर मैं पशु की योनि में हूँ तो वो योनि ही चलती रहती है। कोई भी इंसान पशु योनि से इंसान की योनि से पशु योनि में नहीं जाता और कोई भी पशु योनि से इंसान की योनि में नहीं आ सकता। तो ये एक जो हमें भय था वो खत्म हुआ। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस पूरी फिलॉसफी को कुछ और गहरे में उतर कर जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब लगता है कि शायद हम तैयार हैं। और हर बार की तरह हमारे से बात करने के लिए, हमें इस पूरी फिलॉसफी के बारे में समझाने के लिए हमारे साथ है सिस्टर शिवानी ब्रह्मा कुमारी। सिस्टर शिवानी ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, क्या वो जो जन्म मैं गुजार के आई हूँ, क्या उसमें आज की मेरी जो प्रॉब्लम है वो छुपी हुई हो सकती है?
1: एवरी टाइम हमेशा ही होगी, क्योंकि जब हमारा एक एपिसोड फिनिश होता है या जहां से हम अपनी नेक्स्ट लाइफ शुरू करते हैं, यू नो, आत्मा, लेट्स इमेजिन अभी मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, अभी जब मेरा समय आएगा कि जिन आत्माओं के साथ मैं अभी कनेक्शन में हूँ उनके साथ लेन देन अभी के लिए पूरा हुआ, उस क्षण आत्मा ये शरीर छोड़ देगी और ये शरीर छोड़कर ये वहां जाएगी जहां इसके लिए दूसरा शरीर ऑलरेडी तैयार हो रहा है। सो इन द वूम्ब ऑफ द मदर द बॉडी इज गेटिंग डेवलप्ड, यू नो, माँ के गर्भ में। तो अप्रोक्सीमेटली इन द फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी
0: द सोल एंटर्स
1: एंड तब हम कहते हैं कि वो हलचल शुरू होती है एंड पूरी बॉडी डेवलप होना शुरू होती है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड द कर्म ऑफ द सोल जो एंटर हुई है उस अनुसार शरीर भी डिवेलप होता है। आज आप देखो, अगर हम अपने कर्मों को एक लाइफ से रिस्ट्रिक्ट करें तो वी विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन आर बर्थ। यू नो, कोई बच्चा एक बहुत ही अच्छे परिवार में जन्म लेता है जहां सब कुछ है, कोई ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां भोजन भी नहीं मिल रहा, कोई ऐसे परिवार में जन्म लेता है कि उसके जन्मते ही उसके माता पिता अलग हो रहे हैं, सो ही इज बीइंग बोर्न इनटू अ ब्रोकन फैमिली, कोई जन्मते ही कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, उसने अभी तो कोई कर्म ही नहीं किया, अभी तो वो आत्मा माँ के ही गर्भ में है तो भी उसका शरीर वहीं से ठीक से फॉर्म्ड नहीं है। अब उसकी पूरी जीवन थोड़ी सी बाकियों से डिफरेंट तो रहेगी, तो मैं बाकियों से डिफरेंट क्यों, ये किसने डिसाइड किया? ये सारे मैं कहाँ पैदा होंगी, किस एनवायरमेंट में, किस कल्चर में, किस सेट ऑफ पेरेंट्स के साथ और किस फिजिकल शरीर को लेकर? किसी का शरीर बहुत हेल्दी है, किसी का बचपन से ही बीमार है, किसी के लिए कोई डिसेबिलिटी है तो कोई मेंटली रिटार्डेड है, उसकी पूरी लाइफ क्या है? और जब आप देखो कि जब एक घर में बच्चा पैदा होता है ऐसे, तो वो अकाउंट सिर्फ उस आत्मा के लिए नहीं है जो उस घर में आई है, लेकिन उन सभी आत्माओं के लिए है। तो मैं जो बच्चा, मैं आत्मा जो उधर जन्म ली, मेरा आपके साथ उस तरह का कोई अकाउंट है, तो मैं उस अकाउंट को, वो ये बहुत डीप लोन है जो आपने मेरे से लिया हुआ था, अब पूरी जीवन आपको मुझे संभालना पड़ेगा, आई विल नेवर बी इंडिपेंडेंट, तो आपको मेरी जिम्मेवारी पूरी जीवन लेनी है, ये आपका अकाउंट है। पूरी लाइफ ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, सारे बच्चे तो ठीक है, सबके बच्चे तो ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों, तो वो दर्द को बढ़ा देता है, वो अकाउंट को और बढ़ा देता है। एक्सेप्ट कर ले, है हमारा उस आत्मा के साथ कोई अकाउंट, अब उसको इतना स्नेह दे, इतना प्यार दे, इतने स्नेह से उसकी परवरिश करे, दर्द से नहीं, नेगेटिव एनर्जी उस घर में ना आए, जो भी है सिचुएशन एक्सेप्ट करे, पॉजिटिव एनर्जी उस आत्मा को भी दे, तो वो आत्मा भले उस रियलाइजेशन में शायद नहीं है अभी, लेकिन उसके भी अकाउंट फिर इजिली चुक तो हो जाए। और ये इसीलिए हमें समझ में आता है कि पास्ट में कुछ मैंने जो ऐसा किया दैट डिसाइड्स कि मेरा जन्म कहाँ होगा। अगर वो एक ही लाइफ टाइम में रिस्ट्रिक्टेड होता तो सभी का नेक्स्ट बर्थ if it has to start fresh with a fresh account, then from birth at least everything should be perfect. फिर उस जन्म में मैं जो कुछ भी करूं उसके हिसाब से मेरे साथ अच्छा और बुरा होता जाएगा. और आज साइंस भी इसमें बहुत रिसर्च कर रहा है, बहुत सारी रिसर्च हो रही है रीबर्थ पर. यू नो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है दूसरे, तो पहले तो उसको अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृति है. और एक्चुअली गर्भ में जो समय आत्मा रहती है तो बहुत सजा तो उसी में भोग लेती है, क्योंकि उसको सारा कुछ याद होता है उस समय. जो कहते हैं ना, अपनी पूरी जीवन की रील आपके सामने आती है कि मैंने क्या क्या पिछले जन्म में किया. क्योंकि when the soul is not attached to the new body and it is detached from the previous body, तो pure it's soul conscious stage. और soul conscious में हमें अपना सही और गलत बिल्कुल क्लियर दिखता है,
0: कोई कन्फ्यूजन में जी रहे हैं
1: बिल्कुल. तो तब सबसे ज्यादा भोगना उसमें होती है. और तब आत्मा अपने आप से बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करती है कि इस जीवन में आकर अब मैं ये सारी गलतियां.
0: अच्छा, एंड दिस ऑल इज हैपनिंग व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम.
1: चाइल्ड मीन्स व्हाट? द सोल ना, इट्स इन अ डिफरेंट कॉस्ट्यूम, दैट्स ऑल. लेकिन जब बाहर आती है, अब छोटा बच्चा है वो भी पास्ट से ही कनेक्टेड है, वो अपने बहुत नजदीक के लोगों से उसका बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है. इसलिए हम छोटे बच्चे को देखते हैं, कभी हंसता है कभी रोता है, ऑल पास्ट मेमोरीज जो वो रिवाइंड कर रहा है. बाय द टाइम द चाइल्ड इज 2-3 इयर्स ओल्ड, उसका प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन लेयर वो सब इम्प्रेशन के रूप में कोड होता जा रहा है. पास्ट इज मर्ज्ड. तो जब तक वो बोलने की एज में आता है, उसको पूर्व जन्म की बातें सारी भूल जाती है. एंड विच इज वेरी गुड, लॉ ऑफ नेचर इज लाइक दिस. लेकिन कई बच्चों में 3-4-5 साल की एज तक भी वो बातें याद रहती हैं, तो वो फिर सारा रिकलेक्ट कर देते हैं और सारा बता देते हैं कि हम कहाँ पे थे, क्या थे. एंड अगर आप वहां जाकर वेरीफाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट ऑलवेज टर्न्स आउट टू बी ट्रू. एंड इसके ऊपर पूरी रिसर्च है अमेरिका में, तो बहुत सारी स्टडी इस पे हो रही है. डॉक्टर रेमंड मूडी करके एक डॉक्टर है और पूरी उनकी टीम ऑफ डॉक्टर्स है, और उस टीम में एक बहन डॉक्टर है जो ब्रह्मा कुमारीज के साथ भी एसोसिएटेड है, और वो हमेशा हमें आकर ये पूरी स्टडी सुनाती है. तो दे हैव फिनिश्ड रिसर्च ऑन ओवर 1,90,000 केसेस अभी तक ऑफ लाइफ आफ्टर, यू नो, डेथ के बाद जो नेक्स्ट लाइफ है. और उसके ऊपर एक बुक भी बहुत अच्छी जो बनी लिखी है उन्होंने, इट्स कॉल्ड लाइफ आफ्टर लाइफ, डॉक्टर रेमंड मूडी की, जिसमें उन्होंने सारे ये केस स्टडीज अपनी बताई है. और हर केस में मनुष्य पिछले जीवन में मनुष्य ही था, किसी भी एक भी केस में. तो इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं हो सकता है, एक भी केस में वो पशु नहीं था पिछले जीवन में. और दूसरी जो एक टेक्निक जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस की थी, वो था हिप्नोटिक रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन. क्योंकि बहुत सारी, क्या इनफैक्ट हमारी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, दे आर कनेक्टेड विद माय प्रीवियस इंटरैक्शंस विद पीपल. तो उस पर हमें डॉक्टर पीछे लेकर जाता है जो मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि ये एक टेप है, इसको रिवाइंड करना है. आप हिप्नोटाइज करना मतलब माइंड को साइलेंट करना, और जो डीप पीछे के रूटेड इम्प्रेशंस हैं उनको आगे ले आना, लेयर्स को आगे ले आना. तो अगर वो हमें इस एज के अंदर, इस शरीर के लाइफ टाइम में रिवाइंड कर सकते हैं, सो लेट्स से 30 इयर्स और 40 इयर्स, तो वो हमें 50 इयर्स भी रिवाइंड कर सकते हैं, वो हमें 200 इयर्स भी रिवाइंड कर सकते हैं. इट्स ओनली अबाउट कितना रिवाइंड करना है. तो ये एक विधि है, एक इलाज करने का तरीका है. पर इससे ब्यूटीफुल बात ये पता चलती है कि जैसे ही आत्मा को पता चल जाता है, क्यों ये समझना बहुत जरूरी है, जैसे ही आत्मा को पता चलता है कि हाँ मैं आत्मा हूं, मैंने वो रोल प्ले किया था, मैं अभी आई हूं, इस आत्मा के साथ मेरा ये थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ था, यू नो, द होल कंफ्यूजन इज क्लियर कि अब मुझे ऐसा क्यों हो रहा है.
0: Why this fear? Yes. Why the problem in my relationship?
1: She's understood that. तो जैसे ही वो समझ में आ जाता है तो फियर खत्म हो जाता है. एंड दैट्स वॉट, अब हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की जरूरत नहीं है टू अंडरस्टैंड दिस. वी अंडरस्टैंड कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ सम प्रीवियस इंटरेक्शन. जैसे ही वो समझ में आ जाए तो आई शुड बी एट पीस, क्योंकि क्वेश्चन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं, इट वॉज माई इंटरेक्शन, मैंने ये एनर्जी दी थी, अब मैं इसको चेंज कर सकती हूँ. तो जैसे ही नॉलेज मिली अब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी लाखों केसेस हो चुके हैं एंड इन नन ऑफ द केसेस वॉज द ह्यूमन बींग एन एनिमल, मनुष्य हमेशा मनुष्य ही था। तो ये बात तो डेफिनेटली, मतलब जो शिव बाबा ने आकर बताई, आज विज्ञान भी उस बात को बता रहे हैं कि मनुष्य हर योनि में, सिर्फ पास्ट बर्थ नहीं, उसे कितने भी बर्थ पीछे ले जाए वो मनुष्य ही था।
0: अच्छा, लेकिन यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं सिस्टर शिवानी की, आपने कहा कि जैसे ही रियलाइजेशन हुआ, जैसे ही हम सोल कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुंचते हैं कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप या कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं, तो एक्सेप्टेंस है कि हो रहा है, मैं कोई बात नहीं, ये मैं जिम्मेदार मैं हूं, जिम्मेदार कोई और नहीं है, तो क्यों हो रहा है मेरे साथ, इट्स ओके कि मेरे साथ हो रहा है,
1: अब क्या करना है।
0: हाँ हाँ, क्योंकि हो तो रहा है, क्या मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, क्योंकि जो हो रहा है वो भी तो पेन दे रहा है।
1: राइट, अब उसको चुक तो करना है, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके लिए फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। नॉलेज से क्लैरिटी आ गई, जिम्मेवार मैं हूं, मैंने किया था, अब जो मेरे साथ हो रहा है मेरे कारण है, मैंने किया था इसलिए मैं ही इसको अब ठीक कर सकती हूँ, कोई और मेरे कार्मिक अकाउंट्स मेरे लिए सेटल नहीं कर सकता है। वो हर आत्मा अपने कार्मिक अकाउंट सेटल कर रही है। मे बी समबडी कैन गाइड यू, मे बी समबडी कैन हेल्प यू,
0: करना मुझे,
1: लेकिन वो मेरे हैं और मुझे ही उसको चुक तो करना पड़ेगा। तो पहली चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस, फिर फर्स्ट स्टेज अवेकनिंग, अवेयरनेस, सोल कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि अभी तक बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार बहुत सारे थे, अब हमें दो चीज करनी है, पास्ट वाले संस्कार को काटना है। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि नाउ अवेकन टू रियलिटी कि मैं कौन हूं, एंड स्टार्ट क्रिएटिंग द न्यू सेट ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, ताकि पुरानी जो थिंकिंग प्रोसेस है, नहीं तो वो ही थिंकिंग प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है ना, एक स्पाइरल बनता जा रहा है, मैं नीचे की तरफ गिरती जा रही हूँ। तो पहले तो इस स्पाइरल को यहां रोकना पड़ेगा। यू नो, टू थिंग्स वी आर डूइंग, कि एक तो है पास्ट को फिनिश करना है, लेकिन अब है कि और भी तो नहीं करने, और नया तो नहीं क्रिएट करना। तो पहली बार जब हम सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं तो बी अवेकन टू अ न्यू रियालिटी, आई डू एवरी कर्म नाउ विद दिस रियालिटी, कि मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, ये मेरी इंट्रेंसिक क्वालिटी है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मुझे कोई भय नहीं है। तो भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब धीरे धीरे मेरे थॉट एक्शन के प्रोसेस से खत्म होता जाएगा। अब ये सब करते हुए हो सकता है मैं कभी कभी फिर सो जाती हूँ, यू नो, फिर उसको मुझे अपने आप को फिर से जगाना पड़ता है। और इसीलिए जो हम कहते हैं ना, सेंटर्स हैं बहुत सारे, क्योंकि जब हम इस जर्नी पे अकेले चलते हैं, हमें आवश्यकता पड़ जाती है कभी कभी कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो जग रहे हैं थोड़े से। अगर हम उस वायुमंडल में रहते हैं जो सारे ही सोए हुए हैं, तो यू नो वी टेंड टू फॉल ऑफ टू स्लीप। सो इट्स गुड वंस इन अ वाइल टू गो टू अ प्लेस लाइक दैट जहां एवरीवन इज वेकिंग अप। तो आप उनके अनुभव सुनते हैं, यू लिसन अबाउट देयर जर्नी, तो इट गिव्स यू अ लिटिल इंस्पिरेशन। तो अगर आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे हैं, यू नो, यू टेंड टू मूव फॉरवर्ड। तो दैट्स व्हाई वी, यू नो, हैव दीज सेंटर्स वेयर वी मीट रेगुलरली एंड हेल्प्स अस टू ऑल बी अवेक एंड ऑन द जर्नी टुगेदर। तो एक है कंटिन्यूअसली सारा दिन में कॉन्शियसली अपनी थिंकिंग को अब चेंज करना। समझ में आ गया ये नेगेटिव कर्म है, ये पॉजिटिव कर्म है, तो अब बार बार अभ्यास से अपने आप को याद दिलाइए कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। न्यू थॉट, राइट? पहले सी हाउ इज द स्टैक कैसे बना, फर्स्ट लेयर्स यही थी, क्योंकि आत्मा जब सबसे पहले आई थी, मैं शांत आत्मा हूं, मैं पवित्र, ये सब संस्कार थे। उसके बाद पुराने, यू नो, ऊपर से संस्कार सारे बन गए, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब। अब जब हम फिर से वो थॉट क्रिएट करेंगे, तो वो ऑलरेडी है, यू नो, वी आर नॉट क्रिएटिंग अ न्यू संस्कार, सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्टैक में उसको नीचे से अब खींच कर ला रहे हैं, यू नो, सो वी आर इमर्जिंग एन एग्जिस्टिंग संस्कार, उसको लेकिन अब री इन्फोर्स करना है। तो उस थॉट को क्रिएट करो और उसको एक्शन में जरूर लेकर आइए। अगर बुद्धि ने फिर से ये पुरानी वाली थॉट को आगे जाने दिया, फिर एक्शन में क्रोध आया, अब उस एक्शन का फिर से, तो इसलिए सिर्फ थॉट लेवल तक नहीं वर्क करेगा, इंटेलेक्ट को स्ट्रांग बनाकर ब्रिंग इट इनटू एक्शन, कि अब आपके हर कर्म में वो प्योरिटी वो शांति दिख. योर एक्शन शुड नॉट बी द ओल्ड एंड ऑर्डिनरी, क्योंकि हर एक्शन का भी अब एक इम्प्रेशन बन रहा है. तो ये एक प्रोसेस हो गया, अवेकन थॉट्स एंड ब्रिंग देम इनटू एक्शन. दूसरा, फेस टू फेस जब हम उन लोगों से मिलते हैं जिनके साथ हमारे वो कार्मिक अकाउंट्स हैं, तो उस टाइम भी बहुत सारे सेटल होते हैं. यू नो, बहुत लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिनके मिलने से या जिनके इंटरेक्शन में आने से हमें तकलीफ होने लगती है. दर्द है, दुख है, क्रोध है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स. एंड वी नाउ इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम, लुक हियर, क्या रीजन है, इनकी वजह से मुझे क्या दर्द हो रहा है, मेरी क्या अटैचमेंट है इनके साथ, या किस इमेज के साथ मेरी अटैचमेंट है, मुझे अब इस अकाउंट को फिनिश करना है, व्हाट डू आई हैव टू डू. लेट गो ऑफ दैट अटैचमेंट, ऑफ दैट अटैचमेंट. क्या मुझे उस आत्मा से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या चाहिए मुझे उससे, जब अब मैं ही प्रेम स्वरूप हूं, मुझे क्या किसी से चाहिए. व्हाट एम आई क्लिंगिंग ऑन टू दिस पर्सन. आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम हिम. टॉक टू योर सेल्फ कि इफ आई स्टिल आस्क द अदर सोल फॉर इट, तो मेरा वो वाला प्रेम वाला संस्कार री इन्फोर्स हो रहा है. मुझे अब सेटल करना है. लेट गो. किसी ने आकर मुझे इंसल्ट कर दिया, समझ में आ गया, रिटर्न है. अब अगर उस कार्मिक अकाउंट को सेटल करना है, मैंने ही किया था कुछ, मेरे पास ही फिर से आया है, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं. बट इफ आई वॉन्ट टू फॉरगिव, वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट फॉरगिविंग द अदर पर्सन, क्योंकि उसने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया था जिसकी वजह से ये रिटर्न मुझे आ रहा है. आप अगर उसको लेट गो करते हैं, आप उसे नहीं फॉरगिव कर रहे हैं,
0: खुद को,
1: आप अपने ऊपर रहम कर रहे हैं,
0: क्योंकि खुद के साथ वो सेटलमेंट कर रहे हैं.
1: यस yes, क्योंकि अब अगर आप फिर से वो थॉट्स क्रिएट करते हैं, क्यों ऐसा बोला मुझे, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसको तो मैं देख लूंगा, व्हाट एम आई डूइंग
0: अगेन,
1: आई एम क्रिएटिंग अगेन थॉट, डिसीशन, एक्शन, इम्प्रेशन, थॉट, एक्शन, इम्प्रेशन, गोज ऑन. नाउ आई वॉन्ट टू सेटल दिस अकाउंट विद दिस सोल. से व्हाट यू वॉन्ट, आई लेट यू गो. आई हैड क्रिएटेड इट बट नाउ नो मोर. I had created it, but now no more. I'm not creating anymore. Future secured karna hai, present secured karne se. So what do? Stop creating it now. And say, okay. I forgive myself, ki maine ye kiya tha, lekin ab main apne upar rahm karungi. I'm going to forgive and forget. To jab hum kisi ko jaane dete hai, aise hum bahut zyada unko tangle nahi karte hai, to we are forgiving ourselves and we are settling an account. तो ये हम अगर हम उस टाइम सेटल नहीं करते हैं, तो हम और अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम और एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो स्टैक जो है वो और बढ़ता जाएगा. तो बहुत बड़ी हमारी अकाउंट्स की भोगना एक दूसरे के इंटरेक्शन में आने से हो जाती है, लेकिन उस समय फंडामेंटली हमारे पास चॉइस है, हम और भोगना चाहते हैं या इसको यहीं के यहीं खत्म करना चाहते हैं. तो कभी भी अब कोई आपको कुछ कहता है, आस्क योर सेल्फ, डू आई वॉन्ट टू सफर मोर, बिकॉज इट्स माई चॉइस, माई क्रिएशन. आई वॉन्ट टू सफर मोर, गो ऑन सफरिंग. आई वॉन्ट टू फिनिश इट, इन योर हैंड, स्टॉप. सो दैट्स द सेकेंड वे दैट वी सेटल ऑल आर अकाउंट्स. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वे, एंड लेट्स से सबसे ईजी तरीका बहुत सारे अकाउंट सेटल करने का, जब आत्मा का उस परमात्मा से मिलन होता है. हमने उस दिन भी देखा कि वो ज्ञान सूर्य है, हीलिंग पावर, उसकी लाइट, उसकी वॉर्म्थ, इतनी एनर्जी आत्मा पर पड़ती है, तो बहुत सारे स्कार्स जो आत्मा पर वूंड्स बने हुए हैं वो सारे हील हो जाते हैं. कैसे? क्योंकि उसकी इतनी शक्ति है जो मुझे मिलती है. मेरे बहुत सारे संस्कार हैं क्रोध के, बहुत सारा ऐसा स्टैक जमा हुआ हुआ है, लेकिन उस परमात्मा से इतनी पावरफुल करंट आती है स्नेह की, मुझे चाहिए था वो जैसे ही आती है, इट लाइक जस्ट बर्न्स ऑल दीज संस्कार्स अवे एंड माय न्यू सेट ऑफ संस्कार्स विल गेट क्रिएटेड बिकॉज आई गेट फिल्ड विद दैट लव. आई वॉज फिल्ड विद एंगर. जैसे एक कटोरा है, इसको हमने किसी गंदी चीज से भरा हुआ है, अब इसको हम खाली तो कर नहीं सकते, लेकिन हमें इसको चेंज करना है, हम इसको बहुत शुद्ध दूध से भरना है, तो हम कैसे करेंगे?
0: फिल इट, डालते जाओ.
1: आप इस पे डालते जाओ. एक दिन ऐसा आ जाएगा जो इसके अंदर से जो सारा गंध है
0: वो
1: वो
0: निकल
1: बाहर
0: जाएगा।
1: निकल जाएगा और ये कटोरा दूध से भर जाएगा। सेम हियर, स्टैक है, बहुत सारे इम्प्योर संस्कार है लेकिन वहां बहुत प्योरिटी है। तो जब वो प्योर एनर्जी मुझ आत्मा पर पड़ती जाती है, आई हैव दैट कनेक्शन, वो डायरेक्ट किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, धीरे धीरे इट विल जस्ट फिल दैट एंड वो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो होता जाएगा। तो मेडिटेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास्ट जन्मों के जो विकर्म है उनको चुकतू करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि
0: वो चुकता तो हमें करने ही है,
1: हाँ
0: वो लॉ ऑफ जो कर्म है वो तो ये कहता है कि आपको भुगतना तो पड़ेगा,
1: राइट,
0: लेकिन इट बिकम्स
1: इट
0: इजियर।
1: बिकम्स इजियर बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एट द संस्कार लेवल इट चेंजेस। अब बाकी वो सिचुएशन तो आपके सामने आएगी ही आएगी। लाइक जैसे अगर कोई कहे अच्छा आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर आप बीमार क्यों हो रहे हैं, बीमार तो क्यों नहीं होंगे, हमने तो बहुत सारे पाप कर्म किए अपने पिछले जन्म में, उसकी भोगना तो मिलेंगी। प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, नोबडी इज सेइंग कि आप ये करोगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बट प्रॉब्लम क्या है, इट्स जस्ट अ सिचुएशन विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड। पहले क्या हो रहा था कि जब शरीर को तकलीफ होती थी तो बहुत दुखी हो जाते थे अंदर से, मेरे साथ क्यों ऐसा क्यों, मैं बहुत तकलीफ में हूं, वो भोगना थी। शरीर नहीं भोगता है, आत्मा भोगती है। अब मेडिटेशन से क्या हुआ कि बहुत ताकत भर गई है आत्मा में, तो सिचुएशन आती है और सिचुएशन चली जाती है,
0: स्ट्रांग हो जाती है
1: बहुत
0: आत्मा।
1: स्ट्रांग हो जाती है।
0: हाँ
1: इट्स लाइक जिसको हम कहते हैं मक्खन से बाल निकल जाता है सो इजिली। बड़ी बड़ी सिचुएशंस, आई कैन टेल यू इतनी बड़ी सिचुएशंस आई हुई है माय पर्सनल लाइफ आल्सो, बिग सिचुएशंस जो इफ प्रीवियसली अगर आती तो मे बी आई वुड बी अ मेस, बट नाउ दे जस्ट कम एंड दे गो। तो भोगना की फीलिंग नहीं आएगी, तो हिसाब किताब आएगा तो सही जो हमने किया, लेकिन बहुत हल्के में चुकतू हो जाएगा। तो तीन तरह से हमने उसको चुकतू किया, एक आत्म कॉन्शियसनेस से होने से वो संस्कार्स को इमर्ज किया, तो उनको हम स्टैक पर ऊपर लाते गए, कर्म में उनको लाते गए तो वो ही इम्प्रेशन पॉजिटिव वाला बनता गया, तो धीरे धीरे प्योर वाले संस्कार स्टैक में फिर से ऊपर आते गए हैं। दूसरा, वो जो नेगेटिव संस्कार्स का साइकिल बन रहा था वो बनना बंद हो जाता है। और तीसरा प्रोसेस, परमात्मा जो वो सर्वशक्तिवान है उससे जब कनेक्शन जोड़ते हैं तो बहुत सारे जो ये पुराने संस्कार बने हुए हैं ये बर्न हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भगवान को याद करने से हमारे पाप वो क्षमा नहीं होते हैं, लेकिन वो संस्कार एक तो परिवर्तन हो जाते हैं और उस हिसाब किताब को फेस करने की ताकत मिल जाती है। वो रिटर्न फिर भी आएगा लेकिन आपको लगेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जिसको हम कहेंगे पहाड़ को भी राई बना दिया, और पहले क्या था राई को भी
0: पहाड़
1: पहाड़
0: बना,
1: बनाते
0: वो
1: थे,
0: एक
1: इतनी
0: परिस्थिति बन
1: बड़ी
0: के रह जाती है, जिंदगी नहीं बन
1: कुछ
0: जाती
1: भी
0: है
1: नहीं है,
0: कि मेरी जिंदगी रुक गई, मेरी जिंदगी खत्म
1: कुछ
0: हो
1: भी
0: गई,
1: नहीं,
0: मेरे लिए इतना बड़ा क्राइसिस आ
1: मतलब
0: गया।
1: बेसिकली उसका साइन ये होगा कि मेंटल स्टेबिलिटी नहीं डिस्टर्ब होगी, चाहे आपके घर में किसी
0: चाहे कुछ
1: फैमिली मेंबर
0: हो।
1: को कुछ हो जाए, कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी आ जाए, ये सारे हिसाब किताब आ सकते हैं लेकिन माइंड आत्मा वो स्टेबल रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। परमात्मा की याद से हम बहुत सारे विकर्म, और इसीलिए कहा जाता है चुकतू तो करना है, या तो भोग कर चुकतू करो या योग से चुकतू करो, तो योग से चुकतू करेंगे तो तकलीफ
0: कम हो
1: कम
0: गई।
1: होती
0: तो
1: है।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, अगर मैं याद करूं तो हमने जब ये यात्रा शुरू की थी आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आपके लिए खुशी कब होगी, तो मेरा तो जवाब जो भी था सर, लेकिन आपसे आपने जब कहा था कि मेरे लिए खुशी वो लम्हा है जब किसी भी सिचुएशन में मेरी इनर स्टेबिलिटी कायम
1: एब्सोल्युटली
0: रहेगी, आज वही बात सामने फिर
1: राइट,
0: आती है कि
1: एब्सोल्युटली
0: कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ
1: राइट,
0: भी कैसी भी परिस्थिति हो, अगर मैं सोल कॉन्शियसनेस के पे जी रही हूँ, अगर मैं अवेयरनेस में जी रही हूँ, अगर मैं ये जानते हुए जी रही हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ, लेकिन मेरे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक वो शक्ति है, वो एक पिता है, परम पिता है मेरे साथ, जिनकी एनर्जी के साथ मैं हर सिचुएशन को फेस कर
1: कर
0: सकती हूँ,
1: सकते हो,
0: तो शायद
1: वी रिमेन स्टेबल
0: एक्चुअली मैं भी पहुंच सकती हूँ। हम
1: राइट
0: सभी, जितने भी परिवार हमारा बन चुका है, जो इतने सारे दर्शक
1: राइट।
0: हमारे साथ जुड़े हैं, हम सब भी उस सिचुएशन तक पहुंच सकते हैं।
1: और इसके लिए एक ही चीज करनी है, सारा दिन अभ्यास करते रहे वही आत्मिक स्वरूप का, एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखने का और शिव बाबा को साथ रखे हर समय, तो क्या होगा जब वो परिस्थिति भी आएगी तो वो परमात्म याद इतनी साथ होगी एंड वो सर्वशक्तिमान, यू विल फील ही इज लाइक विद यू देयर एंड यू विल जस्ट क्रॉस द सिचुएशन,
0: नथिंग कैन हैपन टू मी,
1: एब्सोल्युटली,
0: लाइक ये आया है ठीक है निकल जाएगा, ये हम कहते तो हैं लेकिन जब उसे जी रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है,
1: लेकिन दिस बिकम्स प्रैक्टिकल, हम सब के अनुभव है कि दिस बिकम्स प्रैक्टिकल बिकॉज नाउ यू आर नॉट कनेक्टेड टू अ कॉन्सेप्ट, पहले हमारे लिए वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें परमात्मा एक कॉन्सेप्ट था, एक थॉट था सिर्फ, अब हम उस एंटिटी से जुड़े हैं जो रियली एग्जिस्ट करता है, तो जो वो एंटिटी है तो उनकी पावर्स भी तो फिर हमारे साथ काम करेगी, सो वी कैन रियली मेंटेन दैट स्टेबिलिटी देन एंड फिर वो चुक तो होता जाएगा।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सिस्टर शिवानी, आज का ये जो चर्चा थी, जो बातचीत थी, वो सिर्फ चर्चा या बातचीत ना रह के इनफैक्ट पूरी हमारी जर्नी जो है वो हर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे है, जिंदगी की बिल्कुल गहरी सच्चाइयों पर खड़ी हर हर बात को हम खंगालते जा रहे हैं, जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति। परमात्मा से या आत्मा से परमात्मा तक का जो एक सफर है कि मैं कौन हूँ, वो कौन है और जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, ये जो ड्रामा है, जो हम कहते हैं एक सोप ओपेरा की तरह हर पल जिंदगी रंग बदल रही है, उस सिचुएशंस को, उन जिंदगी की जो सच्चाइयां हैं उनसे कैसे रूबरू होना है, कैसे जीना है, जीने की कला भी कही जाती है या सचमुच कोई भी नाम दे दे, अगर हम इन पूरी जो बातें आज हमने की हैं, जो हम करते आ रहे हैं, इन सभी सच्चाइयों के रूबरू अगर जिंदगी जिएंगे तो हर पल आनंद का हो सकता है। अभी भी कोई बात है, कुछ ऐसे सवाल है जो जरूर सर उठा रहे होंगे, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। ये सफर अभी यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत सी बातें हैं, बहुत आनंद आ रहा है इस पूरे डिस्कशन में भी, चर्चा में भी, क्योंकि जिंदगी की सच्चाई यही है। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में बहुत सी बातें अभी बाकी है, अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी।
1: खुशियों की गुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इस पूरी श्रृंखला में जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, रोज की ये मुलाकात है, ऐसा लगता है कि हम और आप, हमारी जो जीवन है वो एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन बहुत से दर्शक जो नए जुड़ रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। जिंदगी अगर हम देखें तो कई बार बहुत सी ऐसी ऑब्स्टिकल्स लेकर आती है, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस लेकर आती है जो हमें लगता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं और हम उन्हें पार नहीं कर पाते। कई बार वो आसानी से हो जाती है, हमारा अपना मेंटल मेकअप ऐसा होता है, लेकिन कई बार वो बहुत हावी हो जाती है। तो ये जो आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी बातचीत का सिलसिला जिसमें बहुत से हम सिचुएशंस को देखेंगे, जिंदगी के उन पड़ावों को देखेंगे जहां हम कहीं रुकने लग जाते हैं या उन्हें पार करते करते हम बहुत थक जाते हैं। तो क्या कोई आसान तरीका है? क्या मेरे सोच में, मेरे थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है कि वो सिचुएशंस मुझ पर हावी ना हो? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जिस तरह से अब लोग जुड़ते गए हैं अवेकनिंग के साथ और आप भी बहुत से लोगों के साथ मिलते गए हो, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस? लोगों
1: का एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल, बिकॉज जहाँ जहाँ भी आप, जितने भी लोगों से मिलते, तो वो नए नए अब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज और कहीं ब्रह्मा कुमारीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि परिवार वो ही होता है जहाँ हमारी सोच एक दूसरे के साथ मैच करती है। और इतने सारे भाई बहने, लाखों की संख्या में कहें, जो रोज हमसे मिलते रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम द्वारा, वो सोच में परिवर्तन, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन जोड़, जो आज तक परिवर्तन की बात सिर्फ सोच में थी, वो प्रैक्टिकल में आने लगे, क्योंकि परमात्मा की शक्ति भी मिलती गई। ज्ञान तो है, सभी के पास है, चाहते भी हैं परिवर्तन करना, लेकिन सिर्फ जो हिच आ रहा था वो कहा कि मुझे मालूम है लेकिन होता नहीं है। लेकिन जहां परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा, तो वो वाला भी जो स्टेप था वो क्रॉस हो गया, एंड देन लाइफ बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज यू आर एबल टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू इन टर्म्स ऑफ फीलिंग। यू नो, बाहर तो जो करना चाहते हैं वो हो जाता है, लेकिन अंदर जो फील करना चाहते हैं वो कई बार कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। लेकिन क्योंकि जिन भी भाई बहनों ने अपने ऊपर वो मेहनत की है, सिर्फ प्रोग्राम देखने से ये नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम को एक स्टडी के रूप से लिया है। एंड आई हैव मेट मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो प्रोग्राम के साथ जैसे एक नोटबुक लेकर बैठते हैं और उसको नोट्स बनाते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं और फिर तुरंत उसको नेक्स्ट डे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके अपने पर्सनल कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप उसको अप्लाई करते हो। एंड ज्ञान इतना ब्यूटीफुल है, क्योंकि जो परमात्मा ने डायरेक्ट नॉलेज दी, तो नॉलेज तो बहुत सिंप्लीफाई हो गई, लेकिन जब तक हम उसको यूज नहीं करते तो हमें उसका बेनिफिट नहीं पता चलता। तो जिन्होंने उसको यूज करना शुरू किया, तो उनको वो बेनिफिट मल्टीफोल्ड मिला है। एक है कि आप देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, नेचुरल है, परमात्मा की दी हुई बातें हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, समझ भी आ जाते हैं, लेकिन वंडर तब क्रिएट होता जब उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। सो अगेन आई वुड से टेक इट बैक टू योर लाइफ टुमारो। यू नो, नॉट दैट आप आधा घंटा टीवी देखते हैं, आप देखते देखते कहते हैं या इट्स वेरी गुड, इट सीम्स गुड, कई बातें लगती हैं नो बट इट्स नॉट पॉसिबल, कई बातें लगती हैं येस इट्स पॉसिबल, बट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल जस्ट गो एंड ट्राई इट आउट टुमारो। एंड ट्राई करने के बाद डिसाइड करें कि पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, सिर्फ सुनने से नहीं डिसाइड करें। क्योंकि जहां इतने लोग वो पॉसिबल कर पाए हैं लाखों की संख्या में, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? इट्स जस्ट दैट मेरा वो एक स्टेप बचा है, एंड दैट इज गोइंग टुमारो एंड ट्राइंग दिस आउट। जब हम कहते हैं नॉट पॉसिबल या वेरी डिफिकल्ट, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने मन को कह दिया लेट इट बी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये इनके लिए ठीक है, ये लोग जो बात कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता मेरे ऑफिस में क्या होता है, या इनको क्या पता मेरे घर में कैसे लोग हैं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उससे फिर हम अपनी ही प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं। सो व्हाटएवर वी शेयर इट्स फॉर एवरीवन, टेक इट बैक विद यू टुमारो, अपने ऑफिस में इसको लेकर जाएं, अपने घर पर लेकर जाएं, देन द मैजिक स्टार्ट्स। सो देन आई हैव बीन मीटिंग सो मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिनके लिए फिर ये मैजिक हुआ है। वो फील करते हैं, ये उनका अनुभव है कि उनकी पूरी सोच में परिवर्तन आया, क्योंकि परिवर्तन यही हुआ कि औरों को देखने की बजाय
0: खुद को
1: अपने को देख,
0: देखा
1: बस वो एक ही तो स्टेप चाहिए था सिर्फ, लेकिन वो अंडरस्टैंड जब हो गया तो अपने को देखना शुरू किया, अपने को देखना शुरू किया तो अपने पर काम करना शुरू किया, और वो रियलाइज हुआ ये तो इजी है
0: ये
1: और तो
0: सबसे बड़ी
1: पॉसिबल
0: बात,
1: है।
0: वो आहा मोमेंट ये थी कि ओ अच्छा मैं अपने आप को देख सकता हूँ. यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत आपने आज जिस बात से हमने शुरू किया है कि बहुत से लोग हैं जो प्रोग्राम देख रहे होते हैं, अच्छा जरूर लगता है, लेकिन यही बात है कि मेरे लिए नहीं है. तो ये इतने सारे लोगों का एक्सपीरियंस, आपको हम यही कहना चाहेंगे जो नए लोग जुड़े हैं, जो बहुत वक्त से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी कि ये जो आने वाली जो श्रृंखला हमारी रहेगी जिस पर हम बातचीत करेंगे, आप ही की समस्याओं को लेने वाले हैं, आप ही की वो सिचुएशंस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हुए, या जिन अगर ज्ञान नहीं भी जान पा रहे हैं, आप नहीं जानते थे, तो इस पूरी बातचीत के दौरान आप तक वो बात जरूर पहुंचेगी. बात हम यही करते हैं शिवानी, यहीं से शुरू करते हैं कि चले
1: सिचुएशंस
0: समझ में आ गई थी,
1: राइट
0: जिंदगी समझ में आई, बहुत सी बातें कि मैं जिम्मेदार हूं अपने ऊपर, लेकिन अभी भी जब हम सिचुएशंस को देख रहे होते हैं, और चैलेंजेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, आने वाला दौर चाहे हम ग्लोबली भी देखें और चाहे पर्सनल लेवल पर भी देखें, तो बहुत तेजी से बदल रहा है. हम तैयार ही नहीं होते हैं, और मतलब हमने अपनी आपको बड़ी मुश्किल से एक सिचुएशन के लिए तैयार किया होता है, वो तीसरी सिचुएशन इतनी बड़ी खड़ी हो चुकी होती है कि
1: True.
0: हम फिर घबराने शुरू हो जाते हैं. तो वो जो प्रिपरेशन है, क्या मेरी प्रिपरेशन उतनी है या कैसे तैयारी करनी है?
1: वी कैन नॉट डिनाई कि चैलेंजेस आर गेटिंग बिगर डे बाय डे। कहीं ना कहीं हमने बहुत मेहनत करके अपने अंदर शक्ति लाई होती है वो जो प्रेजेंट परिस्थिति है उसको क्रॉस करने के लिए, और अभी वो शक्ति उतनी भरी नहीं होती कि मेरे सामने एक उससे कई गुना
0: बड़ी
1: बड़ी
0: सिचुएशन आ
1: परिस्थिति
0: जाती
1: खड़ी हो जाती है। लेट्स टेक अ लिटिल थिंक के व्हाट आर द सिचुएशंस वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि फोकस बहुत ज्यादा हमारा सिचुएशन पर होता है और सारा दिन माइंड में वो सिचुएशन की लिस्ट जैसे कि चलती ही जाती है। सिचुएशन जो हो चुकी है, परिस्थितियां परिस्थितियां जो वर्तमान समय मेरे जीवन में हैं, और कुछ परिस्थितियां जो मैं ऐसे ही क्रिएट करती हूँ जो मुझे लगता है हो जाएंगे,
0: हाँ होने
1: यू नो
0: वाली है,
1: ये
0: आने
1: शायद
0: वाली.
1: मेरे साथ हो ना जाए, या जैसे जॉब इनसिक्योरिटी है, तो अभी जॉब है तो जॉब इज वेरी नाइसली देयर एवरी डे, बट द थॉट, सो आई एम ऑलरेडी क्रिएटिंग द सिचुएशन इवन दो द सिचुएशन इज नॉट देयर। तो नोइंग हाउ टू फेस द सिचुएशन, लेकिन वॉट आर द सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज हमारे जीवन के दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं, एक है मेरी पर्सनल और फैमिली लाइफ और दूसरी है मेरी वर्क लाइफ,
0: प्रोफेशनल
1: चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे एक बच्चे के लिए उसकी वो स्टूडेंट लाइफ है, इट्स दैट लाइफ। तो अगर हम अपनी वर्क लाइफ को देखें, नाउ यू आंसर, आई विल क्वेश्चन यू, अगर
0: ओके
1: हम अपनी वर्क लाइफ कर्म उस क्षेत्र को देखें जहां हम रोज कार्य करने जाते हैं, व्हाट आर द सिचुएशंस फॉर यू?
0: द टॉप चैलेंजेस और द
1: या
0: सिचुएशंस.
1: सिचुएशंस चैलेंज, उसको चैलेंज बोले, प्रॉब्लम बोले, सिचुएशन बोले, वट एवर, बिकॉज सिचुएशन तो वही है, अब आप उसको किस रूप से देखने वाले हो वो डिपेंड करता
0: सी, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं, मतलब लाइक यू आर आस्किंग मी,
1: है। नो, इन जनरल
0: हाँ
1: फॉर
0: मतलब
1: एनीबडी
0: जनरली,
1: वर्क लाइफ,
0: हाँ जो
1: या
0: अगर एक मीडिया पर्सन के रूप में भी, तो ये क्या, मैं फ्रीलांसर, सो रिसेशन का ये दौर जहाँ ऑलरेडी जिनकी फिक्स जॉब है
1: ट्रू
0: उनको प्रॉब्लम आने वाली है, तो आई हैव दिस कंटिन्यूअस थिंग दैट इट्स ओके राइट नाउ, आई हैव वर्क, बट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, बिकॉज हाउ रिसेशन इज गोइंग टू हिट, रिसेशन कैसे हिट करेगा मीडिया को हम नहीं जानते
1: हमें
0: हैं
1: नहीं पता,
0: अपने
1: एंड इट्स
0: ऊपर।
1: नॉट नेसेसरी मीडिया, इट्स फॉर एवरीबडी,
0: हाँ
1: लाइक इफ यू लुक एट इट इवन ग्लोबली, शायद ही कोई ऐसा देश है अभी जो इससे हिट नहीं हुआ है, शायद ही कोई ऐसा लेवल है सोसाइटी में जो इससे हिट नहीं हुआ है, चाहे आप यू आर टॉकिंग अबाउट द टॉप लेवल ऑफ सोसाइटी और यू आर टॉकिंग एब्सोल्युटली द सिंपल लेबर, इवन द लेबर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क टूडे इज स्टक, यू नो, तो आप एक पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं जिसमें जॉब, रिसेशन, फॉर आर्थिक परिस्थिति.
0: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात बहुत से लोगों के साथ ये है कि मैंने अपना कंफर्ट जोन उसके साथ कर
1: दैट
0: लिया।
1: इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई, जॉब इनसिक्योरिटी
0: अच्छा,
1: हो
0: और
1: गई,
0: फिर मेरा जॉब जहां है वो बहुत कुछ मेरे बॉस पर डिपेंड कर रहा
1: तो माई बॉस, माई कोलीग्स, दीज आर ऑल द चैलेंजेस. देन ट्रांसफरेबल जॉब,
0: है।
1: चेंज ऑफ योर होल फील्ड, कई बार आपको एक जगह से उठाकर एकदम दूसरे क्षेत्र में डाल देते हैं, सो दीज आर चैलेंजेस एट वर्क, चैलेंजेस एट होम,
0: Oh, you're asking me?
1: No, everyone.
0: पर्सनल बेसिकली बहुत ज्यादा सिचुएशंस, अगर घर पे देखें तो बच्चों को क्या हम सही परवरिश दे
1: That's a
0: पा
1: very
0: रहे हैं, ये
1: big thing.
0: मेजर
1: In many programs, wherever I've asked people, what's your top concern? कहते हैं पेरेंटिंग. ऐसे पेरेंटिंग जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हुआ करता था, आज सबसे बड़ी
0: क्वेश्चन मार्क,
1: चिंता का विषय
0: क्वेश्चन
1: बन
0: मार्क
1: चुका
0: लगा लिया हमने
1: है.
0: ऊपर,
1: यस
0: क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, इतनी सारी बातें हो रही होती हैं, पीयर प्रेशर बच्चे के ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है, बच्चे के करियर को लेकर फाइनेंशियल जो चीजें आएंगी वो एक बहुत प्रेशर लेके रखते हैं पेरेंट्स का, आजकल का जनरल जो ये है, मेरे लिए भी अगर मुझसे पूछो तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे सामने. देन रिलेशनशिप्स, इफ यू आर अ सिंगल
1: रिलेशनशिप्स.
0: पेरेंट, इफ यू आर यू नो इवन इफ बोथ द पेरेंट्स आर देयर, कोई पेरेंट बाहर गया हुआ है विदेश में, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और वो सिंगल पेरेंटिंग में
1: डिवोर्स
0: जो
1: केस भी बहुत बढ़ गए.
0: हाँ मैक्सिमम ये चीजें जो होती जा रही हैं
1: डिवोर्स है, सेपरेशन है, डेथ है,
0: और उसका पेन.
1: तो वो तो फिर मेरा रिस्पॉन्स है. लेकिन सिचुएशन जब मेरे सामने आके खड़ी होती है, एन अनटाइमली डेथ, अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड किसी पेरेंट के लिए, या डेथ ऑफ एनी फैमिली मेंबर, एक डेथ तो एक डेथ है ही, विच कम्स एज अ वेरी बिग सेटबैक, जिसमें हमें लगता है कि ये परिस्थिति, मतलब मेजोरिटी पीपल आज कहते हैं, स्पेशली इफ इट इज डेथ ऑफ अ चाइल्ड और अ स्पाउस, अब मेरे जीवन जीने का तो कोई पर्पस ही नहीं रह गया. यू नो, सो दैट सिचुएशन इज नॉट अ सिचुएशन, बट इट्स फॉर मेनी पीपल एंड ऑफ एवरीथिंग.
0: यस
1: क्योंकि हम समझते कि वहां तो एंड हुआ ही हुआ उनके लिए, लेकिन ये मेरे लिए भी दी एंड है. इसके बाद मेरे जीवन जीने का कोई पर्पस नहीं है, मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है. यू नो द वे पीपल से टू देमसेल्व्स, हाउ कैन आई बी हैप्पी, यू नो आई एम और आई एम नॉट बी हैप्पी, तो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैं खुश हो ही कैसे सकता हूँ, मुझे खुश रहने. सो सिचुएशन, सो डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप क्राइसिस, पेरेंटिंग, कई बार चेंज ऑफ सिटी, आपको आप बहुत समय से यू नो एक जगह पर सेट हैं, एक कंट्री में सेट हैं, या आप एक सिटी में सेट हैं, एंड सडनली
0: यू हैव टू गो.
1: पीपल आर नॉट एबल टू
0: और
1: टेक
0: वो
1: इट.
0: एकदम से क्या होता है, सिचुएशन आती है तब तो आप हेड ऑन फेस करते हैं, लेकिन जो उसके बाद का डिप्रेशन
1: आफ्टर
0: सीप इन
1: इफेक्ट
0: करता है, ये मेजर प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है.
1: तो सिचुएशन उस टाइम नहीं है ना सिर्फ, वो एक सिचुएशन अब
0: लंबा
1: लंबा
0: हाँ
1: प्रोसेस है. तो अब अगर हम इन सारी परिस्थितियों को देखें, वर्क पे हमने देखा फाइनेंशियल, जॉब, बॉस, रिलेशनशिप्स, घर पर हमने देखा अगेन रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, डेथ, डिवोर्स, शिफ्टिंग, व्हाटएवर, इन सभी परिस्थितियों में, अब आप ध्यान से आंसर करना, आपके आंसर पर सब कुछ डिपेंडेंट है, इन सभी परिस्थितियों में कौन सी एक चीज कॉमन है?
0: मैं
1: नहीं, मैं तो कॉमन है, क्या हो रहा है इस हर परिस्थिति में जो कॉमन है, हर परिस्थिति में है वो
0: चेंज
1: चेंज. सी, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, परिवर्तन, परिवर्तन. एंड लाइक यू सेड, वी आर नॉट रेडी फॉर चेंज, क्योंकि हमारा
0: इतना
1: एक
0: फिक्स्ड है.
1: कंफर्ट
0: हाँ
1: जोन.
0: जोन है,
1: तो
0: कंफर्ट जोन.
1: हर परिस्थिति एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक चेंज है. यू नो, नाउ द मिनट आई जस्ट लुक एट इट लाइक दैट, चेंज, चाहे चेंज इन रिलेशनशिप, चेंज, चाहे फॉर मी इट कुड बी कि यू हैव चेंज्ड एज अ पर्सन. मैं आपको जो जानती थी इतने इतने साल, यू नो मेनी पीपल विल से, अब तो आप वैसे
0: बदल
1: रहे
0: गए.
1: नहीं,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: चेंज, चेंज. या आप मेरे साथ इतने साल थे, आज सडनली आप मेरे साथ नहीं हैं, चेंज. मेरा एक जीवन जीने की एक शैली थी, एक लाइफस्टाइल था, सडनली मुझे वो क्रैश हो गया, चेंज. सडनली मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा, चेंज. सो एवरी स्टेप जो चीज मुझे हिट कर रही है वो है चेंज. एंड समवेयर मोस्ट ऑफ अस आर नॉट रेडी फॉर चेंज, बिकॉज वी आर समहाउ, क्योंकि हमने अपने आप को उस दायरे के अंदर, चाहे वो मुश्किल वाला भी दायरा था, चाहे वो दर्द वाला भी दायरा
0: तभी
1: था,
0: हम
1: लेकिन
0: एडजस्टेड थे.
1: हम एडजस्ट
0: हाँ
1: कर चुके थे. यू नो, हम एडजस्ट कर चुके थे और हमें उसके साथ जीने की एक
0: आदत हो गई.
1: आदत पड़ गई थी. इट वॉज माई हैबिट, इट वॉज हैबिचुअल, वेदर इट वॉज प्लेजेंट और नो वी डोंट नो, बट इट वॉज हैबिचुअल. लेकिन जहां वो चेंज आया तो इट हैज हिट मी. अब जैसे ही चेंज आएगा, लेट्स लुक एट योर सेल्फ, यू आर स्टैंडिंग दैट साइड.
0: लेकिन
1: हाँ
0: चेंज के लिए एक और चीज, जो अगर आप चेंज की बात करते हैं तो बहुत लोग ये कहेंगे कि चेंज फॉर गुड और चेंज फॉर बैड, यू नो लाइक बहुत
1: चेंज
0: चेंज, इज दिस चेंज फॉर गुड और इज दिस चेंज फॉर बैड.
1: चेंज इज चेंज ना, हाउ गुड और बैड आई विल मेक इट नो.
0: या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
1: जो यहां से चेंज आया, सी चेंज तो सिचुएशन से आ रहा है ना, चेंज बाहर है, या तो किसी व्यक्ति के अंदर या आपके पोजिशन, चेंज बाहर से आ रहा है. गुड और बैड किस पे डिपेंड करता?
0: मुझ पे
1: एट एवरी स्टेप जहां आपके सामने कुछ हिट करता है, इफ यू कैन जस्ट टेक आउट 1 मिनट एंड जस्ट स्टॉप एंड सी, इस समय क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है. हमेशा कुछ एक बातें होती हैं जो मेरे कंट्रोल में है, कुछ एक चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं
0: नहीं.
1: है. डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, एनीथिंग. माई कंट्रोल? नो. वॉट इज इन माई कंट्रोल? चेक. फाइनेंशियल क्राइसिस, माई कंट्रोल? जॉब चला गया आज, माई कंट्रोल? नो. तो मेजोरिटी 95% से ज्यादा परिस्थितियां जो आपको मिलने वाली हैं, जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कंफर्टेबल ही हो जाते हैं ना, उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं.
0: उसको हमें
1: लेकिन
0: पता भी नहीं चलता कि वो चेंज
1: हाँ,
0: हुआ है.
1: एक ट्रैफिक जैम में भी अटकना एक परिस्थिति आज, कहना. आप कहते हैं इतनी मुश्किल, इतने हाईवेज बने बने, जब तक बने तब तक वी आर स्टिल अगेन स्टक. सो अगेन यू आर स्टक इन दैट, बट इन योर कंट्रोल? नॉट इन योर कंट्रोल. वॉट इज इन माई कंट्रोल इन एवरी केस? क्या कंट्रोल में है और क्या कंट्रोल में नहीं है?
0: इवन माई थॉट प्रोसेस, सी आई वुड हैव सेड,
1: यस.
0: लेकिन वो भी तो कंट्रोल में नहीं होता,
1: हाँ.
0: क्योंकि वो जब हमें टेक ओवर कर जाता है, जैसे स्पेशली अगर किसी का जॉब छूटा. आई नो समबडी जिनको सडनली शी वॉज टोल्ड कि आपको 6 महीने पहले उन्हें टॉप का लीडर बनाया गया, मतलब कंट्री हेड, और विद इन 6 मंथ्स उन्हें बोला गया कि नहीं, यू नॉट डूइंग योर वर्क, आपको छोड़ना पड़ेगा. उसका सब कुछ उनका उस पर डिपेंड कर रहा था. वो डिप्रेशन सीप इन ऐसे करता है कि
1: बहन, तो एग्जैक्टली वही हुआ ना, ये सब कुछ आपका क्रैश कर गया. सपोज मेरे मेरे आसपास सब कुछ क्रैश कर गया. लेट मी लुक एट द वर्स्ट सिचुएशन दैट कैन हिट मी, एंड वो ये है कि एक पल में मेरा सब कुछ जो मैं समझती हूँ मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार भी, लेट से एक मिनट में सब कुछ खत्म हो गया. अगेन नॉट इन माई कंट्रोल, बट वॉट इज इन माई कंट्रोल इवन नाउ?
0: कि मैं उसको कैसे लेती हूँ सिचुएशन में.
1: बिकॉज फाइनली, लेकिन हम क्यों नहीं उस तरफ देख पाते कि वॉट इज इन माई कंट्रोल, क्योंकि हमारा सारा अटेंशन उन बातों के ऊपर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. आज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, सब लोग लेकिन आपस में बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं? सारा जो एनर्जी लग रही है वो किस पर है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड. प्रॉब्लम ही ऐसे, सिचुएशन ही ऐसे, टॉक अबाउट सोल्यूशन. अच्छा ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, हो गया, लेकिन हम डिप्रेशन में चले गए. कौन सा लॉस ज्यादा बड़ा?
0: हमारा
1: ये किसने क्रिएट किया था?
0: हमने खुद.
1: ठीक है, दुनिया में जिन लोगों ने जो किया सो किया, जिसकी वजह से मेरा सारा धन चला गया, लेट्स से वर्स्ट केस कंडीशन, लेकिन ये जो लॉस किया ये किसने क्रिएट किया? तो एक लॉस तो हुआ हुआ, ठीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो ये लॉस हुआ कि आई गो इनटू डिप्रेशन, कल को इफ आई गो इनटू डिप्रेशन, सपोज इट गेट्स वर्स एंड मुझे हाइपरटेंशन या हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ, अब ये लॉस किसने किया? मैंने किया. अगर मैं अपने दर्द से बाहर नहीं निकल के आ पाती और मैं घर के लोगों के साथ उस बात को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन या झगड़े और वो सब करती रहूं और हम आपस में दूर हो जाएं, ये लॉस किसने क्रिएट किया? अब ये सब लॉस के सामने वो आपका फाइनेंशियल लॉस कितना बड़ा बैठता है?
0: और इनफैक्ट नो, यू नो व्हाट हैपेंस कि जब मेरे साथ कुछ ऐसा लॉस होता है तो मैं ये चाहती हूँ कि एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि मेरा गुस्सा, मेरी फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाइड है. मेरे को जो हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड टू मी.
1: फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. इफ आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग मी? एंड मे बी यू आर इन योर ओन पेन. यू सी, सो फॉर मी टू एक्सपेक्ट कि आप मुझे समझो, मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही हूँ. तो इसलिए हर एक परिस्थिति में फिर भी येस द सिचुएशन इज वेरी बिग, क्वेश्चन इज कि अभी भी मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं सारी अपनी अटेंशन उस पर फोकस कर दू. इट्स लाइक मेरी एक चीज तो चली गई लेकिन तीन चीजें तो बची है ना. लेकिन क्योंकि मैं वो तीन चीजों का ध्यान न
0: कि वो
1: रखकर,
0: तो है ही,
1: हाँ,
0: उसको
1: फॉर
0: तो सोचा ही
1: ग्रांटेड
0: नहीं.
1: उनको लगती हूँ,
0: हाँ
1: आज मेरा पैसा चला गया लेकिन मेरी मन की स्थिति अभी भी ठीक है, मेरा तन अभी भी ठीक है, मेरा परिवार अभी भी ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया तो ये तो गया गया, साथ में कितना और नुकसान हुआ. क्यों नुकसान हुआ? सिर्फ क्योंकि आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन देयर. सिर्फ बिकॉज आई वॉज मोर, क्यों हुआ, क्यों हुआ, नॉट इवन लुकिंग एट द सोल्यूशन, ओनली लुकिंग एंड चर्निंग ओवर द प्रॉब्लम. सोल्यूशन हर परिस्थिति में है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली आपके सामने, कोई चैलेंज ही नहीं आने वाला जिसमें सोल्यूशन नहीं है. यस, इट जस्ट डिपेंड्स मुझे कितना टाइम लग जाता है उस सोल्यूशन तक पहुंचने में. और सोल्यूशन भी कब दिखाई देगा? सोल्यूशन भी कब दिखाई देगा? जब माइंड थोड़ा सा
0: हाँ, नहीं तो
1: साइलेंट.
0: नजर, यस
1: नहीं
0: नजर
1: तो
0: गया
1: मैं
0: था।
1: अपने दर्द में कौन सा सोल्यूशन दिखाई
0: ओहो
1: देगा? दर्द
0: यस
1: में तो सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाई देगी. और जितना दर्द बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम इतनी भी होगी ना,
0: बहुत
1: तो वो
0: बड़ी हो
1: प्रॉब्लम
0: जाएगी।
1: बहुत बड़ी हो जाएगी. और प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती जाएगी, उतना हम सोल्यूशन से
0: दूर होते
1: दूर होते
0: जाएंगे।
1: जाएंगे. परमात्मा का जो ज्ञान हमें मिलता है राजयोग के द्वारा, उसका पूरा पर्पस ही ये है कि जैसे ही आप अटेंशन आपके कंट्रोल में जो है, एंड दैट्स ओनली वन थिंग, माई स्टेट ऑफ बींग, उस पर जैसे ही जाता है, तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटा देखना शुरू करते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम से बड़े हो जाते हैं. लेकिन अगर मैं कमजोर हो जाऊं, तो मेरे सामने, आफ्टर ऑल इट्स अ फाइट बिटवीन टू ना, प्रॉब्लम एंड मी, हम दोनों का आपस का संघर्ष है, ज्यादा शक्तिशाली कौन. लेकिन क्योंकि मैं इतनी कमजोर हो जाती हूँ, इतनी दर्द में चली जाती हूँ, तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं तो उसको देख के ही बैठ जाती हूँ.
0: इनफैक्ट यहां तो मुझे भी लग गया कि हमें प्रॉब्लम कहना ही नहीं चाहिए। द वे यू सेड इट्स ओनली अ
1: एब्सोल्युटली,
0: चेंज।
1: इट्स ओनली अ चेंज, इट्स अ सिचुएशन, इट्स अ चैलेंज. उसको चैलेंज आप बोलो, बहुत बड़ी बात आ गई आपके सामने, आप उसको चैलेंज करके बोलो. प्रॉब्लम करके बोलते ही तो वो प्रॉब्लम ही एक लगने लगती है
0: एक
1: कि
0: मुसीबत थोड़ी ना, हजारों
1: हजार,
0: मुसीबतें।
1: यू नो, हमारी वोकैबुलरी भी ऐसे आ गई है. तो चेंज आएगा ही. देर इज ओनली वन थिंग, आई हैड रेड दिस समवेयर, वेरी ब्यूटिफुल, देर इज ओनली वन थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट, एंड दैट इज चेंज.
0: चेंज, यस
1: सो
0: आई
1: इट्स सो
0: हैड दैट
1: ब्यूटिफुल. जब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि एक चीज है जो कभी रुकने वाली नहीं है, और वो है परिवर्तन, अब उसको मैं संघर्ष करूं उसके साथ, इट्स नो यूज. जस्ट बिकॉज आई थॉट जैसे चल रहा था वैसे बहुत अच्छा था, ऐसे ही क्यों नहीं चलता रहता ये, व्हाई डज दिस हैव टू चेंज? तो वो मेरे बोलने से या मेरे सोचने से रुकने वाला नहीं है. बट जैसे ही चेंज सामने आएगा, नाउ व्हाट डज इट डिमांड फ्रॉम यू, क्या चाहिए आपको?
0: मैं भी तो चेंज होनी चाहिए।
1: रिस्पॉन्स. एवरी चेंज, दिस चेंज कम्स
0: एक्शन
1: फ्रॉम यू,
0: रिस्पॉन्स।
1: रिएक्शन, राइट?
0: अच्छा, एक चीज मैंने और भी पढ़ी थी, जैसे आपने कहा कि दिस वन थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ दैट इज चेंज, एंड उसके आगे ही था चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड। ये
1: इट इज, दैट
0: बहुत
1: वाज
0: बड़ा क्वेश्चन मार्क है
1: आर्टिकल,
0: लोगों के लिए।
1: यस.
0: सो इस पर हम एक्चुअली पूरी बातचीत करना
1: क्योंकि
0: चाहेंगे।
1: चेंज, व्हेन विल इट बी फॉर गुड? जब उसको आप प्रॉब्लम ना देखकर, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो, कि इस, क्योंकि वही तो परमात्मा हमें रोज बताते हैं कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत बहुत अच्छा. अब इम्पोर्टेंट मेरे लिए सिर्फ ये है कि मुझे इस सेंटेंस को, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य है, किसी मनुष्य आत्मा के नहीं, तो परमात्मा अगर ये स्टेटमेंट हमें दे रहे हैं, दैट मीन्स इट्स द ट्रूथ, दैट इज द फेथ. नाउ इफ आई रिजेक्ट द स्टेटमेंट, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है कि जो भी हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा, देन इट्स ओवर फॉर मी, मैं उसको उस दृष्टिकोण से लूंगी ही नहीं. लेकिन जहां ये फेथ है कि परमात्मा ने ये कहा है, और ये सेंटेंस ऐसा है जो मुझे लगता है हर एक को पता है, यू गो एनीवेयर, इट्स रिटन एवरीवेयर कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर द गुड. लेकिन इसको बिलीव कौन कर रहा?
0: कोई नहीं कर पा रहा है।
1: इसमें फेथ कितना है कि हाँ, जो हो रहा है वो अच्छा? तो लेकिन परमात्मा के महावाक्य है, अगर मैं उस समय, जिस समय मेरे सामने वो चैलेंज आता, मैं अगर वो महावाक्य को अपनी स्मृति में ले आऊं और उसके बेसिस पे अब रिस्पॉन्स क्रिएट करूं, तो वो सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम ना लगकर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि अब इसमें मुझे क्या करना है. ये भी अग्री, एब्सोल्युटली अग्री, कि जो भी सिचुएशन आज आ रही है, ये छोटी नहीं है, ये बड़ी है, कल को और बड़ी भी आ सकती है. लेकिन डज दैट मीन कि आई विल कंटिन्यू टू लिव माई लाइफ इन पेन, और इज देयर अनदर चॉइस? दैट इज
0: पेन
1: वॉट इज
0: एंड फियर
1: इम्पोर्टेंट.
0: ऑल्सो,
1: ऑल द सेम थिंग.
0: कंटिन्यूअस डर सर शिवानी, आज की जो बातचीत हमने की है, सिचुएशंस हमारे सामने वो हैं जो हर व्यक्ति के जीवन की हैं, और कहीं ना कहीं एक ये परिवर्तन कि ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम, ये मुसीबत, ये सरदर्द ना होकर एक चेंज, एक परिवर्तन है। आगे हम जरूर अपने आने वाली श्रृंखला में जरूर देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे है, कैसे इस चैलेंज में हमें देखना है कि ये शुभ के लिए कैसे है, क्योंकि परमात्मा का महावाक्य है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल खरा और सच्चा है। ऐसे शिवानी आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: बिल्कुल, आज जहाँ शुरुआत हमने की थी, सचिवानी ने यही हमसे रिक्वेस्ट की थी, आग्रह किया था कि हम इस जो पूरी बात हो रही है ये सिर्फ बात के लिए नहीं है, हमारे आपके जीवन का एक हिस्सा है, उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास जरूर करें। आज ही से, कल का भी क्यों इंतजार करें, आज ही से जो सिचुएशन अभी मेरे मुझे तंग कर रही है या जो सिचुएशन कल मेरे सामने आ सकती है, मेरी कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू हो सकता है मेरे बॉस के साथ जहां ये तय होना हो कि मैं किस तरफ जाऊंगा, या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी बात हो सकती है जो डिसीजन लेना हो, अगर हम उसे एक चेंज के रूप में, एक परिवर्तन के रूप में एक्सेप्ट कर ले, गुड और बैड हम बाद में देखेंगे। आने वाले एपिसोड्स जो हैं उसमें हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे कि उसमें गुडनेस क्या है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन रही हो, और उसको हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये बातें भी जानेंगे। लेकिन आज के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसे अपने जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करके जो आप अनुभव करते हैं वो हमारे साथ शेयर करें। उसके अलावा अगर आप के पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है, आप देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पर जा सकते हैं और अपने सवालों के जवाब तलाश सकते हैं। अगर आप नजदीक के सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अब एक नहीं ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है कि जीवन में कोई भी परेशानी है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी मुसीबत जिसे हम अभी तक मानते आ रहे हैं, वो एक चैलेंज है, एक परिवर्तन है। इस थॉट को अपने साथ रखें, आने वाली कड़ियों में और बहुत सी बातें करेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। जिंदगी में साथ चलते चलते हम कई बार ये जान लेते हैं कि हमारे साथ वाले की या हमारे सामने वाले जो हमारे साथ है उसकी जिंदगी की क्या परेशानी है। हमारी श्रृंखला में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। आपके ढेरों खत हमारे पास आते हैं, बहुत सा ईमेल आता है और ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ आदतें ऐसी हैं हमारी जिंदगी में जो कभी लगता है कि मजबूरी बन रही हैं। उन्हीं के सॉल्यूशंस तलाशने के लिए हमने एक बार फिर बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। और आपको याद होगा कि पिछली बार हमने कुछ ऐसी आदतों के बारे में भी जाना था जिन्हें हम सिर्फ एक हैबिट मानकर जिए जा रहे थे और ये नहीं जान पाए कि कभी भी ये मजबूरी का सबब बन सकती हैं और मुश्किल खड़ी हो सकती है। आज कुछ और आगे इसी बात को बढ़ाते हैं और कुछ उन एडिक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनसे अगर हम नहीं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा अपना कोई या हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा हो जो उससे अफेक्टेड हो रहा हो। कौन सी हो सकती है ऐसी एडिक्शंस, कौन सी ऐसी आदत हो सकती है जो मुश्किल खड़ी कर सकती है, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू हैव डॉक्टर गिरीश पटेल, जाने माने साइकोथेरेपिस्ट जो कई किताबों के रचयिता भी हैं और माइंड पावर को एक बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का, आम जिंदगी में इस्तेमाल करने का तरीका समझाते हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर गिरीश पटेल। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: और हर बार की तरह हमारे साथ इस पूरी श्रृंखला की हम सफर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
2: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, आज हम मोटे तौर पर उस एडिक्शन की बात करते हैं जिसे ड्रग एडिक्शन भी कहा जाता है कि कई सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो नशे की लत कहते हैं, क्या क्या उनमें शामिल है?
1: बहुत सारी चीजें, अगर सिस्टमेटिकली उसको पूरा देखना हो तो आमतौर पर जैसे हम कहते हैं चरस, भांग, कैनाबिस इंडिका जिसे कहा गया है, वह एक पूरा सारा सा ग्रुप है कि भी जो कहीं साधु भी लेते हैं और ये समझते हैं कि भी उसी से हमें आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं। फिर दूसरा अगर देखे तो हेरोइन, हेरोइन दूसरा एक ग्रुप है और एक पूरा ग्रुप है कि जो पेन किलर्स है, नहीं मॉर्फिन लेते हैं, अफीम देते थे, नहीं जब हम भी छोटे गाँव में तो देते थे ना कि बच्चा रो रहा है अभी अफीम की गोली दे दो तो बच्चा शांत हो जाएगा, फिर माँ अपना काम कर सकती है। इसी प्रकार से और एक है जैसे LSD आपने सुना होगा, और एक सारा ग्रुप है कि जो स्टिम्युलेंट्स।
0: सर शिवानी, जैसे कि डॉक्टर पटेल ने कहा कि गांव में होता था, अफीम की गोली दे दी गई, लोगों से अगर हम ये बात करते हैं तो कहेंगे कि साधु संत भी जैसे कहा कि लेते हैं, हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इनफैक्ट कई बार तो ये कहा जाता है कि भांग खाना, शिवरात्रि के जो महोत्सव मनाया जाता है उसमें भांग खाना एक परंपरा का हिस्सा है।
2: कहीं ना कहीं जो हम करना चाहते हैं उसको ये संस्कृति का हिस्सा कौन लोग देंगे, वही जो उसको करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस में ये भी है कि शायद ठीक नहीं है जो हम कह रहे हैं, तो उसको एक जस्टिफिकेशन तो देनी पड़ेगी ना कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो हमेशा हमने देखा कि हमें कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो मिल जाती है अपने बिहेवियर के लिए, तो उसमें ये जस्टिफिकेशन दे दिया कि रिलीजन ने हमें ये सिखाया या कल्चर ने ये सिखाया, बट देन रिलीजन तो हमें बहुत सारी और बातें सिखा रही है। हैव वी अडॉप्टेड एवरीथिंग? नहीं, जो चीज हमें कन्वीनियंट लग रही है या जो हमारा करने को दिल कर रहा है और वो भी हमने उसके राइट भाव को नहीं समझा है। रिलीजन में जो इंटॉक्सिकेशन की बात आएगी वो कभी फिजिकल नहीं हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी जो इंटॉक्सिकेशन सिखाएगी वो है इंटरनल, कि आप एक इतने नशे में, नशा मतलब वो फिजिकल चीजों का नशा नहीं लेकिन आंतरिक एक खुशी में, एक अति इंद्रिय सुख में रहेंगे, वो इंटॉक्सिकेशन। तो वो अंदर से हम क्रिएट नहीं कर पाए तो हमने कहा फिजिकल चीजें लेकर या एडिक्शन लेकर हम उस नशे को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी जस्ट गिविंग अ जस्टिफिकेशन। इसको कोई हम लॉजिकली एक्सेप्ट करने जैसी बात नहीं
1: है। एस्केपिज्म भी है कि भी आपने कहीं से रियलिटी से भाग जाना चाहते हैं, और जो साधु लेते हैं वो तो सचमुच फिर व्यसन ही हो जाते हैं इसके, भले ये जस्टिफिकेशन तो दे ही रहे हैं
0: लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि उसे ठप्पा मिल जाता है कि वो भी तो पी रहे हैं, तो ये तो पार्ट ऑफ हमारा कल्चर है, तो कभी कभी पी लेना चाहिए, कभी कभी इवन हुक्का ये भी कहते हैं जो स्मोक कर रहे हैं लोग, स्मोकर्स का भी ये कि ये तो परंपरा का एक हिस्सा है, हुक्का पीना, हुक्का ऑफर करना, ये तो एक सभ्यता का हिस्सा आता है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक जस्टिफाई?
1: एक तो वह भी एडिक्शन है पहली बात, दूसरी बात है कि भी धर्म में कहीं भी ये नहीं बताया गया, किसी भी वेदों में बताओ, उपनिषद में बताओ, जहां पर ये लिखा हो कि भी चरस गांजा लेना है, ये तो जो भी ऐसे ही एस्केप करने वाले साधुओं ने सोचा कि इससे उन्होंने फिर से हेलुसिनेशन होते थे, लगा कि जैसे कि हम कोई अति इंद्रिय आनंद में हैं, नहीं, हमें ध्यान में मदद करता है, वास्तव में कोई ध्यान में मदद नहीं करता है ना, उसकी एक आदत लग जाती है और फिर जो आपकी एक्चुअल क्रिएटिविटी है, आज जो हमें कुदरत ने बहुत बड़ी क्रिएटिविटी दी है जिसका 5-7% ही हम यूज करते हैं, उस क्रिएटिविटी को आप टोटली खत्म कर रहे हो।
0: कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, अगर हम इसी पर आ गए हैं कि इसके बारे में जानकारी जानना बहुत जरूरी है, तो आज के इस परिपेक्ष में सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन सा ऐसा वर्ग लगता है जो इसको इसमें पढ़ सकता है और फिर लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलता है?
1: हाँ जी हाँ, तो अगर हम स्टेटिस्टिक्स को भी देखें तो स्टेटिस्टिक्स के भी अनुसार ऑलमोस्ट 90% जो ड्रग एडिक्ट्स है वो करीब 11 साल से 26 साल की आयु वाले हैं। नहीं, ऑलमोस्ट 90%, उन्होंने कुछ बच्चे भी देखे गए हैं, तो इसलिए यही एक मैं समझता हूँ पीरियड है कि उस समय उन्हें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक से एजुकेट करना चाहिए ताकि वह कभी भी, प्रिवेंशन इज द ओनली मेडिसिन, ड्रग्स में ट्रीटमेंट इज वेरी लिटिल, हार्डली नो, आफ्टर रिपीटेड एफर्ट्स हमें 10-20% ही सफलता मिलती है, तो इसलिए उनको इससे बचाना वही सबसे अच्छा इलाज है, या तो कहेंगे वही इलाज है वास्तव में।
0: बिल्कुल, जो जैसा कि आपने कहा कि जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और साथ साथ शिवानी अगर हम बात करें मेडिटेशन की, पिछली कड़ी में मुझे याद है आपने कहा था कि जो भी केमिकल्स इनको खाने से जनरेट होते हैं, जहां कहीं हमें उस सुख की बात करते हैं वो होता है, तो सही मात्रा में वो जो केमिकल्स हैं वो मेडिटेशन से इंड्यूस होते हैं। अभी तक भी ये कहा जा रहा था कि मेडिटेशन इज एन एस्पेक्ट जो कि 30 साल की उम्र में 40 साल की उम्र में आना चाहिए। आज अगर हमारे पास ये आंकड़े हैं कि 11 साल की उम्र का बच्चा एडिक्शन की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो क्या हम 11 साल के उस बच्चे को मेडिटेशन की तरफ नहीं ला सकते?
2: एब्सोल्युटली, और जैसे भाई साहब ने कहा कि उसकी तरफ जाने से पहले ही हमें उसे रोकना है, तो एडिक्शन की तरफ जाने का कारण भी क्या है? टेंशन, कोई डिप्रेशन, लोनलीनेस, जैसे कहा एग्जाम की टेंशन, तो अगर हम ऑलरेडी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अगर फैमिली स्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, तो बच्चा उन तरफ जाएगा ही क्यों? एटलीस्ट ऑन हिज ओन चॉइस नहीं जाएगा, फिर बाकी ध्यान यही रखना होगा कि किसी ने इनडायरेक्टली ना आपको उस चीज की आदत डाल दियो, बट ऑन योर ओन यू विल नॉट वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विद इट। अगर आप अंदर से फुलफिल्ड हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप अंदर से खुश हैं, तो आपको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना खुशी जनरेट करने के लिए। तो उसके लिए परिवार अपना स्ट्रक्चर, जो फैमिली यूनिट है, वो कितना स्ट्रांग बनाकर रखते हैं। अगर पेरेंट चाइल्ड जो रिलेशनशिप्स की भी हमने बात की, वो बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग होगी तो बच्चे के अंदर लोनलीनेस, फियर, एंग्जाइटी ये ट्रिगर नहीं होगा, ही वुड नॉट वॉन्ट टू गो टूवर्ड समथिंग लाइक दिस। अगर बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होगी, तो अगर पियर प्रेशर से कुछ ट्राई करने के लिए कहा भी जाता है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करेगा।
0: तो डॉक्टर पटेल, यहाँ ये बात अभी शिवानी ने भी कही कि अगर बचपन से ही मेडिटेशन का एक एस्पेक्ट डाल दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं विल पावर और डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा ये गया है कि जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स, जैसे कि आपने कहा कि स्कूल और कॉलेजेस में जो आकर्षण बना रहता है और बच्चे उस तरफ आकर्षित होते हैं, ड्रग्स लेने के बाद क्या वो शरीर में जो बदलाव आते हैं, और खासकर उस उम्र की बात करें अगर हम जो टीनेज है जहां ऑलरेडी इतने चेंजेस आ रहे हैं उनकी बॉडीज में, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस फिजिकली आल्सो इन देयर बॉडी?
1: उसका आधार होता है जो अलग अलग वर्ग हमने जिसके बारे में चर्चा की, उदाहरण के रूप में LSD है, तो उसमें एक बार तो बहुत अच्छा लगेगा कि भी मैं स्वर्ग में आ गया, ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था, लेकिन फिर जब जो उसके नर्व्स हैं, नसों को इस चीज की आदत हो जाती है, और जब तक वह नहीं मिले तो नसें इस प्रकार के मैसेजेस देगी कि सारा शरीर टूट रहा है, जैसे कि भी शरीर में जान है ही नहीं, कुछ जो और चीजें पेन किलर्स जैसे मॉर्फिन, पैथेडिन आदि, कि जिससे एक बार दर्द की महसूसता बिल्कुल खत्म हो जाती है और अच्छा लगता है, लेकिन फिर अगर वह नहीं मिलते हैं तो वह केमिकल्स की मांग दिमाग में उत्पन्न होती है, और वह केमिकल्स को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है ना, वो वायलेंट भी हो जाता है,
0: सोचने समझने की शक्ति, एक्चुअली क्षमता खत्म होने लगती है,
1: और वह नहीं मिलने के कारण एक तो वह है, परंतु जब विड्रॉल निर्माण होने लगते हैं तो वह वायलेंट भी हो सकता है। और एक नेगेटिव इफेक्ट है कि जैसे कोकेन जैसी चीज है कि वह नहीं मिले तो व्यक्ति फिर सोता ही रहता है, अनकॉन्शियस होके कोमा में भी जा सकता है। एक्सटेसी में भी ऐसा ही हुआ है कि जो एक बहुत ही फेमस ड्रग हुआ था कि वो अगर नहीं मिले तो व्यक्ति अनकॉन्शियस होकर उसकी मृत्यु भी हो सकती है।
0: डॉक्टर पटेल, ये सारी जब हम बातें सुन रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी ये बैठ के देख पाती हूँ और हमारे दर्शक जो है वो भी ये देख पाएंगे कि ये हम सिर्फ अखबारों में पढ़ते हैं, आज हम अपने प्रोग्राम में सुन रहे हैं या फिर फिल्मों में देखते हैं, मेरे आसपास कभी नहीं हो रहा, मेरे घर में नहीं हो सकता। मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ क्योंकि ये मुझे लगता नहीं कि आई कैन रिलेट टू आम आदमी की आज सोच ये है कि मेरे घर में या मेरे मोहल्ले में आई डोंट थिंक कि मेरे आसपास कोई ऐसा है जो ड्रग लेता है। ये कितनी बड़ी मिथ है, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: बहुत सारे केसेस है, हो सकता है कि भी आपने कभी सुना नहीं, परंतु आपकी सोसाइटी में भी बहुत सारे केसेस है। अगर आंकड़ों को भी देखे तो बंबई और दिल्ली में करीब 3 लाख से 4 लाख सचमुच ड्रग एडिक्ट्स, कि जिनको कहेंगे कि मॉर्फिन, पैथेडिन, ब्राउन शुगर, इस प्रकार की जो चीजें उसको लेने लगे। और देखे जैसे कप सिरप लेते हैं, वो भी सचमुच मेजर एडिक्शन है, वो कोई छोटी बात नहीं है। तो आंकड़े बहुत बड़े। आज कई कॉलेजेस में देखा गया है कि 25-30% कप सिरप लेने लगे और उसके वो एडिक्ट हो गए।
0: लेकिन लोग ये बोलेंगे कि मैं ओकेजनल ड्रग्स लेता हूँ, पार्टी में दो जो जब होता हूँ तो एक एक जॉइंट ले लेता हूँ, या कभी कभार सोशली कहा जाता है, ऑफर किया जाता है, आई एम नॉट एन एडिक्ट। हाउ इजीली दैट पर्सन कैन ऑल्सो बिकम एडिक्ट।
1: अब सबसे बड़ी इसमें जो दिक्कत है कि अगर आप ओकेजनली भी ले रहे हैं और जब आपको कोई टेंशन होगा, कोई समस्या होगी, तो वही चीज याद आएगी। और जिस व्यक्ति ने कभी उसे छुआ भी नहीं है वह और कुछ सोचेगा कि भाई मैं नींद करूं या तो एक्सरसाइज करूं, म्यूजिक सुनूं, मेडिटेशन करूं, ऐसी कोई चीज पर उसका ध्यान जाएगा, वह ड्रग्स नहीं लेगा। और अगर 4-5 बार भी ले लिया तो व्यक्ति पक्का एडिक्ट हो जाता है। बहुत सारे जो ड्रग एडिक्ट्स है जिनको मैंने भी ट्रीट किया है, देखा है कि वो पहले यही बात सोचते थे कि भी मैं तो कभी कभार ले रहा हूं, मैं एडिक्ट बनने वाला नहीं हूं। परंतु जब उन्हें विड्रॉल्स होने लगे और उस विड्रॉल्स को सेटिस्फाई करने के लगे, किसी न किसी तरीके से उन्होंने ड्रग्स लिए, तब यह एहसास हुआ।
0: फिजिकली अगर हम देखें, केमिकली अगर हम अपने अंदर देखें, तो एडिक्ट होना मतलब क्या हो जाता है, क्या होता है हमारे अंदर? जब मैंने एक बार वो ड्रग ले लिया तो उसके बाद मेरे अंदर क्या ऐसा चेंज आया कि मुझे अगली बार जैसी वो सिचुएशन आई या जब भी मन करने लग गया और मैं एडिक्ट हो गई, व्हाट आर द चेंजेस व्हिच टेक प्लेस?
1: दो चीजें जब आप इसमें पूछ रहे हैं ना, एक तो ये समझने की जरूरत है कि हमारा दिमाग और उसके द्वारा जो नसें सारे शरीर में गई है उनको इसकी आदत हो जाती है। और दूसरा, दिमाग में करीब 1000 से अधिक केमिकल्स है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स एक बड़ी मात्रा में निर्माण होते हैं जब व्यक्ति ड्रग्स लेता है, और अच्छी बड़ी मात्रा में निर्माण होने से उन्हें अच्छा लगता है, वो जो सारे अनुभव होते। परंतु अगर 4-5 बार ये ड्रग्स ले लिया, फिर एक दिन अगर आपको नहीं मिला तो ब्रेन व मांग को उत्पन्न करता है सारे, क्योंकि जो नर्व्स है ना सारे शरीर में, प्रत्येक कोशिका में गए, वह सभी इसको डिमांड करते हैं। और वो डिमांड करने के कारण दिक्कत निर्माण होती है, जैसे कि बिल्कुल नींद नहीं आएगी, नहीं आ तो अंदर में चिड़चिड़ापन आने लगेगा, लगेगा कि भी सारी नसें टूट रही है, नहीं सारे जॉइंट्स एक्सट्रीमली पेन हो रहे हैं, डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं,
0: फिजिकल सिम्टम्स इतने हो जाते हैं, तो ये
1: इट्स सो डेंजरस।
0: जी सिस्टर शिवानी, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने की हम बात करते आ रहे हैं अभी तक, कि खासकर अगर इस एस्पेक्ट को देखें कि वन इज एक्सपेरिमेंटिंग, हाउ टू एक्चुअली टेक कंट्रोल ऑफ इट, कि नहीं मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहूंगा, मैं नहीं ट्राई करना चाहता, नहीं करना चाहिए, ये आज के सिनेरियो में, आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो पीयर प्रेशर, और उसमें एक लगता है कि एक बार ट्राई करने में हर्ज क्या है, देखने में हर्ज क्या है, करके देख लेने में हर्ज क्या है, कैसे वो अपने अंदर की विल पावर को जनरेट करे, और एक बार जब होने लग गया तो ये जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, जो फिजिकल हमें पेन या जो भी बातें कर रहे हैं, उनको हम स्पिरिचुअली कैसे हैंडल कर सकते।
2: आई थिंक पीयर प्रेशर को सॉल्व करने के लिए सिंपल बात तो है कि वो जो हमारी सेल्फ एस्टीम है वो बहुत लो होती है, और हमारी सेल्फ एस्टीम ज्यादातर इस पर बेस्ड है। यू नो आजकल ये ड्रग्स लेना, दिस इज ऑल्सो लाइक a status, yeah, you were the in thing over there in the party.
0: You know how to do it. Yes, this becomes very important.
2: You know, and एक party में जो उस तरह की party हो रही है जहाँ बहुत सारे लोग ले रहे हैं और अगर आप नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप feel करते हैं कि आप एक outcast है और तब आप उस pressure के under लेना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप से ही ये बात करनी पड़ेगी कि अगर सब लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि गलत है, I have to have the knowledge कि this is right or wrong for me. बाकी सबके लिए राइट है रॉन्ग है वी नॉट डिसाइडिंग कि अगर लेकिन ये मेरे लिए रॉन्ग है लेकिन अगर सब लोग कर रहे हैं डू आई वॉन्ट टू डू इट डू आई वॉन्ट टू डू समथिंग रॉन्ग जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मेरे बारे में क्या फील करते हैं इज इट बेस्ड ऑन इफ आई डू दिस रॉन्ग थिंग फॉर देम तब आई गेट फोर्स्ड इनटू डूइंग इट लेकिन अगर मैं जो हूं जैसा हूं आई एम फाइन and people would understand me for what I am rather than मैं जो खाता हूँ या जो पीता हूँ तो then I would not need to experiment at least under pressure और दूसरी चीज अगर खुद से दिल करे experiment करने का कि सब लोग ये ले रहे हैं तो पता नहीं ये कौन सी चीज होगी तो again I need to talk to myself कि एक तो हमारी life में already कई ऐसे संस्कार हैं कई ऐसी आदतें हैं जिन्हें हमें फिनिश करना है बिकॉज वो हमें इतनी तकलीफ दे रहे हैं अब उस अवेयरनेस के साथ हम एक नई कॉम्प्लिकेशन क्यों क्रिएट करना चाहते हैं हम जान पूछ कर उस रास्ते पर क्यों चले जहां पता है कि आगे कोई फ्यूचर नहीं फिर वापस आने की जर्नी में इतनी ज्यादा तकलीफ होगी तो उस राह पर चलकर भी क्यों देखे जब नॉलेज है कि वहां पॉजिटिव या हेल्थ कुछ है ही नहीं वट एवर इट इज इट्स अ डिसएडवांटेज तो उस रास्ते पर हम क्यों चल के देखेंगे आई नीड टू रियली आस्क माई सेल्फ कि गलत राह पर चलकर भी क्या देखना है जिसका रिजल्ट ही
0: ऑलरेडी
2: अच्छा
0: पता ही है
2: yes. जब इतना कुछ सुन लिया इतना पढ़ लिया मालूम है इसका क्या फ्यूचर है तो वाई जम्प इन टू दैट वाई वुड आई वॉन्ट टू डू दैट आई नीड टू आस्क
1: और एक बहुत बड़ी बात शिवानी भी नहीं जरूरी है मैं समझता हूँ फैमिली बॉन्डेज आप बोल रहे थे तभी मैं ये सोचने लगा कि जब मैं छोटा था तो कहेंगे कि लोअर मिडिल क्लास वो सोसाइटी होती थी जहां हम रहते थे और कई लोग शराब पीते थे सिगरेट तो कॉमन थी सिगरेट बीड़ी कॉमन थी फिर भी मैंने कभी भी नहीं छुआ और कैसे तब मन तो इतना स्ट्रांग नहीं था सर मेडिटेशन भी नहीं कर रहे थे लेकिन दो फैक्टर मेरे ध्यान में आए जब इस पर चिंतन किया एक तो माता पिता का प्यार है ना मेरी माँ तो अनपढ़ थी कभी स्कूल में गई नहीं लेकिन फिर भी उन्होंने जो आज पैसे वाले नहीं दे सकते हैं ऐसा अच्छा से प्यार दिया तो वह एक और दूसरा फैमिली बॉन्डेज मेरे से दो बड़े भाई थे तो उनके डर के कारण हमने कभी छुआ नहीं
2: आज अगर पेरेंट्स वो चीज कर रहे हैं तो बच्चे भी एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे ही बट अगर घर के अंदर वो सिस्टम सेट किया हुआ है एंड वो पेरेंट्स बच्चों को बताएंगे कैसे ये रॉन्ग है अगर इफ दे आर डूइंग इट देमसेल्व्स आप नहीं बता सकते आप नहीं समझा सकते
0: आप स्ट्रांगली नहीं कह पाएंगे
2: आप नहीं आपके बोल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना जब हम खुद ही वो कर रहे हैं
1: यहाँ पर ही जरूरत है कि बच्चों को क्यों हमें एजुकेट करने की आवश्यकता है
0: अब तो एक और बात देखी जा रही है कि बच्चे अपने फादर फादर या मदर दोनों की स्मोकिंग को छुड़वाने में काफी एफर्ट्स कर रहे हैं ये भी एक रिवर्स प्रोसेस जो शुरू हुआ हुआ है ये भी बात बहुत हो रही है डॉक्टर पटेल यहाँ हम जिन ड्रग्स की बात कर रहे थे और जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं हमने ये तो जान लिया कि ड्रग्स में इंट्रोड्यूस क्यों होते हैं ये कारण भी जाने हमने ये भी जाना कि विड्रॉल सिम्टम्स जो है या क्यों एडिक्शन मतलब क्या हो रहा है लॉन्ग टर्म फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लॉन्ग टर्म ना भी जाए शॉर्ट टर्म भी प्रॉब्लम्स जरूर आती होंगी फिजिकल बीमारियां जो लग सकती हैं और लॉन्ग टर्म ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इट वेयर विल इट लीड अस टू
1: जैसे जो हमारी आम बीमारियां जिसको हम जानते हैं कि भले लोग डिप्रेशन के कारण ड्रग्स लेते हैं लेकिन ड्रग्स अल्टीमेटली डिप्रेशन में व्यक्ति को ले जाते हैं दूसरा जो ड्रग्स है वह पागलपन सिजोफ्रेनिया क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकता है दे रियली बिकम लाइक सिजोफ्रेनिक अल्टीमेटली और शरीर में तो वह है ही जो शारीरिक बीमारियां हैं जैसे कि एसिडिटी अल्सर ब्लड प्रेशर इस प्रकार के प्रॉब्लम्स तो होंगे ही होंगे सारी ने स्किन खत्म हो जाएगी आंखों की बीमारियां होगी सो दोज नो फिजिकल डिजीज आर डेफिनेटली देयर परंतु जो बहुत बड़ी बात है ड्रग्स के लिए जो बहुत बड़ी बात है ना कि वो सारी सिस्टम को खोखला कर देती और मैंने देखा है कि एटलीस्ट 25 से 30% तो मर जाते और वो सभी नौजवान थे
0: और कितना
1: जो मेरे
0: मैंने
1: अपने पेशेंट्स देखे।
0: कितना टाइम लगता है, टाइम स्पैन भी हम ये सोचते हैं अभी तो बहुत दूर की बात है कि मुझे बीमारियां ठीक है मैं तो अभी ले रही हूँ ड्रग्स ले रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन वट एवर विल हैपन देखा जाएगा तब, लेकिन कितना टाइम स्पैन में ये सब दिखने लगती है?
1: ऑलमोस्ट 6-7 मास में फिजिकल डिजीज तो हो गई, सारा शरीर खत्म हो जाएगा, मतलब इस एक्सट्रीम। फिजिकल डिजीज तो फिर भी मैनेजेबल है कि भी आपको ब्लड प्रेशर हुआ, आप चलो दवाइयां ले रहे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया, डायबिटीज हुआ उसे कंट्रोल किया, परंतु यहाँ पर तो आपके शरीर पर कोई एक आम व्यक्ति भी देख सकता है कि भी यह सामान्य नहीं
0: होता हुआ,
1: हाँ वो एबनॉर्मल है। इस प्रकार की बात जिसे पता भी नहीं कि यह नौजवान ड्रग ले रहा है वह भी उस निर्णय पर आ जाएगा। और मैंने तो देखा कि मृत्यु 3-4 साल में ही हो जाता, मेरे कुछ पेशेंट्स में बस 3-4 साल में तो देवर फिनिश।
0: सिस्टर शिवानी, जिन वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो नौजवान है या कोई बड़ा व्यक्ति भी है, एक वैल्यू सिस्टम पे खड़ा हुआ है, हम में से हर कोई एक वैल्यू सिस्टम को लेके ही अपनी जिंदगी शुरू करता है, उन वैल्यूज का क्या हो जाता है वंस वी आर यू नो किसी के और अधीन हो गए, किसी एडिक्शन के अधीन आ गए हैं, तो वो हमारा अपना स्व, जो स्व अभिमान की भी बात करें, आदर्शों की बात करें जिन पर लेकर हम जिंदगी शुरू की थी, उनका क्या हो जाता है?
2: हमारे शायद सारे कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज के हम इतने अधीन हो जाते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यू सी, आफ्टर यू बिकम अडिक्ट टू समथिंग, अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही है, आप उसके लिए झूठ भी बोल सकते हैं, आप उसके लिए चोरी भी कर सकते हैं, आप उसके लिए किसी को फिजिकली हार्म भी कर सकते हैं, अपने आप को हर्ट, मतलब कितना कुछ आप कर देते हैं जो आप नॉर्मल अवस्था में कभी ना करते, क्योंकि आप उसके बिना अब नहीं रह सकते। तो वैल्यू सिस्टम तो पूरी तरह फिनिश हो जाता, एंड सबसे इम्पोर्टेंट शायद अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वो खत्म हो गया। हाँ। वो बिल्कुल, और क्या होता है, ट्राई भी करते हैं उसके बिना चलने के, चल नहीं पाते बिकॉज दे हैव गॉन फार अहेड, तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल फिनिश हो जाता है, और वो जो एक स्टेबिलिटी की स्टेज है जो नॉर्मली नॉर्मल रहती थी सारा दिन, अब वो उस केमिकल के बिना होती ही नहीं है, तो फिर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेफिनेटली फिनिश हो जाएगा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसके बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो विल पावर, जहां एक एस्पेक्ट पे विल पावर फिनिश हो गई, तो वो किसी भी और एस्पेक्ट में, अगर आपको अपना करियर परस्यू करना है या लाइफ में कोई और आए हुए चैलेंज को क्रॉस करना है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो विल पावर डायमेंशन था हमारा वो वीक हो गया है, और उसके बिना फिर हम लाइफ के किसी भी पहलू के ऊपर कैसे चल पाएंगे। तो लाइफ इटसेल्फ यू नो लूजेस इट्स enjoyment, its purpose is over. कहने को हम उस ecstasy में चल रहे हैं, but not really. After some time we reality hit करेगी ना। Drugs लेना मतलब हम reality से दूर होने की कोशिश करते हैं, हम एक illusionary world में रह रहे हैं, but it will collapse after some time and then reality.
1: शिवानी बने तो थोड़ा ही बोला, इसे extreme से ना आप anti-national activity में भी चले जाएंगे, ना जैसे आतंकवादी भी बन सकते, even prostitution. They were pushed into this because of drugs. First entry वहां पर थी, तो इसलिए सोचना जी कि कितना एक्सट्रीम है, पूरा पिक्चर क्रिएट।
0: बिल्कुल, भी एक्चुअली एक मॉडल का एक एग्जांपल भी सामने आया था अभी कि क्या कहां से कहां सिर्फ ड्रग्स के कारण था। डॉक्टर पटेल, ये पूरी की पूरी जो बातचीत है ये आगे और लगातार चलती रहेगी, क्योंकि एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स तक ना सीमित करके जिंदगी के हर आयाम में दिखती है। ये जानना चाहेंगे, हमने सबसे बड़ा आस्पेक्ट लिया है ड्रग्स का, क्या मेडिकली और अगर हम देखें फिजिकली पॉसिबल है इसके सोल्यूशन, कितना भी ज्यादा गहरा एडिक्शन हो क्या इसको निकाला जा सकता है मेडिकली?
1: डेफिनेटली, वेल बहुत डिफिकल्ट है परंतु इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे, अगर सचमुच अच्छी तरह से पुरुषार्थ किया जाए, व्यक्ति खुद करे, साथ साथ में जो डॉक्टर्स उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं वह भी सिर्फ प्रोफेशनल अप्रोच न अपनाए, सचमुच समझे कि एक समाज सेवा है। सारे जीवन में भी एक डॉक्टर अगर 10 व्यसनियों को भी बाहर निकाल पाता है तो उसके जीवन का मकसद पूरा हो गया, नहीं? इस प्रकार की एक भावना उनमें भी हो, साथ साथ परिवार को भी पूरा पुरुषार्थ करना है। मेरे भी जो पेशेंट्स थे उसमें से कुछ एक 8-10 है कि जो सचमुच पूरी तरह से बाहर आ पाए, उनमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान था। माता पिता ने कुछ चीजें छोड़ भी दी कि भल जॉब कुछ समय मैं नहीं जाऊंगा परंतु इस पर मुझे ठीक से मेहनत करनी है, परिवार के सभी सदस्यों ने मिल करके कार्य किया, समाज भी उन्हें सहयोग दे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत कब आती है कि उन्हें लोग एक्सेप्ट नहीं करते,
0: एक्सेप्टेंस
1: जॉब
0: नहीं
1: नहीं
0: मिलता।
1: मिलता है उन्हें।
0: बिल्कुल
1: दोबारा अगर उन्हें जॉब चाहिए तो वह असंभव सी बात हो
0: बिल्कुल।
1: जाती
0: तो
1: है।
0: फाइनली
1: पूरा
0: बात
1: पुरुष
0: यही आती है कि इट कैन बी, यू नो,
1: डेफिनेटली
0: इट इज पॉसिबल स्पिरिचुअली। अगर हम देखें तो यहाँ तो ये बात हुई कि एक बार निकलने के बाद रिलैप्सेस के चांसेस भी नजर आते हैं।
1: बिल्कुल
0: स्पिरिचुअलिटी अगर इसमें शामिल हो जाए, आध्यात्मिकता का एक पुट आ जाए, तो क्या रिलैप्सेस के चांसेस कम हो जाएंगे?
2: एब्सोल्युटली, क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी। जब आप अपने आप को पहचान लेंगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम जो बिल्कुल क्रैश हो गई थी व्हेन यू वेंट इनटू एडिक्शन, और जो औरों का आपके प्रति दृष्टिकोण है वो आपकी सेल्फ एस्टीम को इतना क्रैश कर देता है, तो ये जब स्पिरिचुअल डायमेंशन आपके जीवन में आप इंक्लूड करते हैं तो सेल्फ एस्टीम वापस जागृत हो जाती है। एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नीडेड टू यू नो टू बिगिन ऑल ओवर अगेन। और अंदर क्लैरिटी होगी तो भले जॉब अभी कोई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपना रास्ता खुद ही

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल चेंज। दीज आर लाइफस्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 8FM, World Renewal Spiritual Trust का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुरीरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का विषय है जीवन एक साधना है, संघर्ष नहीं। चलिए हम इस पर आज चिंतन करते हैं। आज के इस व्यस्त और भागदौड़ भरे जीवन में हम सभी किसी न किसी चिंता, तनाव या दबाव से गुजर रहे हैं। कभी काम का बोझ, कभी रिश्तों की उलझन, तो कभी भविष्य की चिंता। ऐसे में मन में एक सवाल उठता है, क्या जीवन सच में इतना कठिन है? प्रिय श्रोताओं, जीवन कठिन नहीं है, हमने उसे कठिन बना लिया है। असल में जीवन संघर्ष नहीं, एक सुंदर साधना है। साधना का अर्थ केवल पूजा पाठ या ध्यान तक सीमित नहीं है। साधना का अर्थ है हर दिन हर कार्य को पूरे मन से करना। जब हम अपने काम को बोझ समझकर करते हैं तब तनाव पैदा होता है, लेकिन जब वही काम हम कर्तव्य और सीख के रूप में करते हैं तो वह साधना बन जाता है। आज हम सफलता को सिर्फ पैसे, पद और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं।

0: लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि शांति भी सफलता का एक मापदंड है? यह सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है तो फिर वह सफलता अधूरी है। प्रिय श्रोताओं, भारतीय दर्शन हमें सिखाता है कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। जब हम परिणाम से ज्यादा कर्म पर ध्यान देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और हल्का मन ही स्वस्थ जीवन की शुरुआत है। आज की सबसे बड़ी समस्या है मन का भटकाव। शरीर यहाँ है लेकिन मन कहीं और। आध्यात्मिक जीवन शैली हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। जब हम इस क्षण को स्वीकार करते हैं तभी जीवन सरल और सुंदर बनता है। जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, वे हमें मजबूत बनाने आती हैं। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, जरूरत है केवल दृष्टि बदलने की। यदि हम हर दिन थोड़ा सा समय स्वयं के लिए निकाल लें, अपने मन से बात करें, आभार व्यक्त करें, तो जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। इसी संदेश के साथ यही कहना चाहूंगा, जीवन को संघर्ष नहीं साधना बनाएं। तो मित्रों, ये था आज का चिंतन। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मार गोरी।
1: अरे हाँ चोरी चोरी मेरा
2: निशाना। पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत।
3: अश्विनी ये ना।
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
5: वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
6: ओम शांती।
5: ओम शांती एंड वेलकम टू बीइंग ब्लिस।
6: थैंक यू
5: सिस्टर। हम ब्लिस की बात कर रहे थे, हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, कंजर्विंग एनर्जी की बात कर रहे थे। तो इससे पहले मैं कुछ आपसे पूछूं, मैं कुछ पढ़ सकता हूं? जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। हाँ जी। द यूनिवर्स इज नॉट पनिशिंग और ब्लेसिंग यू। द यूनिवर्स इज ओनली रेस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशनल एटीट्यूड दैट यू आर एमिटिंग। व्हाट इफ एवरी वर्ड यू सेड वेर अ विश to the universe? Would you still say the same things that you did yesterday? Your thoughts and words echo throughout the universe. Make sure to only put out ones that you want back.
6: This is exactly in line with what we were talking about yesterday.
5: Ji.
6: Kal humne dekha ke thoughts जो सारा दिन हम क्रिएट करते हैं, ये एक ही चीज है जो हम सारा दिन क्रिएट कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं रुकती, रात को भी नहीं बंद होती, कम हो सकती है लेकिन बंद नहीं होती है। एंड विच मीन्स एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ आई एम क्रिएटिंग थॉट्स, एवरी सेकेंड। दिस लिविंग बीइंग जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, ये हर क्षण सोच रहे है। सिर्फ शरीर लेने के बाद नहीं, शरीर छोड़ती है तब भी आत्मा सोचती है, आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो भी सोचती है, फिर बच्चा पैदा होता है तब से सोचता है,
5: तब मन।
6: आत्मा है ना, आत्मा है मतलब सोच है।
5: अब वो के बाद सोचती,
6: सी इट्स एनर्जी। आत्मा यहाँ बैठी है, सोच रही है, मतलब एक एक थॉट क्रिएट हो रही है। अब वो यहाँ बैठने के बजाय अगर यहाँ से निकलकर यहाँ बैठी है, सोचने का काम तो उसका चल रहा है। शरीर में आने से क्या होता है, जो थॉट वो क्रिएट करती है उसको वो इस शरीर के थ्रू एक्सप्रेस कर सकती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, थॉट फिर भी क्रिएट करती है, एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। एक छोटा बच्चा है, थॉट क्रिएट करता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है।
5: कोमा में,
6: कोमा में है, थॉट क्रिएट कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उसको कर नहीं सकते हैं, थॉट क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए अगर जैसे सो ब्यूटिफुली यू सेड, कोई कोमा में है तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या वो हमें सुन सकते हैं, कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारी हर बात सुन सकते हैं, हमारी हर थॉट कैच कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई इस तरह से बीमार है, उनके पास बैठकर हम जो बोलेंगे और बहुत अच्छी प्यारी बातें अगर हम उनसे करें, क्योंकि आत्मा जब एक्सप्रेस नहीं कर सकती तो इट्स लाइक अ पनिशमेंट। यू नो, यू वांट टू से समथिंग बट यू कांट से इट, यू वांट टू डू समथिंग यू कांट डू इट, सो इट्स लाइक
5: सपने में भी होता है, आई वांट टू से समथिंग लेकिन आवाज नहीं निकल रही, चोक हो गया।
6: इसी तरह जब आत्मा माँ के वूम्ब में भी होती है, बोल नहीं सकती, छोटा बच्चा होता है, अपनी बात नहीं बता सकता है, सिर्फ रो सकता है, भूख लगी तो भी रोएगा, पेट दर्द हो रहा है तो भी रोएगा,
5: नींद आई
6: तो भी रोएगा, बिकॉज इट जस्ट कांट डू इट एनी अदर वे, सो दिस इज सफरिंग, क्योंकि वो रोता ही जाता है हर बात के लिए, रोता ही जाता है, दिस इज सफरिंग, क्योंकि बोलना चाहता है, बताना चाहता है, बता नहीं सकता, क्योंकि अभी तक फिजिकल कॉस्ट्यूम रेडी नहीं है, बताने के लिए. इसी तरह जब कोमा में है तो आत्मा का ब्रेन से जो कनेक्शन होता है, सी आत्मा थॉट क्रिएट करती है, सिग्नल ब्रेन को भेजती है, फिर ब्रेन उसको बॉडी के थ्रू मैनिफेस्ट करके बाहर ले आता है. कोमा में सिर्फ इतना सा होगा, बॉडी भी है वहां, ब्रेन भी है, सब ठीक है, लेकिन आत्मा का ब्रेन से जो एक कनेक्शन है ऐसे डिस्कनेक्ट हो गया. वो एक तार जिसको बोलेंगे ना, जैसे डिस्कनेक्ट हो गई तो लिंक टूट गया. तो सोच रही है, सुन रही है, फील कर रही है, सिर्फ उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकती ब्रेन को, और फिर ब्रेन बॉडी के थ्रू उसको करा नहीं सकता. तो इट इज सो पावरफुल कि हर क्षण आत्मा सोच रही है, एंड जो चीज हम हर क्षण कर रहे हैं उसी के बारे में हम अवेयर नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं.
5: तो ये अवेयरनेस हमें नहीं थी कि हमें अवेयर होना है.
6: होना है. और इसी तरह जैसे आपने कहा, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी सोच रही है, वाइब्रेशंस रेडिएट भी कर रही है, हम जो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं उस आत्मा के लिए जिसने शरीर छोड़ा है उसको भी कैच कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस आत्मा के प्रति जिसने शरीर छोड़ा है हम कैसी थॉट क्रिएट करते हैं.
5: कितने भजन करते हैं, पूजा करते हैं, उस समय पे भगवान का नाम लेते हैं,
6: भजन करते हैं,
5: बोलते हुए ले जाते हैं,
6: पूजा भी करते हैं, लेकिन बहुत रोते भी हैं. भजन तो कर रहे हैं लेकिन बहुत रोते हैं. रोते भी हैं लेकिन साथ साथ क्या बोलते हैं और सोचते हैं, कैसे चले गए ऐसे, मेरा क्या होगा अभी आपके बिना, आपको वापिस आना ही पड़ेगा, मुझे तो जीना ही नहीं है आपके बिना. एक एक थॉट ये हमें विजुअलाइज करना होगा कि हाउ इट फील्स कि हम यहाँ से निकले, हम एक दूसरी जगह पर हैं और हमारा परिवार कंटिन्यूसली इस तरह के मैसेज भेज रहा है.
5: सपोजिंग मैं छुट्टी पे या बिजनेस के लिए अमेरिका गया.
6: हाँ, यस.
5: और पीछे से अब बोल रहे, आपने सोचा भी नहीं कैसे चले गए, हम काम कैसे करेंगे, घर कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, आप वहाँ क्यों चले गए, जल्दी वापस आ जाओ.
6: और वो भी कॉन्स्टेंट.
5: हाँ.
6: ऐसा नहीं दिन में एक बार ऐसा मैसेज आ जाए.
5: कॉन्स्टेंट नहीं.
6: हाँ.
5: दुख से, रोते हुए, दर्द से.
6: कॉन्स्टेंट
5: नहीं,
6: कॉन्स्टेंट.
5: कॉन्स्टेंट भी है तो खुशी से नहीं.
6: खुशी से नहीं ना. हाँ, दर्द के. और वो भी एक व्यक्ति से नहीं, परिवार के कई लोगों से. तो ये आत्मा जिसने शरीर छोड़ा उसके लिए कितना सफोकेटिंग होगा. अब आप तो अमेरिका गए तो वापिस आना हो तो आ तो सकते हैं ना, फोन पर बात कर सकते हैं. तो इट्स नॉट दैट सफोकेटिंग, उतना सफोकेशन नहीं है. फिर भी परेशान होंगे ना वहां कॉन्स्टेंटली ऐसे मैसेजेस मिले. अगर दिन में कोई दो ईमेल भी भेज दे ऐसे, या दिन में एक बार फोन करके भी रोज ऐसा बोल दे, तो भी कितना परेशानी होगी. और यहाँ तो आत्मा शरीर छोड़ के गई है, वापस आ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, और उसको कॉन्स्टेंट और पूरे परिवार से ऐसे मैसेज मिले तो कैसी फीलिंग क्रिएट होगी. तो ये हमें सारा दिन इस डायनेमिक्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए. बच्चा गर्भ में है तो भी थॉट्स कैच कर रहा है, बोल सुन रहा है, बता नहीं सकता. अटेंशन रखे हम उस बच्चे के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं. द सोल इज कैचिंग एंड थिंकिंग एंड फीलिंग, नॉट ओनली जस्ट कैचिंग.
5: पुरानी कहानियों में थे, गर्भ में इसने ये सीख लिया.
6: yes.
5: बाप ने ये सुनाया तो गर्भ ने में इसने ये सुन लिया.
6: Absolutely.
5: वो सीख लिया.
6: एब्सोल्युटली. नो, सो इट्स नॉट ओनली जस्ट कैचिंग बट इट्स ऑल्सो थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट दैट. सपोज हमारे मतलब somebody is expecting a baby and उसके घर में ये चिंता हो, ये बच्चा आ रहा है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं इसको कैसे बड़ा करूंगी, कैसे पालूंगी, हमारे पास तो घर में एक ही कमरा है, दो कमरे भी नहीं है,
5: पता नहीं लड़की है कि लड़का,
6: लड़की है या
5: लड़का है, शादी कैसे करेंगे, लड़का हुआ तो ये होगा.
6: अच्छा लड़की है तो मेरा परिवार ही मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरी तो ऑलरेडी दो बेटियां हैं. अब ये आत्मा गर्भ में ये सब कैच भी कर रही है, मतलब सुन भी रही है, लेकिन सुनने के बाद उसके बारे में सोच भी रही है, फील कर रही है.
5: टाइप की फीलिंग.
6: हाँ, लेकिन कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ना,
5: कि मैं बोझ बन के तो नहीं आ रहा हूँ.
6: सो दिस वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. हर आत्मा वो मन है जो हर क्षण सोच रहा है, और जो आपने अभी पढ़कर सुनाया, जो हम सोच रहे हैं वो रेडिएट हो रहा है, और जो रेडिएट हो रहा है वही हमारा भाग्य है, क्योंकि वही एनर्जी वापस आएगी. जब वो बच्चा माँ के गर्भ में है तब से वो अपना भाग्य क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि वो सोच रहा है. तो उसको हमें कैसा मटेरियल देना चाहिए सोचने के लिए, ताकि उसकी सोच अच्छी हो। हम इस बात पर तो ध्यान रख लेते हैं कि बच्चा किस दिन पैदा होना चाहिए, किस पल पैदा होना चाहिए, पैदा होते ही उसकी जन्म पत्री होनी चाहिए, किस अक्षर से उसका नाम होना चाहिए, कैसा पूजा होनी चाहिए जब बच्चा पैदा हुआ, नामकरण है तो कैसे पूजा होनी चाहिए, क्यों हम ये सब कर रहे हैं, ताकि उस बच्चे के लिए सब कुछ शुभ होना चाहिए, उसका भाग्य श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन उसका भाग्य सिर्फ ये बाहर की चीजों से, तो उसका भाग्य तो उस क्षण बनना शुरू हो गया जब वो आत्मा आपकी सोच कैच करके अपनी सोच क्रिएट करने शुरू कर दे। अगर हमने उस आत्मा को किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट्स दे रहे थे, अच्छा चलो उस बच्चे के प्रति नहीं भी क्रिएट कर रहे थे, हमारी जो लाइफस्टाइल है अगर उसमें टेंशन है, एंग्जाइटी है, सपोज उस बच्चे के पेरेंट्स ही झगड़ा कर रहे हैं, अगर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा भी हो रहा है, तो वो आत्मा पहले से ही नहीं कैच कर रही कि ये जो दो लोग जिनके पास मैं जा रही हूँ ये तो ऑलरेडी कितना झगड़ा करते हैं।
5: अगर इतना कोई मजबूरी से पैदा हुआ हो बच्चा और बड़ा हो के उसकी जो हरकतें कुछ आपको अच्छी नहीं लगे, तो उसके ऊपर हम उसको दोष कैसे दें फिर?
6: मैं
5: दूसरे पॉइंट से सोच रहा था,
6: अगर हमने कह दिया स्ट्रेस नेचुरल है, गुस्सा नेचुरल है, तो उस घर में जहां वो आत्मा ऑलरेडी आ चुकी है और वो थॉट्स को कैच कर रही है, और जिस क्वालिटी की थॉट्स को कैच कर रही है उस क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट कर रही है, और जो थॉट्स क्रिएट कर रही है वो उसका भाग्य अभी लिख रही है। सो द पेरेंट्स, द इन लॉज, मतलब जितने भी लोग आसपास उस बच्चे के, उस आत्मा के हैं, दे नीड टू रिमेम्बर कि अगर वो चाहते हैं, क्योंकि इंटेंशन बहुत अच्छी है ना, कि ये जो हमारे घर बच्चा आया है इसका भाग्य बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर चाहते हैं कि उसका भाग्य अच्छा हो तो उसके लिए उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, अगर चाहते हैं कि उसकी सोच अच्छी हो तो उसको उस समय से ही अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी सोच देनी होगी, और फिर जैसे ही बच्चा पैदा हो और थोड़ा बड़ा हो उसको सही सोचना सिखाना होगा। अगर सही सोचना नहीं सिखाया तो फिर सही समय, सही दिन, सही अक्षर का नाम, ये सब चीजें भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दिस वाई दीज टू लाइन्स आर सो पावरफुल। द यूनिवर्स इज नीदर ब्लेसिंग यू नॉर कर्सिंग यू। हम कह देंगे ऐसे समय पे पैदा हो गया, मतलब वी आर ब्लेमिंग द यूनिवर्स,
5: नॉट इवन पनिशिंग यू।
6: इट इज नॉट ब्लेसिंग यू। सी, इट्स नॉट इवन सेइंग इट्स नॉट पनिशिंग यू, इट्स सेइंग इट्स नॉट ब्लेसिंग यू ऑल्सो। हम अच्छा अगर कहे ना कि नहीं, पनिश नहीं करती प्रकृति या परमात्मा, पनिश नहीं करता, लेकिन ये कहता है ना पनिश करता है ना ब्लेस करता है, यू आर ओनली गेटिंग दैट
5: व्हाट
6: यू आर रेडिएटिंग आउट। तो सारी पावर किसके पास है?
5: मतलब जैसे जो परफ्यूम हम लगाते हैं उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है,
6: और उसकी खुशबू सबसे पहले किसको मिलती है?
5: मुझे।
6: दिस इज इट।
5: तो मतलब ये वो जो वही रेड उसी प्रकार ये है।
6: Yes, हर सोच, मेरी हर सोच सारा दिन जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो पहले मुझे मिलती है, फिर मुझसे रेडिएट होती है, रेडिएट होके वो वापस मेरे पास आती है। कर्म और भाग्य, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये तो मालूम है कि वो रेडिएट हो रहा है, रेडिएट होके वो वापस आ रहा है, जब रेडिएट हो रहा है कर्म, वापिस आ रहा है भाग्य। सिर्फ ये हुआ कि जब हमने अपने कर्म को चेक किया तो हमने सोचा जो हम करते हैं वो कर्म है, जो हम बोलते हैं वो कर्म है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी गहरा सिखाती है जो हम सोचते हैं वो पहला कर्म है।
5: मेरे ये समझ में नहीं आया कि अभी सोच को कैसे सोचें या फिर चेंज कैसे करें या बदलें कैसे, क्योंकि मुझे अभी भी सोचने के बाद खाते समय कभी कोई बिल्कुल फालतू सी थॉट आ जाती है, तो मेरा खाने का फिर क्या हुआ, आप खाना रोक दे, नहीं मैंने सॉरी मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, ये सोच इतनी देर देर बाद पता चलेगा कि मैं सोच रहा हूँ तो मैं करूँ क्या
6: इसमें भी,
5: इसकी भी फिर टेंशन हो जाएगी मुझे।
6: हमारी थॉट्स की क्वालिटी, अब हमें थॉट्स को चेंज करना है ना, एक तो टू मेनी थॉट्स एंड क्वालिटी ऑफ थॉट्स, तो अगर मुझे अपनी थॉट्स की क्वालिटी को चेंज करना है तो फिर मुझे एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा कि मेरी थॉट्स किसकी वजह से क्रिएट होती है। क्रिएटर तो मैं हूं, लेकिन उस क्रिएशन का भी रॉ मटेरियल क्या है?
5: For example,
6: जैसे फिजिकल एनर्जी है, हमें आज पता चल रहा है कि मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ या वीक हूँ, एनर्जी है या नहीं, परिस्थिति मतलब मौसम को फेस करने की मेरे अंदर ताकत है या नहीं, लेकिन ये एनर्जी क्रिएट किस बेसिस पे हुई, मेरा रॉ मटेरियल जो इस बॉडी को दिया जा रहा है, डाइट एंड एक्सरसाइज। तो अगर मुझे इस एनर्जी को चेंज करना है, मैं बार बार सिर्फ बोल नहीं सकती ना, शरीर कमजोर है, शरीर कमजोर है, क्या करूं, शरीर कमजोर है, शरीर कमजोर है तो उसको स्ट्रांग बनाओ। तो देन आई विल आस्क समबडी, अच्छा स्ट्रांग बनाओ तो क्या करो, तो बोलेगा ये डाइट, ये एक्सरसाइज, ये विटामिन, सनलाइट, वाटर, 5-6 इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे। आप ये करो, शरीर ठीक, एनर्जी ठीक, एनर्जी ठीक, चीजों को फेस कर लेंगे। मौसम बदलेगा, गलत खाना आप खाएंगे, कुछ होगा, यू विल मैनेज, यू विल क्रॉस एवरीथिंग। अब मन कमजोर है, कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, छोटी छोटी बात में बीमार हो जाता है। स्ट्रांग करना है, कैसे स्ट्रांग करूं, रॉ मटेरियल को चेक करो, क्या रॉ मटेरियल जा रहा है इसके अंदर। तो थॉट्स जो हमारे हैं, उसकी जो क्रिएशन है, उसके लिए 3 रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मीन्स 3 फैक्टर्स जिसके बेसिस पे थॉट्स क्रिएट होती है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, जो हम सारा दिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सब कुछ जो ऐसे जा रहा है, एनीथिंग, चलते चलते क्या पढ़ा, सुबह अखबार में क्या पढ़ा, टीवी पर क्या पढ़ा, क्या सुना, कैसी मूवी देखी, कैसे गाने सुने, किन लोगों से आज बात की, कैसी बातें सुनी, एवरीथिंग जो आई टेक इन, इनटेक, यू नो, इनटेक ऑफ द बॉडी, इनटेक ऑफ द सोल। तो ये जो इनटेक जाएगी, ये स्टोर हो जाएगी जाकर, जिसको हम कहेंगे मेमोरी। मेमोरी में स्टोर जो क्वालिटी की इनटेक हो गई,
5: तो ये एक बैंक की तरह है।
6: हाँ, आपके पास कितनी मेमोरीज है, आपके पास, जैसे आपने लास्ट टाइम कहा 10 साल पहले मुझे किसी ने शादी पे नहीं बुलाया, तो वो मुझे याद है ना, तो वो कहाँ स्टोर हुआ हुआ है, मेमोरी में। तो वो सारा स्टोर होता जाएगा। अब जो स्टोर होता जाएगा, स्टिमुलस आएगा, मतलब परिस्थिति आएगी, जब परिस्थिति आएगी वो मेमोरी बैंक को ट्रिगर करेगी। जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी, उस क्वालिटी की ही थॉट क्रिएट होगी, ये डेफिनेट है। इसके साथ तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है। आप जो स्टोर करेंगे, परिस्थिति आएगी, जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर की होगी, परिस्थिति उसको ट्रिगर करेगी और उस क्वालिटी की थॉट क्रिएट होती जाएगी। अगर हम सारा दिन में, आज क्यों इतना बोला जाता है कि बच्चे वायलेंट ज्यादा हो रहे हैं ना, अग्रेसिव ज्यादा हो रहे हैं, तो इमिजिएटली ये कहते हैं आज वो वायलेंट कार्टून्स देख रहे हैं। पहले हम बहुत सिंपल क्यूट सी कार्टून्स देखते थे, आज कार्टून भी वायलेंट हो गई है। आज जो वीडियो गेम खेलते हैं उसमें भी वायलेंस है। आज टीवी वो देखते हैं जो हम नहीं देखते थे जब हम छोटे बच्चे थे, उसमें भी वायलेंस है। तो ये जो सब वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब वो उनके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। क्यों? इंफॉर्मेशन, थॉट्स, थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, हैबिट, एक्शन, पर्सनालिटी। सो इंफॉर्मेशन पर्सनालिटी बन गई, वायलेंट इंफॉर्मेशन ली, वायलेंट पर्सनालिटी बन गई।
5: एक सवाल था, खाना शरीर के लिए, मैंने आज अच्छा अच्छा खाना शुरू कर दिया बीमार होने के बाद, डॉक्टर ने बोला अभी आप फल खाओ, फ्रूट खाओ, अच्छे थोड़ी सब्जियां हरी हरी खाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो, योगा करो, लेकिन पहले, उससे पहले मैं जंक फूड या नशे वाली चीजें सब, तो तब बॉडी, तब की अब की फर्क, इसी तरह जो खाना हमने माइंड को पहले दिया हुआ था, आपने जैसे कहा 10 साल पहले वाली बात, उसको फिर मैं अब नया वाला कैसे करूं, आज जो खाना थॉट को दूंगा वो इम्पोर्टेंट है, पुराने वाले को मैं कैसे डिलीट करूं।
6: जैसे शरीर भी पुराने वाले खाने से बना हुआ ना, अगर जो हमने 30 इयर्स खाया वो शरीर के अंग अंग में है ना, ब्लड में, मसल्स में, बोन्स में, मैंने दूध ही नहीं पिया बचपन से, तो हड्डी तो कमजोर है, अब वो बना हुआ है। लेकिन अब जैसे ही नया डाइट देना शुरू करेंगे, धीरे धीरे बॉडी का स्ट्रक्चर उससे चेंज हो जाएगा। सेम विद द माइंड, अगर वो स्टोरेज बैंक है जैसे, और वहां बहुत कुछ स्टोर्ड है, अब हम वो स्टोर्ड को निकाल नहीं सकते, वी कांट रिमूव इट। तो स्टोर्ड है तो हमें क्या करना है, सिर्फ डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है, जितना ये डलता जाएगा, क्योंकि स्पेस तो उतनी है ना फिर आपकी, इट्स लाइक अ बोल, आपने एक कटोरा लिया जिसमें गंदा पानी है, अब अलाउड नहीं है, कटोरे को टेढ़ा करके खाली नहीं कर सकते, तो एक ही ऑप्शन है ना, दूध डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, एक बूंद दूध भी अगर जाएगा तो एक बूंद गंदा पानी स्पिल ऑफ हो जाएगा, एक बूंद भी अगर जाएगा एक बूंद स्पिल ऑफ हो जाएगा, भरते जाओगे दूध की मात्रा बढ़ती जाएगी, पुराने गंदा पानी कम होता जाएगा, एक दिन आएगा बर्तन पूरा दूध से भरा हुआ होगा। आज जो बच्चे वायलेंट मूवीज या वायलेंट वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, आज बंद करा दो एंड उसको सब्स्टिट्यूट कर दो कोई बहुत ऐसे, जैसे पहले मॉरल स्टोरीज, जकार्ता टेल्स, ये वो ऐसी कहानियां हमें सुनाएंगे ना, आज वायलेंट है, तो जो कहानियां सुनकर पढ़कर जिस तरह की कॉमिक्स पढ़कर हम बड़े हुए वो यहाँ है।
5: हम लोग बचपन में कैसी कैसी कहानी सुनते थे, वाल्मीकि जी की, और श्रवण कुमार अपने माता पिता का कैसे ख्याल रखता था, यू नो ऑल दीज थिंग्स, अभी तो कुछ और ही हो गया।
6: तो अभी क्या देख रहे हैं वो, आज उनके पास 24/7 टेलीविजन है, हमारे पास नहीं था, आज उनके पास 24/7 इंटरनेट है, हमारे पास नहीं था, फॉर्चुनेट, एक्चुअली फॉर्चुनेट कि इतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं था, एंड इन्फॉर्मेशन होना प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब आज अगर बच्चा पेरेंट के साथ बैठकर न्यूज देख रहा है तो वो क्या न्यूज देख रहा है, यहाँ वायलेंस, यहाँ डेथ, यहाँ अटैक, यहाँ गलत गलत गलत, हर आधे घंटे की न्यूज में उसने एक एक विजुअल क्या देख लिया, तो थॉट क्या क्रिएट हुई, दुनिया ऐसी है, ये दुनिया ऐसी है, और फिर विजुअल देखा, फिर उसके बाद उसकी पूरी फैमिली ने बैठकर उसको डिस्कस भी किया,
5: नाश्ते की टेबल से शुरू हो जाता है,
6: इन्फॉर्मेशन कौन सी जा रही है। कल यहीं पे जहां हम शूट कर रहे हैं, कुछ बच्चे आए थे बिजनेस स्कूल से, 5 लड़के थे, तो मैंने कहा आप बिजनेस स्कूल से पास होकर क्या करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं। आई सेड गिव मी वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, बिजनेस करने के लिए कौन सी चीज आप याद रखेंगे, एक चीज कौन सी पक्की करते हैं, तो एक ने कहा बी ऑनेस्ट विद योर बिजनेस, डजेंट मैटर हाउ यू आर विद अदर पीपल। तो आई सेड इसका क्या मतलब है, तो कहा अपने काम के साथ, काम के प्रति पूरी मतलब वफादारी, ऑनेस्टी, उसके लिए चाहे आपको आसपास के लोगों के साथ कुछ भी करना पड़े। मतलब ये किसने सिखाया कि आसपास के साथ आप कुछ भी करो, मतलब अपने काम में आपको ऑनेस्टी चाहिए, कहते दुनिया में यही है आज। बोले ये किसने सिखाया, मम्मी पापा ने बोला आपको, कहते नहीं हम सारा दिन नहीं देख रहे क्या दुनिया में क्या है, यही चलता है, ये कहाँ सीखा।
5: बी ऑनेस्ट विद योर बिजनेस, इसका मतलब है बी डिसऑनेस्ट विद द वर्ल्ड,
6: ही सेड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव टू डू विद एनीबॉडी।
5: हाँ तो यही तो मीनिंग हो गया कि बी डिसऑनेस्ट विद द वर्ल्ड, अपने बिजनेस के साथ आप ऑनेस्ट रहो,
6: मतलब आपको अपने प्रॉफिट पर, अपने काम पर फुल अटेंशन, डजंट मैटर आपको। एंड सेंटेंस कितना अच्छा बनाया था उसको, ऐसे रहा कि मम्मी पापा ने तो नहीं सिखाया ये, कहते नहीं वो तो सिखाते हैं कि सबको सुख दो। मैं कहता मम्मी पापा तो अच्छी बात सिखा रहे हैं सबको सुख दो, लेकिन सारा दिन इन्फॉर्मेशन, विजुअल, ऑडियो, इंटरनेट, टीवी, दोस्त, तो वो एक मम्मी पापा भी कितना सिखाए फिर। सो इन्फॉर्मेशन का कितना बड़ा रोल है। आज सुबह उठेंगे म्यूजिक बजना शुरू हो जाएगा, टीवी न्यूज, मेजोरिटी हाउसेस बिगिनिंग द डे, मॉर्निंग डे 6 o'clock मॉर्निंग टीवी न्यूज, मतलब एंड ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सारी सुबह 6 o'clock आने वाली है।
5: वर्ड बड़ा अच्छा है ब्रेकिंग, किस किस चीज को ब्रेक कर देता है,
6: ब्रेक्स लॉट ऑफ अस इट कम्प्लीटली, बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग आई एम गोइंग लाइक दिस। सुबह का समय मन एकदम फ्रेश होता है, मनोवैज्ञानिक साइकाइट्रिस्ट बताते हैं कि मन की जो अब्सॉर्प्शन पावर है वो सुबह के 2-2.5 hours है, वेरी हाई। आप देखो हमें तो बचपन में सिखाते थे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, आज तो वो भी ऑपोजिट हो गया है, रात को पढ़ते हैं,
5: कॉफी पी के मास्क कॉफी रख देती है स्ट्रॉन्ग, ताकि नींद ना आए बच्चे को, पूरी रात पढ़ो बच्चे।
6: पर हमें तो सिखाया जाता था एंड जिसका हमें बेनिफिट हुआ है कि अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ना है, मन फ्रेश, जिस चीज जो किताब लेकर बैठोगे वो ऐसे अंदर समझ आती जाएगी, फिट होती जाएगी, बिकॉज क्लीन ब्लॉटिंग पेपर है।
5: कई रिलीजन्स में ऐसा ही है ना, सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करना,
6: सभी जगह है ना, क्योंकि साइंस ने ये प्रूफ किया है कि जो सुबह का समय है 4 बजे का, 3 से 5, 6 बजे का, ये जो समय है
5: वातावरण,
6: यस अमृत वेला,
5: गुरादा वेला,
6: यस ब्रह्म मुहूर्त,
5: ब्रह्म मुहूर्त
6: शब्द कितने सुंदर है, बिकॉज इट्स द हाईएस्ट एनर्जी टाइम ऑफ द डे, हाईएस्ट एनर्जी टाइम, एंड उस समय जो वातावरण में हाईएस्ट एनर्जी है, यहाँ की क्रिएटिविटी हाईएस्ट है उस समय. अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, यू नो समटाइम्स पता ही नहीं चल रही है, गेट अप एट फोर ओ क्लॉक, जस्ट एक्सपेरिमेंट दिस एंड सी. टू रीजंस, मेजोरिटी पीपल आर स्लीपिंग एट दैट टाइम. सो जब मेजोरिटी लोग सो रहे होते हैं, मतलब मेजोरिटी जो एनर्जी है, मन की एनर्जी जो आज काफी तनाव और गुस्से वो वाली क्वालिटी की है, वो सब थोड़ी साइलेंट है. ये वो टाइम है. आज लोग 1, 2, 3 बजे तक भी जाग रहे हैं, 4 बजे तक आते आते मेजोरिटी लोग सोने जाते हैं. 4 बजे जो लेट सोते हैं वो भी अभी सोए हैं, तो थोड़ा जल्दी सो के 5, 6 बजे उठते हैं वो भी सोए हैं. 4 o'clock इज द टाइम व्हेन मेजोरिटी पीपल आर स्लीपिंग, बोथ द साइड्स आर स्लीपिंग. उस टाइम आप उठ जाइए, फ्रेश होकर आप साइलेंस में बैठ जाइए, कुछ नहीं, इवन इफ यू आर नॉट प्रेइंग, नॉट मेडिटेटिंग, नथिंग, जस्ट सिट एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द सोल्यूशन, यू विल गेट इट. क्योंकि वो हाईएस्ट एनर्जी टाइम है, हाईएस्ट एनर्जी इवन ऑफ यू. जो इंट्यूशन हम कहते हैं, इंट्यूशन को एक्टिवेट करना है. इंट्यूशन तब एक्टिवेट होगी जब ऊपर की लेयर ऑफ थॉट्स साइलेंट होगी ना, मेरी सारा दिन की बातें, प्रॉब्लम्स की बातें, गुस्सा, ये साइलेंट होगा. तो जो इंट्यूशन है कि अंदर वाला जो मेरा ट्यूटर बैठा है, वो अंदर वाला टीचर जिससे मुझे सोल्यूशन चाहिए, वो उस टाइम ईजी हो जाता है. क्योंकि मेरा भी कॉन्शियस माइंड साइलेंट है, आसपास भी वातावरण में कॉन्शियस माइंड साइलेंट है, प्रकृति हाईएस्ट एनर्जी पर है. ये समय पर हम जब उठे, हमारा माइंड हाई एनर्जी पर है. अब ये समय पर हम जो पढ़ें भी, अगर स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट टाइम टू स्टडी 4 to 7, बिफोर गोइंग टू स्कूल, बिफोर गोइंग टू कॉलेज. इफ यू स्टडी, मेहनत कम, रिजल्ट कई गुना ज्यादा मिलने वाला है, बिकॉज इट विल जस्ट गो इन लाइक दिस.
5: कल सुबह 4 बजे में उठकर क्या ये कर सकता हूँ कि मैं अपने आप के साथ बैठकर ये सोच सकता हूँ कि मैं सोच कैसे कम करूँ,
6: yes?
5: अच्छी सोच कैसे लाऊं, और अवेयरनेस कैसे रहे कि मैं क्या सोच रहा हूँ.
6: आप 4 बजे ये करें, सी अगेन, बिकॉज इट्स अ वेरी फर्टाइल टाइम, फर्टाइल लैंड जब होती है, समय अच्छा होता है, मौसम अच्छा होता है, ऐसे समय पे बीज डाल देना चाहिए. जब अभी कैसे है, ये टाइम पे कॉन्शियस माइंड अवेक है, तो जो बीज हम डालते हैं वो अंदर नहीं जाता है. सी, एक है कॉन्शियस माइंड, मतलब रोज की थॉट्स, ऊपर की लेयर, एक है सब कॉन्शियस माइंड, मतलब डीप लेयर ऑफ थॉट्स. अब हम जो थॉट क्रिएट करते हैं ना, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये ऊपर जैसे धरती पे बस ऊपर आती है और बीज खत्म हो जाता है, नीचे नहीं जाती है, उसको नीचे जाना है. क्योंकि वो, हाँ, नीचे जाने के लिए जो ऊपर की मिट्टी है उसको हटाना पड़ता है. तो आप सुबह 4 बजे उठकर ये नहीं सोचे कि ये मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, आपको जो करना है सारा दिन, सपोज यू वॉन्ट टू से टूडे होल डे आई विल बी वेरी पीसफुल, इंस्टेड ऑफ डोंट गेट अप इन द मॉर्निंग एंड थिंक व्हाई आई गेट एंग्री, आई शुड नॉट गेट एंग्री, वो बीज चला जाएगा अंदर, जो सोचेंगे वो बीज अंदर चला,
5: हाँ
6: मेरे से होता ही नहीं, मैं कितना ट्राई करता हूँ, ये कितना, ऐसा नहीं. क्रिएट वन पावरफुल बीज, एक श्रेष्ठ बीज लेना है. आई एम अ पीसफुल सोल,
5: आई विल ट्राई दिस टुमारो मॉर्निंग एंड कम बैक टू यू अगेन. आई एम अ पीसफुल सोल. थैंक यू सिस्टर.
6: थैंक यू.
5: ओम शांति.
0: द सोल इज ऑलवेज क्रिएटिंग थॉट्स, वेदर अ सोल लीव्स द बॉडी और a soul is in the womb of the mother, or if a person is in coma, the soul still creates thoughts and also receives our thoughts but cannot express. When a soul leaves the body, the family left behind should create thoughts of love, not pain. Thoughts such as, we cannot live without you, how could you leave us? These thoughts will only cause pain to that soul. When a soul is in the womb, create thoughts of love and happiness. Thoughts such as, will it be a boy or a girl? Do we have the resources to look after the baby? These thoughts of anxiety are not welcoming energy. The information we take in is the most powerful influence on the thoughts we create. Early morning newspaper has a deep impact. Begin the day with 15 minutes of powerful, positive information.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: के मत अब कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन।
1: अच्छा,
0: इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम चलाओ मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल नोन मिर्ची हल्दी और धनिया, कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे पैसे पर रच काव्य भूख पर गीत बनाओ, पैसे अरे पैसे पर रच काव्य भूख पर गीत बनाओ, गेहूं पर हो गजल धान के शेर सुनाओ। नोन मिर्च पर चौपाई चावल पर दोहे, सुकवि कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली। कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झन झन करती कहो रुबाई पैसे वाली।
1: अच्छा,
0: शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है। शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है।
1: अच्छा,
0: मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूँ मत किससे सर फोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो।

0: रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी। अहो ऐकलत का हो आमचा रेडियो पुणेरी हो आमचा रेडियो पुणेरी।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम और मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हाँ, सकारात्मक विचारों के साथ मैं आपके साथ हूँ। जी हाँ, एक सुविचार में ये लिखा है, सकारात्मक सुविचार में समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं। जी हाँ, जो खुशकिस्मत होते हैं उन्हें ही ये दोनों चीजें प्राप्त होती, क्योंकि अक्सर ये देखा गया समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। सोचिए एक बार इस पर, चांदनी रातों में ये खुशनुमा मोड़ आया है, आपका अपना हम सफर सनी आपको ख्वाबों के सफर में लाया है। नमस्ते दोस्तों, मैं सनी आ गया हूँ आपको कराने एक रोमांचक सफर जिसका नाम है ख्वाबों का सफर, जिसमें हम और आप मिलकर करते हैं फिल्मी दुनिया की वो बातें जो हम सब से बहुत दूर है। इसी के साथ हमारे आपके इस सफर को यादगार बनाते हुए करते हैं ये मीठी शुरुआत।

चांदनी में हम तुम मिले तो। ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने अभी सुना, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, 1960s का ये बहुत ही पॉपुलर गाना जो अभी भी आपके दिल को लुभाती है। वीरानों को करके गुलजार, हम चले तारों के पार, ख्वाबों के सफर में जब मिल जाए आप जैसा यार। जी हाँ, कहते हैं ना, अच्छी जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। है ना कमाल की बात, ये सकारात्मक ऊर्जा की बातें हैं। इसे थोड़ा समझने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन समझ आते ही आपके जीवन में बदलाव शुरू। जी हाँ दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूँ आपको रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर, जहाँ आप अभी सुन रहे थे 1956 की फिल्म चोरी चोरी का ये प्यारा सा गीत, जो अभिनेता राजकुमार और अभिनेत्री नरगिस पे पिक्चराइज किया गया था। दोस्तों उन दिनों ये जो

टॉप मोस्ट जोड़ियों में से एक थी। उन दो दिलों के बीच की दास्तां हमारा दिल कभी समझ ही नहीं सका, तभी ये दिल गुनगुनाता है।

रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम में अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में दिल अपना और प्रीत पराई इस एल्बम का ये गीत जो 1960s में रिलीज हुई थी। मैं हूं आपका हम सफर सनी आपके साथ एक प्यारे से सफर में जिसका नाम है खाबो खास सफर। कहते हैं रहमान दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ फिर जाए। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर प्रेम का धागा जो है एक बार टूट जाए तो फिर से वापस जुड़ना तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठें रह जाती हैं। कबीर जी की ये बातें जो है आज भी उतनी ही सटीक हमारे जीवन से जुड़ता है। कितनी अच्छी बातें उन्होंने लिखी हैं जो पूरे ही जीवन काल में हमारे जीवन को बदलने में, हमारे जीवन को समझने में आसान करते हैं उनकी बातें। दोस्तों अब बात करें 60s की, तो उस समय उन दिनों के संगीत आज भी हमारे दिल को छू लेता है और कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी को भी उनसे जुड़ा हुआ पाते हैं। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है संगीत वो जरिया है जो इस थकान भरी लाइफ में भी सुकून भर देता है, उमंग भर देता है। एहसान है उसका जिसने ये संगीत बनाया, तो क्यों ना हम भी आज उसका शुक्रिया अदा करें।

पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर मैं हूँ आपका हम सफर सनी। कहते हैं मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती अरदस और इन्हीं से अजान होती है। ये समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की पहचान होती है, इसीलिए कहते हैं मीठा बोलिए, मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल। तो ये बहुत ही अच्छी एक आदत आप बना सकते हैं मीठा बोलने का, जिससे आपके जीवन में एक नई पहचान आपको मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये गीत ही तो एक हमारे अकेलेपन का साथी होता है जो हमारे सुख और दुख दोनों को अपने साथ बांटता है, क्योंकि हम जब खुश होते हैं तो झूम कर गा कर अपनी खुशी का इजहार करते हैं, और जब दिल रोता है तब संगीत ही हमारे गमों को दूर भी करता है। मानो जैसे सही ही कहा है कि बिन संगीत दिन का हर नजारा अधूरा सा है, तो चलिए हम भी एक अफसाना अपनी मोहब्बत के नाम लिखें।

1947 की मूवी जिसका नाम था मर्द, जी हाँ, जिसका रीमेक अभी बना है बहुत बार, लेकिन ये 1947 में अभी आपने जो गाना सुना वो उमा देवी की आवाज में ये प्यारा सा गीत सुना। आप सुन रहे हैं मेरे यानी सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। दोस्तों, आपको पता है अभी जो गीत आप सबने सुना नौशाद अली द्वारा डायरेक्ट किया गया था और इसी गीत से उन्हें अपने जीवन में अपार सफलता भी मिली। सही ही कहा गया है, हर सफल इंसान की सफलता के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर जुड़ी होती है। आप कितने भी परेशान क्यों न हो, परंतु किसी को परेशान देखकर उसे ये जरूर कहें कि चिंता की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। जी हाँ, एक बार ऐसे करके तो देखिए, आपकी भी चिंता और उसकी भी चिंता दूर हो जाएगी, एक नए रास्ते पे आप लोग चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस तरह से मैं आपको नए नए गाने सुनाता हूँ और वो भी ओल्ड इज गोल्ड मेलोडीज में से 60s और 70s का खूबसूरत गाने चुन चुन कर आपको सुनाता हूँ, जो आपके दिल को हिला देता है और आपके मन को एक खुशी प्रदान करता है।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आपका हम सफर सनी। कहते हैं जिन्होंने सफलताएं पाई हैं उन्होंने सपने कम देखे हैं और प्रयास अधिक किए हैं। तो इसीलिए सपने देखना बुरी बात नहीं, एक बार देखिए और उसे पूरा करने में जीवन लगा दीजिए। ये पॉजिटिव ऊर्जा की बात है। अगर आप सपने ही देखते रहेंगे रोज लेकिन करेंगे नहीं तो सपने पूरे कब होंगे, है ना, ये भी बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं आपके सपनों में एक नई जान भरने के लिए एक और खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

इसी के साथ मैं आपका हम सफर लेता हूँ इजाजत, इसी वादे के साथ फिर मिलेंगे एक खूबसूरत सफर में, ख्वाबों का सफर में। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये मेरा गीत बहुत पसंद था। मैं आज उनकी याद में ये गीत आपको सुनाती हूँ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

बहा दैया, दाय उठाय लियो गिर नख पर बंस बजावत देन चरैया, जगे मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोरदा।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ आई एम सॉरी।
3: नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
4: नमस्ते।
3: जय हिंद ओ पिताजी।
4: जय हिंद।
3: नमस्ते नमस्ते है सबको।
5: नमस्ते बाबू।
3: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: फुलमल है।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। My energy is for a purpose of healing thousands of people. And जब हम उस intention से अपनी energy को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, discipline करेंगे, disciplinary action भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। It's only a lifestyle change. These are lifestyle changes. Energy life है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। अभी सुनते हैं बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम।

0: गुड मॉर्निंग भोना।
1: गुड मॉर्निंग भैया।
0: ये मेरे गालों पे रंग किसने लगाया सुबह सुबह?
1: मैंने भैया।
0: तुमने? क्यों?
1: होली पे एग्जाम्स थे ना, इसलिए मैंने आपके साथ होली नहीं खेली, इसलिए आप खेल रही हूँ।
0: ओ, तो आज तुमने होली की कमी पूरी कर दी।
1: हाँ।
2: अरे बच्चों, क्या हो रहा है ये?
0: भोना मेरे साथ होली खेल रही है दीदी।
2: लगता है तुम लोग को होली का जो त्योहार है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्यों?
1: हाँ दीदी।
2: अच्छा, होली फेवरेट फेस्टिवल किसका है यहाँ पे?
3: मेरा दीदी।
2: सैंडी का? अच्छा, तुम्हें होली बहुत पसंद है?
3: बहुत।
2: होली क्यों बहुत पसंद है?
3: कि मजा आता है होली, सबके साथ खेलते हैं ना, रंग लगाना, फिर अलग अलग कलर्स, सात रंग, अच्छा लगता है बहुत।
2: होली खेलना बहुत अच्छा लगता है।
3: हाँ।
2: अच्छा मुझे ये बताओ, अब तक की जितनी भी होली तुमने खेली है, तुम्हारी सबसे फेवरेट होली कौन सी थी?
3: सबसे फेवरेट होली 2 साल पहले।
2: 2 साल पहले? और उसमें ऐसा क्या स्पेशल हुआ?
3: मम्मी पापा मैं भैया सब साथ में खेले थे, और ज्यादातर मैंने होली पापा के साथ खेली थी।
2: मतलब पापा के खूब रंग लगाया था?
3: पापा ने मुझे उठा के ना टब में डाल दिया था।
2: अच्छा,
0: पानी के टब में या रंग वाले टब में?
3: पहले पानी वाले टब में डाला, फिर रंग डाल दिया ऊपर से।
2: मतलब सैंडी का पूरा कलर चेंज हो गया। होली की स्पेशलिटी ये होती है। क्या होती है होली की स्पेशलिटी?
3: अलग अलग रंग।
2: बिल्कुल, रंग का ही तो त्योहार है होली। तो जब तक रंग बिरंगे ना हो तब तक मजा कैसे आएगा?
0: इस दिन तो दुश्मन भी इतने प्यार से होली खेलते, इतने प्यार से रंग लगाते कि ऐसा लगता है कि वो भी अपने ही
2: है। हाँ, बात तो सही है, कहते हैं कि इस दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं।
3: हाँ दीदी।
2: तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंट याद है आपको होली का, जो आपके दोस्तों के साथ आपने होली खेली हो, या कुछ ऐसा हुआ हो जो आप हमें बताना चाहें?
3: फिर हम लोगों थोड़ा केफ्री केफ्री में आ गए, फिर हम लोगों ने फोटो खींची, फिर इसको अभी भी अपलोड करा।
0: दीदी आपको पता मुझे होली बिल्कुल पसंद नहीं है।
2: होली बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हें पंकज?
0: हाँ दीदी।
2: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि लोग होली को होली के तरीके से नहीं खेलते।
3: हाँ।
2: अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है किस तरीके से होली खेलनी चाहिए?
0: होली खेलनी चाहिए मतलब होली रंगों का त्योहार है, और इसमें जितना रंग लगावे उतना अच्छा, लेकिन इस त्योहार का लोग अलग ही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कोई कीचड़ में किसी को पटक देता है, तो कोई कपड़े फाड़ देता है, और एक दूसरे को नाराज कर लेते हैं ऐसे त्योहार पे।
2: बात तो सही है, होली हमेशा हमें लोगों को खुश करने के लिए खेलनी चाहिए, और अगर किसी को परेशानी हो तो हमें वो चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, है ना? और किसी को जबरदस्ती रंग लगाना, कीचड़ में डालना, परेशान करना, ये सब तो हमें ना करना चाहिए और ना होने देना चाहिए।
0: इसलिए मुझे सिर्फ होली देखना ही अच्छा लगता है, लेकिन खेलने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं होती।
2: तो आकाश, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है?
4: दीदी मेरा फेवरेट फेस्टिवल है रक्षाबंधन।
2: अच्छा, और रक्षाबंधन क्यों?
4: क्योंकि दीदी रक्षाबंधन में ये होता है कि जब कोई सिस्टर मुझे राखी बांधती है ना, तो राखी बांधने के साथ साथ वो इतने सारे स्वीट्स मेरे मुंह में ठूस देती है कि खाते खाते मेरे को बहुत मजा आता है, और वो इतने टेस्टी होते हैं ना, मन करता है पूरा प्लेट ही में चटकर।
2: और आपकी सिस्टर्स, आपको कितनी सिस्टर्स राखी बांधती है?
4: ऐसे तो मेरी कजिन्स में 21 सिस्टर है, लेकिन राखियां मेरे पास सिर्फ 8 आती है। मुझे रक्षाबंधन इसीलिए पसंद है क्योंकि मेरी कोई सगी बहन नहीं है, और जब भी कोई मेरी कजिन सिस्टर मुझे राखी बांधती है ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरी भी कोई बहन होती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे को भी एक तो बहन दो।
2: ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही, बहनें इतनी प्यारी होती है ना।
3: हाँ दीदी।
0: हाँ, लेकिन कजन सिस्टर भी तो अपनी अच्छी बहन होती है।
3: हाँ।
2: ये बात पंकज ने बिल्कुल सही कही, आपकी बहन नहीं है ऐसा दोबारा नहीं सोचना, क्योंकि वो सभी आपकी बहन है ना। तो रक्षाबंधन पे वो आपसे मिलने आती है?
0: नहीं, वो मेरे लिए राखी भेज देते हैं।

0: तो रक्षाबंधन पे तो बहन की याद आती होगी।
1: बहुत।
0: और भुवना, आपको रक्षाबंधन अच्छा लगता है?
2: हाँ।
0: क्यों?
2: मैं भी मेरे भाई लोग को राखी बेचती हूँ।
0: आप भी राखी बेचते हो अपने भाई लोगों को? तो आपको रक्षाबंधन में और सबसे अच्छी चीज क्या लगती है बताओ?
2: मुझे सबसे अच्छी चीज कुछ नहीं लगती है, लेकिन बुरा लगता है एक भाई नहीं है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ लेकिन स्कूल हो जाता है।
3: हम है ना भुवना, हमें कैसे भूल गई तुम?
0: हाँ मतलब
4: हमारा हाथ सदैव आगे है।
0: मतलब अब कुछ और राखियाँ बढ़ने वाली हैं जो भुवना को भेजनी होंगी, है ना? बच्चों, भाई बहन का रिश्ता हमारे इमोशन से होता है, तो अगर मेरी सगी बहन या सगा भाई नहीं है ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए।
1: ओके दीदी।
0: कोई भी हमारे आसपास है जिसे हम बहन या भाई मानते हैं, कजिन हो या ना हो, तो भी हम रक्षाबंधन मना सकते हैं।
1: हाँ दीदी,
0: है ना?
1: हाँ
4: दीदी।
0: क्या आप लोग मुझे ये बताओ, कभी अपने भाई बहन या उसको लेटर्स लिखते हो कि नहीं?
2: हाँ दीदी, मैं लिखती
0: हूँ। लिखते हो? और पंकज और सैंडी?
1: मैंने एक बार लिखा था।
3: और दीदी, मैंने कभी नहीं लिखा।
0: और आकाश, आजकल ईमेल और एसएमएस का जो जमाना है, लेकिन लेटर्स लिखने का भी अपना अलग मजा है।
1: मैंने ग्रीटिंग कार्ड लिखा था।
0: ग्रीटिंग कार्ड? जब रक्षाबंधन होता है तो अपने भाई बहन को हम लेटर्स या फिर ग्रीटिंग कार्ड लिख के भी भेज सकते हैं, उन्हें हमारी प्रेजेंस फील हो जाएगी, है ना?
1: हाँ दीदी।
0: तो अगली बार से कौन कौन लेटर्स भेजेगा?
1: मैं।
0: बस सैंडी?
2: मैं भी।
0: और आकाश?
4: मेरे लिए तो पहले से दीदियाँ राखी में चिट्ठी भर के भेज देती हैं।
0: चिट्ठी भर के भेज देती हैं। अच्छा, यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप सब से फिर से मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, है ना, क्योंकि रोज हमारा एक त्योहार की तरह बीत सकता है अगर हम वापस उस सेलिब्रेशन के मूड में रहें और सबसे प्यार से बात करें तो रोज ही एक फेस्टिवल हो सकता है।
1: हाँ दीदी,
0: है कि नहीं। तो अभी हमने होली की बात की और रक्षाबंधन की बात की, पंकज तुम बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा फेस्टिवल कौन सा अच्छा लगता है?
2: मुझे भी भुवना की तरह दिवाली पसंद है।
0: दिवाली पसंद है, और दिवाली तुम्हें क्यों अच्छी लगती है?
2: दिवाली मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और ना ही किसी से बहस होती है। हम अपने घर पे उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी खुशी सेलिब्रेट करते।
0: अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा और नहीं होता इसलिए आपको दिवाली पसंद है।
2: हाँ दीदी।
0: और दिवाली में सबसे स्पेशल चीज क्या करते हो तुम?
2: स्पेशल चीज तो हम दिवाली को हम सबसे स्पेशल ये करते हैं कि हम अपने सारे फ्रेंड्स को मिलते हैं और उनके घर पे जाते हैं और उनके घर पे जो लक्ष्मी पूजा होती है उसकी मिठाइयाँ खाते हैं।
0: अच्छा, लक्ष्मी पूजा के बाद जो मिठाइयाँ मिलती हैं इसीलिए पसंद है।
2: हाँ दीदी।
0: और पटाखे नहीं जलाते?
2: पटाखे तो बहुत जलाते।
0: बहुत जलाते हैं?
2: हाँ।
1: फोड़ते हैं।
0: अच्छा, और फेवरेट पटाखा कौन सा है?
1: सुतली बॉम्ब।
0: अच्छा, ये तो सैंडी का फेवरेट हुआ, पंकज का फेवरेट कौन सा है?
2: लक्ष्मी बॉम्ब।
0: और भुवना, दिवाली तो तुम्हें भी बहुत पसंद है ना?
3: हाँ।
0: और तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है?
2: टिकड़ी।
3: चक्री।
0: चक्री देखना अच्छा लगता है, और सबसे मिलना भी अच्छा लगता है। दिवाली के दिन तो हम सबसे मिलते हैं।
1: हाँ दीदी।
0: और लाइट्स और दिए जलाना किसे अच्छा लगता है यहाँ?
4: मुझे
0: आकाश को।
4: हाँ,
1: क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी रंगोली बनानी आती है।
0: अरे वाह, रंगोली बनानी आती है?
1: थोड़ी थोड़ी।
0: अच्छा, क्या बनाते हो रंगोली में?
1: जैसे दिए टाइप, मतलब दीदी है ना हमारे पास में रहती है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है तो वो थोड़ा उनकी हेल्प कर देता हूँ मैं, रंग ला के देना वो सब करना सर। अरे तो थोड़ा तो आता है ना।
0: और आकाश को रंगोली बनानी आती है, दिए जलाते हैं?
4: हाँ, रंगोली बनानी आती है।
0: रंगोली बनानी आती है? कभी रंगोली बनाई है आपने? क्या बनाते हो?
4: रंगोली में एक चक्री जैसा गोल सा बनाता हूँ। हर दिवाली में अलग अलग तरह की बनाता हूँ।
0: तो लास्ट दिवाली में आपने क्या बनाया था?
4: लास्ट दिवाली में मैंने बनाया था एक बड़ा सा सर्कल बनाया था, उसके अंदर फ्लावर था, फिर फ्लावर में व्हाइट कलर से मैंने लिखा था हैप्पी दिवाली।
0: अरे वाह,
1: वाओ, नाइस।
0: ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया था।
1: अच्छा, तो मेरी तरह नहीं बनाते हो।
0: और आकाश, क्या क्या करते हो दिवाली पे?
4: दिवाली में घर में सबसे पहले जो दिए खरीद के लाता हूँ, दिए भी मैं ही चूज करता हूँ, दिए को धोता हूँ, दिए में डालने के लिए बत्ती बनाता हूँ, सबसे रात में घर पे मैं ही दिए सब जगह में लगाता हूँ, और जब सब जगह दिए लग जाते हैं तो सारे घर की लाइट ऑफ कर दो, ताकि मतलब बाहर से जाने से इतना अच्छा चमकता है ना घर, बहुत सुंदर लगता है।
0: बात तो सही है, दीयों की रोशनी से जब घर जगमगाता है तो वो दूर से बहुत ही सुंदर नजर आता है ना। और आजकल तो इलेक्ट्रिक दिए और इलेक्ट्रिकल कैंडल्स भी आ गई हैं।
1: हाँ दीदी, बहुत
0: है ना,
2: लेकिन हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए।
0: हाँ, हमें ओरिजिनल दिए और ओरिजिनल कैंडल्स यूज करने चाहिए।
1: हाँ,
4: आखिर भारत की परंपरा
1: है,
0: और हम बच्चे ही तो उसे आगे लेके जाएंगे। हाँ, और फिर ओरिजिनल में जो मजा है
1: वो लेटेस्ट में नहीं है।
0: हाँ, सही बात है,
4: ओरिजिनल में मजा आता है ना, जैसे कोई बड़ा सा बम फोड़ दिया हमने, जैसे सुतली बम फोड़ दिया, भाड़ करके आवाज आई तो दिए बुझ जाते,
1: फिर वापस जलाना उसे।
4: हाँ,
0: उसमें भी मजा आता है।
1: और ज्यादातर दिए हम ही बुझाते हैं, बम फोड़ते दिए लेके जाते हैं।
2: मैंने भी दियो के नीचे बम रख के बहुत फोड़े।
4: हाँ,
1: मैंने भी बहुत।
4: एक दिन मैंने क्या किया था, छोटी दिवाली थी तो बीच में सुतली बम रख दिया था, चारों तरफ से रेत ढक दी थी, फिर उसको जला दिया था, फट करके फूटा, सारा रेत आजू बाजू फैल गया।
0: लेकिन हमें पटाखे जलाते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।
2: हाँ दीदी, एक बार मेरा हाथ जल गया था।
0: कहाँ जल गया था?
1: मेरा
0: कैसे?
1: भी मेरा तो जो अनार होता है ना, तो वो फूटता तो है नहीं, तो मुझे लगा ये फूटता नहीं है, मैंने अनार धरा लिया जला के, फिर हाथ में लेके ऐसे कर रहा था, फिर वो फूट गया, तो थोड़ा हाथ में चोट लग गया था।
0: हाथ में चोट लग गई थी? हाँ। ये कितनी पुरानी बात है सैंडी?
1: ये पुरानी बात 3 साल पुरानी बात है।
0: तो अभी आपका हाथ फिर ठीक हो गया?
1: हाँ, ज्यादा चोट नहीं लगा था, तब से मैं तो अनार को भी जला के दूर भाग जाता हूँ।
0: हाँ, हम एक लंबे से अखबार का या किसी लंबी सी चीज का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हम उस पटाखे से दूर रहें, और कभी भी जब तक वो पूरी तरीके से बुझ ना जाए, उसको देर ना हो जाए, तब तक उसे हाथ में ना ले और ना ही उसके पास जाए।
2: हाँ दीदी, मैंने नोटिस किया कि बहुत बार ऐसा होता है कि अनार में, पता नहीं आजकल ऐसा क्यों होता है कि अनार फूट जाते हैं।
1: हाँ दीदी, आजकल ऐसे अनार अच्छे नहीं आ रहे।
4: करीब जब मैं 5 साल का था तो मेरे पापा ने करीब 2000 के पटाखे लेकर आए थे, उसके अंदर करीब 30 अनार थे। तो हमने पहला बॉक्स खोला, तो बॉक्स में से जब अनार जलाना चालू किया ना, तो अनार करीब मेरे से 2 कदम सामने था। मैं और पापा अनार को जला के देख रहे थे। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, इतनी जोर से फूटा, आंख में उसका जो चूरा होता है ना वो घुस गया था। चारों तरफ से धुंधला धुंधला कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धुआं धुआं दिखाई दे रहा। काफी चेहरे पे छींटा मारा, तब जाके आंख की रोशनी साफ हुई, तब ठीक तरह से देख पाया।
0: आजकल पटाखे भी ऐसे आ जाते हैं, और साथ ही साथ हम जब दिवाली के बाद अखबार पढ़ते हैं तो कई ऐसी दुर्घटनाएं हमें सुनने को और पढ़ने को मिलती हैं, जो कि फेस्टिवल का सारा मजा तो खत्म कर ही देती हैं, बल्कि उनसे हमें सबक भी लेना चाहिए।
1: हाँ, आजकल के पटाखे काफी खराब आ रहे हैं।
0: पटाखों को कम जलाने में हमारे पर्यावरण की भी भलाई है और हमारी भी।
1: हाँ, वायु प्रदूषण बहुत होते हैं।
0: और भुवना, आप क्या क्या करते हो दिवाली में?
3: मैं भी बहुत सारे पटाखे जलाती हूँ।
2: लेकिन तुम्हारा फेवरेट फेस्टिवल है, तो कुछ स्पेशल करती होगी तुम?
3: हाँ, मैं बहुत ज्यादा स्नेक्स को जलाती।
0: स्नेक्स?
1: हाँ, मस्त आते, जलाओ सांप निकलते।
4: हाँ, छोटे छोटे
1: छोटे छोटे आते पीछे से आते हैं।
0: अच्छा, वो छोटी छोटी जो ब्राउन कलर की गोलियाँ आती हैं, ब्लैक कलर की गोलियाँ आती हैं, वो आपको बहुत पसंद है भुवना? और क्या क्या अच्छा लगता है आपको दिवाली के बारे में?
3: हर दिवाली में सारी फैमिली हमारी घर आ जाती है, तो इतना फुल घर, इतना अच्छा लगता है। मुझे फैमिली बहुत पसंद है।
0: फैमिली बहुत पसंद है क्योंकि सब लोग मिलते हैं और साथ में इकट्ठा होते हैं, इसलिए आपको दिवाली बहुत अच्छा लगता है?
3: हाँ दीदी।
0: ओके।
3: और इस फेस्टिवल पे इतना पसंद क्योंकि मेरे पापा भी खेलते हैं।
0: आपके पापा भी आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए आपको दिवाली अच्छी लगती है?
3: हाँ दीदी। कोई भी फेस्टिवल मेरे पापा नीचे नहीं आते, लेकिन जब दिवाली होती है सारी फैमिली नीचे आती है, एंजॉय करते हैं और लास्ट पे आइसक्रीम खाते हैं।
0: मतलब अगली दिवाली पे सब लोग अपनी आइसक्रीम खा सकते हैं कि नहीं भुवना?
3: हाँ।

0: अच्छा, और कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हैं? ये तो हमारे इंडिया के बहुत ही प्रोमिनेंट और बड़े फेस्टिवल्स हैं जिनकी हमने बात की।
1: हाँ दीदी,
0: क्या कोई ऐसे छोटे छोटे फेस्टिवल्स भी हैं जो आपके घर पे या फिर आपके आसपास बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं या आपको कुछ खास पसंद है?
1: हाँ दीदी, मुझे मकर संक्रांति भी बहुत है।
2: मुझे भी बहुत
0: मकर संक्रांति।
3: हाँ दीदी, उसके अंदर अलग अलग तरीके के मंजे लेकर आते हैं और ना पतंगों को काटने में बड़ा मजा आता है।
4: मुझे भी संक्रांति बहुत पसंद है दीदी, लेकिन मुझे पतंग उड़ाना नहीं।
0: तो फिर क्या अच्छा लगता है भूमि में?
4: पतंग देखना उड़ते हुए।
0: पतंग उड़ते देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, बात तो बिल्कुल सही है। और पंकज को क्या अच्छा लगता है मकर संक्रांति में?
1: मुझे मकर संक्रांति पे उस बंदे की पतंग काटना अच्छा लगता है जो अपने आसपास के सारे पतंगों को काट कर अकेले मजे में उड़ रहा हो।
0: अच्छा, मतलब जो सबकी पतंग काट रहा हो आप उसकी पतंग को काटना चाहते हैं?
1: हाँ दीदी, और मैं काट भी देता हूँ।
2: सिखा आखिर मैंने, है ना?
0: अच्छा, मतलब सैंडी आपकी पतंग टीचर है?
2: हाँ।
1: सिर्फ यहाँ बोल रहा है, नहीं।
2: हाँ, सिखाया मैंने।
0: और आकाश को क्या अच्छा लगता है?
3: मुझे पतंग जब उड़ाते हैं ना, तो एक बार मैं और मेरे पापा ने क्या किया था, एक पिंक कलर की पतंग थी जो हमारे इलाके में करीब जितनी भी पतंगें उड़ रही थी ना, खच खच खच खच उसको काट रही थी। तो पापा ने पतंग नीचे उतारी, दो घिरियां लेकर आए, दोनों को एक पतंग में बांध दी, दो मंजे से उड़ाना चालू कर दिया। दो मंजे से उड़ा रहे थे, वो हमसे आया टक्कर लेने, ऐसे आया अड़ती चली गई। ओ वहां से चिल्ला रहा, भैया क्या किया? हमने बोला दो तो मन जैसे उड़ा रहे हैं।
2: ये तो आइडिया पहली बार सुना हम लोगों ने,
1: लेकिन ये चीटिंग है।
3: तो क्या हुआ, जीत तो जाते हैं ना।
0: नहीं, कोई भी फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए मनाया जाता है कि नहीं? जीते या हारे मजा आना चाहिए बस, है ना? अब पतंग उड़ाना तो हम सबको अच्छा लगता है, बस
4: आना चाहिए दीदी।
0: तो कौन उड़ाता है भूपना तुम्हारे घर में पतंग?
4: कोई नहीं दीदी।
0: आप बस छत पे जाके देखते हो?
4: हाँ।
0: और एंजॉय करते हो ना? बस वही तो इम्पोर्टेंट है।
1: लेकिन पतंग देखने में भी अच्छा लगता है।
4: हाँ,
0: पतंग आसमान में जब उड़ती है रंग बिरंगी तो बहुत सुंदर लगती है।
2: और पतंग उड़ाने के बाद जो भूख लगती है ना, उसके बाद खाने में और मजा आता है।
0: और फेस्टिवल्स की सबसे खास बात कि खाने को कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलता है।

0: ऐसा इंसिडेंट आप लोगों को याद है जो किसी त्योहार के दिन हुआ हो और अभी तक आपको याद है?
1: हाँ दीदी, मेरे साथ एक बार हुआ है। हमारे घर में जब भी नवरात्रि की पूजा हो रही थी ना, तो 3 साल तक क्या हुआ था कि जब भी नवरात्रि का जिस दिन 9वां दिन होता था ना, जिस दिन हमारे घर में हवन होता था, कुछ ऐसा बात हो जाता था ना कि पापा को मेरे पे गुस्सा आ जाता था और मेरे आंख टप टप आंसू। 3 सालों से ऐसा हो रहा था और पिछले साल मैंने नोटिस किया मेरे आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरा।
0: और ये चेंज कैसे आया?
1: ये चेंज आया कि पापा के सामने मैं बहुत कम आ रहा था।
0: मतलब पापा अगर डांटते हैं तो आप उनके सामने कम जाते हैं?
1: हाँ।
0: अच्छा, नहीं ठीक है बच्चों, अगर कोई चेंज लाना है तो कोई भी तरीका अपना के आप उस चेंज को ला सकते हैं।
2: दीदी, मुझे नवरात्रि भी अच्छी लगती है क्योंकि घर में खेलते हैं ना 9 दिन।
0: हाँ।
2: और मुझे खेलना भी आता है
3: और मुझे थोड़ा थोड़ा आता है और लोग मुझे देख के हंसते, इसलिए मुझे और मजा आता है।
2: और घर में मैंने थोड़ा थोड़ा मैंने सिखाया, ये तो बात तो जरूर बोलना ही मत।
0: अरे वाह, मतलब सैंडी गरबा खेलते हैं, तो फिर सैंडी को तो हम सबको गरबा सिखाना पड़ेगा।
2: ठीक है।
3: सैंडी को बस अपनी वाह वाह ही चाहिए।
2: गरबा खेलना मुझे बहुत अच्छे से आता है और मुझे ये, हमारे पास में एक फ्रेंड है वो गुजरात से बिलोंग करता है, उससे आता, उसने मुझे सिखाया।
0: हाँ, गुजरात में तो गरबा बहुत खेला जाता
2: है, फेमस है,
0: आखिर वो वहाँ की तो डांस है।
2: हाँ दीदी,
0: है ना। और उसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? सब लोग मिलके ऐसे कर सकते हैं,
2: मिलके खेलते हैं, वो मजा आता है,
0: है ना। और डांस करना और गरबा करना किसको अच्छा लगता है?
1: मुझे भी
0: सबको अच्छा लगता है।
4: हाँ दीदी।
0: भुवना, आपको गरबा आता है कि नहीं?
4: हाँ आता है।
1: लेकिन मुझे नहीं आता। मेरे को सिर्फ गरबा में एक स्टेप आता है, एम बनाना, वो भी ढंग से नहीं कर पाता। जहाँ गोल गोल घूमते वहाँ जाके बस हाथ हिला के आ जाता हूँ, बोले मैंने गरबा खेल लिया।
2: इसमें भी मजा है।
1: हाँ,
2: जब अपने को नहीं आता, नहीं कोई देखता है ना, फिर हंसता है तो मजा आता है।
1: किसी के हंसी का हम कारण बने, उसको खुशी मिलती है तो हमको भी अच्छा लगेगा।
0: ये बात तो आपने,
2: और गरबा तो मेरे घर के आगे होता है।
0: खुशी मिलनी चाहिए, डांस अच्छा हो नहीं हो, कोई देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं?
2: हमने एंजॉय किया।
0: हाँ।

0: अच्छा यहाँ पे गणेश चतुर्थी किस किस को अच्छी लगती
1: मेरी
0: है?
1: मेरी फेवरेट है,
2: मुझे भी पसंद है।
1: क्योंकि हम विसर्जन में जाते हैं ना, जो विसर्जन में डांस करते हैं सबसे मजा आता है।
0: और गणेश जी की घर में स्थापना होती है,
2: विसर्जन में डांस करने का मजा इसलिए आता है क्योंकि उसमें डांस करने का कोई तरीका नहीं होता,
1: जैसा आए वैसा करो।
0: बिल्कुल, जैसा मन करे वैसा करो।
2: हाँ दीदी।
0: और शुरुआत कैसे होती है गणेश चतुर्थी की?
1: गणेश चतुर्थी की शुरुआत तो हमारे कॉलोनी में मेरे घर के आगे रखते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है कि हमारे कॉलोनी में तो पहले की गणेश जी की मतलब आज स्थापना करनी है, तो दो दिन एक दिन पहले जाएंगे गणेश जी की मूर्ति अच्छी सेलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ से हम क्या ढोल नगाड़े की मूर्ति लेके आते हैं, ढोल नगाड़े से लेके आते हैं, फिर पंडित जी को बुलाते हैं, फिर मुहूर्त देते हैं कि हाँ किस मुहूर्त में स्थापना करनी है, फिर उस मुहूर्त में स्थापना करते, फिर हमारे कॉलोनी में से कोई भैया मतलब बैठते पूजा के लिए, फिर स्थापना करके उसके बाद से फिर शाम को प्रोग्राम रखते हैं, मतलब आरती का, गणेश जी की आरती सुबह शाम करनी पड़ती है, तो शाम को हमारे यहाँ मतलब आरती की बोली भी लगती है।
0: आरती की बोली?
1: हाँ, तो मतलब इसमें कि जो मतलब अच्छी बोली लगाता है वो मतलब शाम की आरती करता है।
2: अच्छा, मतलब गणेश जी की पहली आरती उसे मिलती
1: है? हाँ, पहली आरती उसे मिलती है, फिर ऐसे मतलब जितना दिन रखना हो मतलब उतना गणेश जी को रखते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब सब मूर्तियाँ साथ में निकलती है, तो कम से कम 250 मूर्ति साथ में निकलती है, फिर ट्रैक्टर पे मतलब जो ट्रक होता है उस गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए जाते हैं, फिर साथ में डीजे वजे होता है, फिर जाते साथ में, फिर मस्त कपड़े पहन के मतलब गणेश जी का मतलब ड्रेस लाते हैं सबका एक जैसा,
3: ब्लैक ब्लैक जीन्स और ऑरेंज कलर का,
1: हाँ मतलब जैसा अच्छा लगे, मतलब कि थोड़ा अच्छा होना चाहिए, सबका एक जैसा लाते हैं, फिर डीजे लगाते हैं, फिर साथ में यहाँ से डांस करते हुए लेके जाते हैं,
0: डांस करते हुए,
1: हाँ गुलाल फेंकते हुए और डांस करते हुए ले जाते हैं, बहुत मजा आता है,
0: खूब मजा आता होगा, फ्रेंड्स और फैमिली हर कोई होता है ना।
1: हाँ,
0: और आप लोग ये बताओ कि कोई फेस्टिवल्स की ऐसी चीज भी है जो आपको अच्छी नहीं लगती?
1: नहीं, हमें सारी फेस्टिवल अच्छे लगते।
0: तो आज हमने फेस्टिवल्स के बारे में खूब रंग बिरंगी मीठी खट्टी बहुत ढेर सारी बातें की और हमें बहुत मजा भी आया और हमें ये भी पता चला कि कैसे हम मनाते हैं और क्या क्या सावधानियां हमें इन फेस्टिवल्स के दौरान बरतनी चाहिए।
4: हाँ दीदी।
0: अगली बार हम सब फिर मिलेंगे और फिर से करेंगे कुछ ऐसे ही बातें, लेकिन उससे पहले क्योंकि फेस्टिवल्स की बात कर रहे थे तो फेस्टिवल्स पे तो खूब गाना बजाना और डांस होता है, तो हो जाए एक गाना।

0: तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं, तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: सोनेरी आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल पटारा की छेके।
3: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

नमस्कार साथियों, आज एक विशेष करियर के बारे में बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल कहानी से शुरू करूंगा। सपनों से शिखर तक, एक प्रबंध निदेशक की कहानी। जी हाँ साथियों, राजेश एक साधारण मध्य परिवार में जन्म लिया था। उनके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ पिताजी को हेल्प करते हुए घर का काम भी संभालते थे। बचपन से ही राजेश एक अलग सोच रखता था। वो केवल नौकरी नहीं बल्कि नेतृत्व करना चाहता था। कॉलेज के दिनों में वो हर समूह कार्य में आगे रहता, समस्याओं का हल ढूंढना और सभी को साथ लेकर चलता। एमबीए पूरा करने के बाद उसने एक निजी कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में काम शुरू किया। शुरुआती वेतन कम था, लेकिन सीखने की भूख बढ़ती गई। राजेश देर तक रुककर काम करता, सीनियर से सवाल पूछता और हर सफलता का रहस्य जानता था और असफल से सबक लेता। कुछ सालों में इसकी ईमानदारी, निर्णय क्षमता और टीम को प्रेरित करने की योग्यता सबकी नजर में आ गई। एक कठिन आर्थिक दौर में जब कंपनी घाटे में जा रही थी, राजेश ने नए विचार और मजबूत रणनीति से एक प्लान से कंपनी को संभाल लिया। उसका आत्मविश्वास और स्पष्ट दृष्टि बोर्ड को इतनी पसंद आ गई कि उसे प्रबंध निदेशक बना दिया गया। साथियों, आज राजेश न केवल एक सफल एमडी है, बल्कि सैकड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा भी है, जो ये सिखाता है कि सफलता पद से नहीं, सोच और संकल्प से बनती है। तो आइए साथियों, आज इसी विषय को लेकर बातें करेंगे, प्रबंध निर्देशक कैसे बन सकते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल इस कार्यक्रम। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। साथियों, आइए बात करते हैं आज एक नए विषय के बारे में। जी हाँ, आज का विषय है मैनेजिंग डायरेक्टर। जी हाँ, जीवन कौशल मैनेजिंग डायरेक्टर, करियर ऑप्शन में करियर कैसे बनाए मैनेजिंग डायरेक्टर पोजिशन पर पहुंचने के लिए। आज के कॉर्पोरेट और व्यावसायिक युग में प्रबंधन निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर MD किसी भी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। ये पद केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक विजन है, नेतृत्व, लीडरशिप, जिम्मेदारी और निर्णय क्षमता का प्रतीक है। प्रबंधन निदेशक वो व्यक्ति होता है जो कंपनी की रणनीति बनाता है, उसे लागू करता है और संगठन को दीर्घकालीन सफलता की दिशा में ले जाता है। अगर आप ऐसे करियर की कल्पना करते हैं जहां आपके निर्णय हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करे, आप संगठन की दिशा तय करें और नेतृत्व आपकी पहचान बने, तो प्रबंधन निदेशक बनना आपके लिए एक शानदार लक्ष्य हो सकता है। साथियों, आप सोच रहे होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक कौन होता है? तो पहले इस बात को समझ लेते हैं। प्रबंध निदेशक कंपनी का सबसे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में MD को कई बार CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के समान अधिकार भी दिए जाते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें, प्रबंधन निदेशक कंपनी का मुख्य संचालन करता होता है, रणनीतिक नेता होता है। वो व्यक्ति कंपनी की नीतियां बनाता है, बड़े निर्णय लेता है, लाभ, विकास और प्रतिष्ठा का उत्तरदायी होता है। तो आइए इस बात को ठीक से आज समझने की कोशिश करते हैं हम सभी लोग। और निश्चित तौर पे आपको मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टली तो नहीं बन सकते, लेकिन धीरे धीरे आप योग्यता के अनुसार इस पोजीशन को पा लेते हैं। तो कैसे पाना है वो सारी बातें अब आज इस एपिसोड में समझेंगे। आप सुनाए हैं जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

हैं। सबसे पहले प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर की भूमिका बहुआयामी होती है। कुछ मुख्य जिम्मेदारियां यहाँ पर बनती हैं। सबसे पहला आता है रणनीतिक योजना बनाना, कंपनी के विजन मिशन और गोल्स तय करना, 5 से 10 साल की दीर्घकालीन रणनीति बनाना। अब देखेंगे सरकार भी फाइव प्लान पे चलती है। वैसे ही जब एक प्रबंध निदेशक किसी कंपनी का गोल सेट करता है और रणनीति प्लान बनाता है तो 5 से 10 साल लाना एक विजन और प्लान बनता है जिसके ऊपर काम करके कंपनी या संस्थान जो है सफलता प्राप्त करती है। दूसरा है संगठन का नेतृत्व। इसमें सबसे बड़ा जो जिम्मेवारी होती है वो है संगठन को बनाए रखना। सीईओ, सीएफओ, सीओओ और अन्य सीनियर मैनेजमेंट को गाइड करना, टीम को प्रेरित करना और हमेशा मोटिवेट रखना। तीसरी बात ये आती है वित्तीय प्रबंधन, कंपनी के मुनाफे और नुकसान की जिम्मेदारी, बड़े निवेश और बजट पर निर्णय लेना होता है। फिर उसके बाद आता है बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर से संवाद, क्योंकि पैसा इन्हीं से मिलता है तो इनके साथ बातचीत करना। बोर्ड ऑफ मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, शेयर होल्डर्स का विश्वास बनाए रखना ताकि बड़ी पूंजी ले सके। पांचवी बात आती है कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी, कंपनी को कानूनों के अनुरूप चलाना होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करना होता है ताकि सुचारू रूप से जो प्लान बनाया गया है वो क्रियान्वित हो सके। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग कि आप अगर एमडी बनना चाहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक बनने के लिए कुछ विशेष योग्यता की जरूरत होती है। सबसे पहले तो पढ़ाई की बात करें तो कोई एक विशेष डिग्री अनिवार्य नहीं है, लेकिन सामान्यतः एमबीए, पीजीडीएम, बीटेक, बीई, एमबीए या सीए, सीएस, सीएफए, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, भारत और विदेश में आईआईएम, आईएसबी, एक्सएलआरआई, हार्वर्ड, वार्टन जैसे संस्था से पढ़े लोग इस पद तक पहुंचते हैं, उनके लिए ये आसान भी होता है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह की पढ़ाई करनी है आपको। और इसके बाद में बात आती है स्किल्स। साथियों प्रबंध निदेशक बनने के लिए डिग्री से ज्यादा जरूरी होता है कौशल और अनुभव। तो इसलिए शुरुआत में ये चीजें जो है आपको जितना अनुभव होगा उतना आप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है लीडरशिप स्किल्स, नेतृत्व कौशल, टीम को दिशा देना, संकट में निर्णय लेना, निर्णय क्षमता, जोखिम लेना, सही समय पर सही फैसला, संचार कौशल, कम्युनिकेशन, बोर्ड कर्मचारी और मीडिया से प्रभावी संवाद बनाए रखना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है, लोगों को समझना, संघर्ष को संभाल लेना, व्यावसायिक समझ, बिजनेस एक्यूम आपके पास मन से होना चाहिए, बुद्धि से समझ होनी चाहिए, मार्केट का ट्रेंड को पकड़ने आना चाहिए, प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करना भी आना चाहिए। साथियों ये सारी चीजें आपके दिलो दिमाग में अच्छी तरह से फिट होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं। तो आइए करियर पथ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसके रास्ते कहाँ का कैसे होकर गुजरते हैं वो थोड़ी देर में, लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत, आप सुनाए हैं जीवन कौशल, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: रूम मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। प्रबंध निदेशक के बारे में बातें कर रहे हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर बनने का रास्ता, करियर पाथ। साथियों, प्रबंध निदेशक बनने के लिए सीधा नहीं बन सकते, ये अनुभव और निरंतर प्रगति का परिणाम साबित हुआ है। तो जैसे मैं कहा कि आप पढ़ाई करो, अनुभव लो और यहाँ पहुंच जाओ, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो अनुभव और निरंतर प्रगति के पद पर चलते हुए इस चीज को अपना सकते हैं। एक सामान्य करियर पद जो है यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी से शुरू हो जाता है, असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर और फिर प्रबंध निदेशक यानी MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसमें 15, 20, 25 साल भी समय लग सकता है आपको इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए। तो ये एक प्रक्रिया है, डायरेक्टली आप MD नहीं बन सकते, आप इन चीजों से गुजर कर ही धीरे धीरे उस पोजीशन को पा सकते हैं। साथियों, आइए निजी कंपनी सरकारी क्षेत्र में MD का क्या काम होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। निजी क्षेत्र में मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, फैमिली बिजनेस हो, स्टार्टअप्स हो, ये परफॉर्मेंस सबसे अहम होता है। सरकारी क्षेत्र में PSU, ONGC, सेल, भेल, बैंक, SBI, PNB जैसे, यहाँ चयन अनुभव प्लस UPSC सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से होता है। तो ये सारी चीजें एक प्रक्रिया से होकर गुजरती हैं, डायरेक्टली कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनता। तो मैं कहूंगा कि आप ये सोच के जरूर सपना, एक ड्रीम जरूर रखिए कि आपको MD बनना है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे जो है इन चीजों को आप ग्रेजुअली एडॉप्ट करते जाए, अनुभव के साथ इसे प्राप्त करेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और उस पद तक पहुंचने में आपको आसानी भी होगी, क्योंकि सामने से आपका अनुभव बढ़ेगा तो आपको पोजीशन मिलेगा, फिर अनुभव बढ़ेगा, फिर हायर पोजीशन पे आप चले जाएंगे, ऐसे करते करते आप ऊपर तक पहुंचेंगे। तो साथियों, आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए। आप सुनाए हैं जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। चलिए बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के पोजीशन पर पहुंचते पहुंचते आपके पेमेंट या सैलरी पैकेज कितना होता है ना? वेतन और सुविधाएं, भारत में अगर आप एमडी बन जाते हैं तो 30 से 50 लाख हर वर्ष आपको पे मिलता है। बड़ी कंपनी होने से 1 से 1.5 करोड़ वर्ष का पेमेंट होता है और एमएनसी टॉप कॉर्पोरेट्स होंगे तो 10 से 15 करोड़ हर साल आप कमा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो सुविधाएं मिलती हैं वो बड़ी लग्जरियस होती हैं। सबसे पहले तो लग्जरी कार, स्टॉक ऑप्शंस और अंतरराष्ट्रीय यात्रा, बोनस और ESOPS, ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। साथियों, जिसमें जो बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल जाती है, पेमेंट पैकेज बड़ा होता है, वहां पर चुनौतियां और दबाव भी बना रहता है। प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर का जीवन आसान नहीं होता। कुछ ऐसी चुनौतियां होती हैं जहां पर अत्यधिक दबाव तनाव होता है, लंबा कार्य का समय होता है। सभी लोग 8 घंटे में छुट्टी कर लेते हैं लेकिन आपको 10 से 15 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। हर निर्णय की जिम्मेदारी आप लेते हैं, सार्वजनिक आलोचना भी आपको सुनना पड़ता है। लेकिन जो लोग चुनौतियों को अवसर मानते हैं वही सफल एमडी भी बनते हैं। साथियों, आइए प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के फायदे क्या क्या हैं। उच्च सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है, निर्णय लेने की शक्ति होती है, आर्थिक समृद्धि होती है, संगठन और समाज पर प्रभाव आता है। और इसके साथ मैं अगर कहूं कौन बन सकता है अच्छा एमडी, जो ईमानदार हो, जो दूर दृष्टि रखता हो, जो टीम के साथ चल सके, जो निरंतर सीखता रहे, वो अच्छा एमडी बन सकता है। साथियों, हमारे युवा साथियों से जरूर ये कहना चाहूंगा, कॉलेज से ही नेतृत्व के अवसर खोजे, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट करे, एमबीए या प्रोफेशनल कोर्सेस करे, सीनियर से सीखे और ध्यान रखे क्योंकि ये लंबी यात्रा है। तो युवाओं के लिए अगर ये छोटे छोटे 5 बातें जो हमने बताई है, कॉलेज से ही आप इन चीजों को शुरू कर सकते हैं और सीनियर से सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, एमडी बनना बहुत अच्छा है लेकिन बनने के लिए काफी मेहनत भी है, और एमडी बनना केवल पद नहीं बल्कि एक जिम्मेवारी और जीवन दृष्टि है। ये करियर उन लोगों के लिए है जो बड़े सपने देखते हैं, मुश्किल फैसले लेने का साहस रखते हैं और समाज व संगठन के लिए सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। अगर आप नेतृत्व, सेवा और सफलता तीनों को एक साथ जीना चाहते हैं तो प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर आपके लिए एक आदर्श करियर हो सकता है। तो साथियों, ये एक बहुत ही अच्छा एमडी के बारे में हमने बातें की, मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बन सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल गई है। फिर भी धीरे धीरे आप किसी भी ट्रेंड से कंपनी में लग जाते हैं तो कंपनी में आप अच्छा प्रदर्शन करते करते करते करते पढ़ाई के साथ आप एमडी आराम से बन सकते हैं। तो शुरुआत में आपको सिर्फ ये देखना है कि एमडी एक अच्छा पोजीशन है और ये अनुभव से प्राप्त होता है, इसको डायरेक्टली हासिल नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान में रहे। और आप आराम से अपना कार्य करते हुए आगे बढ़े, संगठन के साथ चलते रहे तो आप आसानी से एमडी बन जाएंगे। तो एक लंबा अवधि लगता है, जैसे एमबीबीएस या फिर शल्य चिकित्सा के बारे में हमने बातें की थी, सर्जन बनने के लिए 10 से 15 साल की पढ़ाई लगती है, वैसे ही यहाँ पर किसी भी कंपनी में आप एज ए असिस्टेंट करते हैं काम, तो धीरे धीरे आप 10-15 साल उसी कंपनी में टिके रहते हैं तो आप इस पोजीशन को आसानी से हासिल करते हैं। तो चलिए, आपका करियर ब्राइट हो, अच्छा हो और आप अपने करियर में सफल हो, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगी। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: सफर आरजी सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खाबों के सफर इस कार्यक्रम में, और मैं हूं आपका हम सफर सनी। आइए आज के इस सफर को और ही खूबसूरत बनाने के लिए खाबों के सफर को विभा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सनी, आपको और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको ये कलेक्शन कैसी लगती है, आप इन जो प्रीवियसली सुनाए गए गानों को कैसे एंजॉय करते हैं, आप ही खुद बताएं कि आपके क्या भाव होते हैं।
1: नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है, और पुराने गाने सुनने का जो एक मजा है, जो एक खुशी है, वो शायद नए गाने में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चल जाता है कि अरे ये भी गाना पुराना है, ये भी गाना है, इस तरह के भाव है। तो कहीं ना कहीं उसमें एक जिंदा दिली है, आज के संगीत में वो थोड़ा सा पीछे रह गया। आज भी अच्छे बनते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं। उस टाइम पे तो इतने सारे गाने जो है, एक से बढ़कर एक गाने जो है मिलते हैं, तो बनाए गए थे।
2: और टॉप ऑफ दैट उसकी शायरी बड़ी जबरदस्त शायरी होती है और वो दिल को छूती है शायरी।
1: हाँ, ये एक बहुत
2: मतलब है, हर उस शायरी में मतलब निकलता है, कहीं मोटिवेशन है, कहीं भक्ति है, तो कहीं ना कहीं हमारी डेली जिंदगी के साथ जुड़े हुए वो अल्फाज हमें इसके साथ जोड़ते हैं।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के शुरुआत में, कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को?
2: मेरा सबसे पहला जो गाना है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिल में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। ये गाने में मधुबाला है पियानो बजाते हुए।
1: अच्छा।
2: अपने महबूब से शिकायत कर रही है और अब सब कुछ लुट जाने पे भी बीते वक्त का पछतावा कर रही है। पत्थर पे हमने फूल चढ़ाए तो क्या किया, दिल में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। बहुत अच्छी शायरी है इस गाने में और बहुत, चाहे इसमें उदासी है लेकिन जिंदगी की सच्चाई में डूबा हुआ है।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी कार्यक्रम की शुरुआत में ये जो गाना है हम अभी सुना रहे हैं, प्रेम धवन साहब का लिखा, तलत महमूद का गाया हुआ, रवि साहब का खूबसूरत संगीत से सजा ये गीत अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबो के सफर में। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। एक साल 1957 में रिलीज हुई थी एक फिल्म, उस फिल्म का ये गाना था जिसमें एक अमीर लड़की की कहानी बताई गई है। अमीर लड़की अपने सेवानिवृत्त कर्नल पिता के साथ मुंबई आती है और एक पार्टी में एक नौजवान से उनकी मुलाकात हो जाती है और वहां से प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। कहते हैं, सबको ताने मारना है दुनिया की रीत, सबको ताने मारना है दुनिया की रीत, आगे बढ़ना सीख ले अपना छोड़ अतीत, अपने मन की सुन सदा करता रहे अभ्यास, अपने मन की सुन सदा करता रहे अभ्यास, हिम्मत कभी ना हारना क्योंकि कर्म दिलाए जीत, कर्म दिलाए जी। आइए अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
2: अगला गाना है मेरे पास, सब कुछ सीखा हमने ना सीखे होशियारी,
1: क्या बात,
2: सच दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। ये राज कपूर बड़े उदासी के साथ ये गाना गा रहे हैं, लेकिन उनके उदासी में भी एक अदा है। उनको अगर आप पिक्चराइज करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो चलने का तरीका, और शिकायत कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसमें एक होशियारी ना सीखने की बात के साथ साथ दुनिया के साथ शिकायत भी है और वो उसी में मस्त भी है।
1: जी जी जी।
2: टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, इसके बोल बहुत
1: बहुत सुंदर है, बहुत ही मोटिवेशनल है ये गाना और कई बार मैंने इसे सुना है। आशा करता हूँ हमारे श्रोता भी इस गाने को बहुत बार सुने होंगे। जब भी सुनते हैं तो एक नई खुशी मिलती है। ऋषिकेश मुखर्जी जो है इस फिल्म के निर्देशक रहे और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है ये अनाड़ी, जो 1959 में रिलीज हुई थी। और ये गाना जो आप याद किया है, शैलेंद्र साहब का लिखा, मुकेश जी का गाया है, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध ये खूबसूरत गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं, 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज आप सुन रहे हैं। और आज हम लोग अक्षर लेकर आए हैं आपके लिए एस। जी हाँ, बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हैं इस अल्फाबेट में, जो एक के बाद एक विभा जी हमें सुना रही हैं। तो अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
1: अगला गाना है मेरे पास, सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो, सिर्फ हमसे ही नहीं खुद से खपा लगती हो। माला सिन्हा पे फिल्माया गया ये गाना है, और हुस्न की तारीफ भी हो रही है और सवाल भी हो रहा है कि तुम सबसे जुदा लग रही हो, अपने आप से भी खफा लग रही हो। क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन है इसमें, हीरो बड़े क्लोजली माला सिन्हा को देख रहे हैं और उनकी हर एक एक अदा को बयान कर रहे हैं, जो
0: जी
1: कभी खुल के ना बरसे वो घटा लगती है। ब्यूटीफुल।
0: जी, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। बहू बेटी इस एल्बम का है, जिसमें कलाकार थे मुमताज, अशोक कुमार, माला सिन्हा, जॉय मुखर्जी और महमूद अली। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं अभी। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, साहिल लखनवी साहब का लिखा, मोहम्मद रफी का गाया, रवि साहब का संगीत से सजा, सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो, ये गीत आपने सुना। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। और ये फिल्म जो है बहू बेटी, इस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी ये बताया गया कि जहाँ समाज में बहुत सारी रूढ़वादियाँ हैं, बहुत ही अलग जो नियम बनाए गए हैं, उसके विरोध में शांता नाम की एक विधवा लड़की खड़ी हो जाती है और फिर उसके लिए काफी संघर्ष करती है। और उस बीच एक शेखर नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है और उनके पिताजी, शेखर के पिताजी यानी इस लड़की के ससुर जी, बहू को बहुत सपोर्ट करते हैं। इस फिल्म में ये दिखाया गया है। मुझे आगे बढ़ते हैं, अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
2: अगले गाने के लिए पार्टी का पूरा माहौल है और पार्टी हो रही है यहाँ। सबको मुबारक नया साल, नए साल का उत्साह है, जो नया दिन अगले दिन चढ़ने वाला है। पूरी दुआओं के साथ, पूरी मस्ती के साथ इस गाने को गाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, जाने वाले को टाटा,

0: आने वाले को आ जा, करो जिससे हंसते आने वाले साल को नमस्ते।
1: चलिए, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया। 1954 का है, 1954 में एक फिल्म आई थी सम्राट, उस फिल्म का ये गाना है। ये भी अंग्रेजी फिल्म का रीमेक है। तो चलिए इस फिल्म का गाना हम लोग सुनते हैं अभी। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर में। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना सम्राट इस एल्बम का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ। और अभी जो गीत आपने सुना आशा भोसले का गाया हुआ, हेमंत कुमार साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा हुआ था सम्राट इस एल्बम का। अब आगे बढ़ते हुए मैं विभा जी से कहना चाहूंगा कि अगला गाना कौन सा है आपके पास?
1: अगला गाना है, सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। मनोज कुमार अगेन पार्टी में ही गाना गा रहे हैं, और इस गाने के बोलों में तंज भी है, शोखी भी है, और अमीरी पे, अमीर लोगों के पैसों पे एक तंज किया जा रहा है जो धर्म और अपनी मर्यादा को छोड़ चुके हैं। तो इस गाने के बोल में है, धर्म कर्म सब मर्यादा नजर आई मुझे कहीं, गीता ज्ञान की बातें देखो आज किसी को याद नहीं।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। और ये एक फिल्म आई थी पहचान 1970 में। इस फिल्म के अंदर मनोज कुमार, बबीता, बलराज सहानी, टुनटुन, शैलेश कुमार ने काम किया था। तो वही इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: सबसे बड़ा नादान वही है

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, जीवन में यदि हो गई किसी मोड़ पर हार, बिना शर्म किए ही सहर्ष ही स्वीकार करना, कोशिश कभी ना छोड़ना, गलती करना ठीक है, यही जीत का मंत्र है, मिलती विजय उपहार में है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
1: अगला गाना मेरे पास वहीदा रहमान जी का है, जो चुलबुली अपनी हरकतें करते हुए अपनी मस्ती में है। सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। बहुत ही खुशी और उमंग भरा गाना है, और वो अपने आप से बातें कर रही हैं, अपने मन से बात कर रही हैं,
0: अच्छा,
1: नाचती लहराती हुई वेदों में रहमान गा रहे हैं। और गाने के बोलों में है, हो गए दूर अंधेरे, झूम ले ऐ मन मेरे।
0: काला बाजार, इस एल्बम का आपने ये गाना याद कराया है। शैलेंद्र साहब का लिखा, आशा भोसले का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा ये गीत है। तो आइए सीधे गीत की तरफ चलते हैं। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। कहते हैं करते रहो प्रयास, तुम लक्ष्य रखो बस एक, हृदय भरो उत्साह से, रखो इरादा नेक, जीवन में वो जीतता है रखता जो विश्वास है, किस्मत उसके सामने घुटने टेक देती है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। रीबा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
1: अगला गाना भी मेरे पास प्यार मोहब्बत का है, दो प्रेमियों का है, सदियों बीतनी अपनी कहानी। मोहब्बत में डूबे हुए दो प्रेमी नदिया किनारे हैं, तो कभी खेतों में लहराते हुए एक दूसरे के साथ बेहद खुश है, दुनिया से दूर मस्ती में है और कहते मिले हैं फिर मिलेंगे, ये है वो सफर जिसकी मंजिल नहीं।
0: ओके, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा, आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब ने गाया है इस गीत को, रवि साहब का संगीत है और फिल्म आई थी 1964 में शहनाई। जी हाँ, शहनाई का ये खूबसूरत गीत है। तो आइए इस खूबसूरत गीत का लुफ्त उठाते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि हम लोग धीरे धीरे कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जी सनी, अगला मेरे पास अगला गाना है, सफल होगी तेरी आराधना काहे को रोए। ये मोटिवेशनल सॉन्ग है। जब आप इसको पर्दे पे देखेंगे तो आपका मन दुख में भर आता है कि जैसे इसको पिक्चराइज किया गया, लेकिन जब इस गाने को सुन रहे हैं तो आप में एक उत्साह और उमंग बढ़ती है, आपको मोटिवेशन मिलती है इस गाने से। एक एक बोल आपके दिल को छूता है, तो बहे आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने। ब्यूटीफुल
2: जी, बहुत ही खूबसूरत गाना है। आनंद बख्शी साहब के कलम से लिखा हुआ ये गीत है, सचिन देव बर्मन का विशेष संगीत है और उन्होंने ही इस गीत को गाया है। ये ऐसा हुआ कि खुद ही म्यूजिक डायरेक्टर भी है और खुद ही ने इस गाने को गाया था, और इसलिए आप देखेंगे इसकी आवाज थोड़ी सी अलग है और बहुत ही अलग फील देता है और कहीं ना कहीं हम सभी को एक मोटिवेशन देता है। आपने जैसे सही कहा कि अगर बड़े ध्यान से आप सुनते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, और जब तक हम लोग तपस्या नहीं करते हैं तो तपस्या के बिना हमारी आराधना सफल नहीं होती है। तो यह एक महिला की तपस्या दिखाई गई है, जब उसका पति एक बच्चे को जन्म देकर ही मर जाता है और बाद में उस बच्चे के लिए उन्हें पूरी तरह से जो है जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है और क्या क्या सहन करना पड़ता है, ये सारी चीजें उसमें बताई गई है। इवन उस महिला को अपने बच्चे के लिए जेल भी जाना पड़ता है, एक बार नहीं दो बार जेल जाकर वो आती है, लेकिन आखिरी में उसकी जो आराधना है वो सफल हो जाती है और वो अपने बच्चे को एक पायलट के रूप में देख पाती है। और जब उसका सम्मान समारोह होता है उसमें उसकी माँ के द्वारा ही उस बच्चे को सम्मानित किया जाता है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज बताई गई इसमें, और मुझे लगता है कि हम लोग विभा जी कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं और गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छे कलेक्शन सुनाए आज के इस एपिसोड में।
1: थैंक यू सनी, मैं खुद भी बहुत एंजॉय कर रही थी और गानों को दोबारा से सुन रही थी। जैसे पहले तो सिलेक्ट करते वक्त सुनती हूँ तो बहुत अच्छे गाने, इसकी वर्डिंग एक एक लफ्ज दिल को छूता है, और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इस प्रोग्राम को, और पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोतागण भी इनको बड़े प्यार से सुन रहे होंगे और इस बातें के साथ की अगली बार भी ऐसे ही अच्छे और सिलेक्टिव गाने लेके जो हमारे श्रोताओं को अच्छे लगे फिर आएंगे। तो सबको प्यार से मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: जी विभा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपको हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर अच्छे कलेक्शन सुनाने के लिए। चलिए श्रोता मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम नमस्ते, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खुशियां बांटो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनो सुनो अरे सुनो सुनो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे, रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी घाव पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा। निस दिन देखूं जिनके सपने, खो बैठूं वो प्रीतम अपने।
0: तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना?
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतने भारी नहीं कन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचू, दासों के बाजार में बेचू। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां बिरहा की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लुटा।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इस पूरी श्रृंखला में जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, रोज की ये मुलाकात है, ऐसा लगता है कि हम और आप, हमारी जो जीवन है वो एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन बहुत से दर्शक जो नए जुड़ रहे हैं उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। जिंदगी अगर हम देखें तो कई बार बहुत सी ऐसी ऑब्स्टिकल्स लेकर आती है, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस लेकर आती है जो हमें लगता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं और हम उन्हें पार नहीं कर पाते। कई बार वो आसानी से हो जाती है, हमारा अपना मेंटल मेकअप ऐसा होता है, लेकिन कई बार वो बहुत हावी हो जाती है। तो ये जो आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी बातचीत का सिलसिला जिसमें बहुत से हम सिचुएशंस को देखेंगे, जिंदगी के उन पड़ावों को देखेंगे जहां हम कहीं रुकने लग जाते हैं या उन्हें पार करते करते हम बहुत थक जाते हैं। तो क्या कोई आसान तरीका है, क्या मेरे सोच में, मेरे थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है कि वो सिचुएशंस मुझ पर हावी ना हो? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जिस तरह से अब लोग जुड़ते गए हैं अवेकनिंग के साथ और आप भी बहुत से लोगों के साथ मिलते गए हो, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस? लोगों का
1: एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल, बिकॉज जहां जहां भी आप, जितने भी लोगों से मिलते, तो वो नए नए अब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज और कहीं ब्रह्मा कुमारीज परिवार का अब हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि परिवार वो ही होता है जहां हमारी सोच एक दूसरे के साथ मैच करती है। और इतने सारे भाई बहने, लाखों की संख्या में कहें, जो रोज हमसे मिलते रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम द्वारा, वो सोच में परिवर्तन, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन जोड़, जो आज तक परिवर्तन की बात सिर्फ सोच में थी, वो प्रैक्टिकल में आने लगे, क्योंकि परमात्मा की शक्ति भी मिलती गई। ज्ञान तो है, सभी के पास है, चाहते भी हैं परिवर्तन करना, लेकिन सिर्फ जो हिच आ रहा था वो कहा कि मुझे मालूम है लेकिन होता नहीं है। लेकिन जहां परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा, तो वो वाला भी जो स्टेप था वो क्रॉस हो गया, एंड देन लाइफ बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज यू आर एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ फीलिंग। यू नो, बाहर तो जो करना चाहते हैं वो हो जाता है, लेकिन अंदर जो फील करना चाहते हैं वो कई बार कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। लेकिन क्योंकि जिन भी भाई बहनों ने अपने ऊपर वो मेहनत की है, सिर्फ प्रोग्राम देखने से ये नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम को एक स्टडी के रूप से लिया है। एंड आई हैव मेट मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो प्रोग्राम के साथ जैसे एक नोटबुक लेकर बैठते हैं और उसको नोट्स बनाते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं और फिर तुरंत उसको नेक्स्ट डे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके अपने पर्सनल कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप उसको अप्लाई करते हो। एंड ज्ञान इतना ब्यूटीफुल है, क्योंकि जो परमात्मा ने डायरेक्ट नॉलेज दी, तो नॉलेज तो बहुत सिंप्लीफाई हो गई, लेकिन जब तक हम उसको यूज नहीं करते तो हमें उसका बेनिफिट नहीं पता चलता। तो जिन्होंने उसको यूज करना शुरू किया, तो उनको वो बेनिफिट मल्टीफोल्ड मिला है। एक है कि आप देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, नेचुरल है, परमात्मा की दी हुई बातें हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, समझ भी आ जाते हैं, लेकिन वंडर तब क्रिएट होता जब उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। सो अगेन आई वुड से टेक इट बैक टू योर लाइफ टुमारो। यू नो, नॉट दैट आप आधा घंटा टीवी देखते हैं, आप देखते देखते कहते हैं या इट्स वेरी गुड, इट सीम्स गुड, कई बातें लगती हैं नो बट इट्स नॉट पॉसिबल, कई बातें लगती हैं येस इट्स पॉसिबल, बट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल जिसको वन ट्राई इट आउट टुमारो, एंड ट्राई करने के बाद डिसाइड करें कि पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। सिर्फ सुनने से नहीं डिसाइड करें, क्योंकि जहां इतने लोग वो पॉसिबल कर पाए हैं लाखों की संख्या में, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? इट्स जस्ट दैट मेरा वो एक स्टेप बचा है, एंड दैट इज गोइंग टुमारो एंड ट्राइंग दिस आउट। जब हम कहते हैं नॉट पॉसिबल या वेरी डिफिकल्ट, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने मन को कह दिया लेट इट बी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये इनके लिए ठीक है, ये लोग जो बात कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता मेरे ऑफिस में क्या होता है, या इनको क्या पता मेरे घर में कैसे लोग हैं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उससे फिर हम अपनी ही प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं। सो व्हाटएवर वी शेयर इट्स फॉर एवरीवन, टेक इट बैक विद यू टुमारो, अपने ऑफिस में इसको लेकर जाएं, अपने घर पर लेकर जाएं, देन द मैजिक स्टार्ट्स। सो देन आई हैव बीन मीटिंग सो मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिनके लिए फिर ये मैजिक हुआ है, वो फील करते हैं, ये उनका अनुभव है कि उनकी पूरी सोच में परिवर्तन आया, क्योंकि परिवर्तन यही हुआ कि औरों को देखने की बजाय
0: खुद को
1: अपने को देख,
0: देखा
1: बस वो एक ही तो स्टेप चाहिए था सिर्फ, लेकिन वो अंडरस्टैंड जब हो गया तो अपने को देखना शुरू किया, अपने को देखना शुरू किया तो अपने पर काम करना शुरू किया, और वो रियलाइज हुआ ये तो इजी है
0: और
1: ये तो
0: सबसे बड़ी
1: पॉसिबल
0: बात वो
1: है।
0: आहा मोमेंट ये थी कि ओ अच्छा मैं अपने आप को देख सकता हूँ, यू नो,
1: यस
0: ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत आपने आज जिस बात से हमने शुरू किया है कि
1: यस
0: बहुत से लोग हैं जो प्रोग्राम देख रहे होते हैं, अच्छा जरूर लगता है, लेकिन यही बात है कि मेरे लिए नहीं है। तो ये इतने सारे लोगों का एक्सपीरियंस आपको हम यही कहना चाहेंगे, जो नए लोग जुड़े हैं, जो बहुत वक्त से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी, कि ये जो आने वाली जो श्रृंखला हमारी रहेगी जिस पर हम बातचीत करेंगे, आप ही की समस्याओं को लेने वाले हैं, आप ही की वो सिचुएशंस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हुए, या जिन अगर ज्ञान नहीं भी जान पा रहे हैं, आप नहीं जानते थे, तो इस पूरी बातचीत के दौरान आप तक वो बात जरूर पहुंचेगी। बात हम यही करते हैं शिवानी, यहीं से शुरू करते हैं कि
1: सिचुएशंस
0: चलिए समझ में आ गई थी,
1: राइट।
0: जिंदगी समझ में आई, बहुत सी बातें कि मैं जिम्मेदार हूं अपने ऊपर, लेकिन अभी भी जब हम सिचुएशंस को देख रहे होते हैं, और चैलेंजेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, आने वाला दौर चाहे हम ग्लोबली भी देखें और चाहे पर्सनल लेवल पर भी देखें, तो बहुत तेजी से बदल रहा है, हम तैयार ही नहीं होते हैं। और मतलब हमने अपनी आपको बड़े मुश्किल से एक सिचुएशन के लिए तैयार किया होता है, वो तीसरी सिचुएशन इतनी बड़ी खड़ी हो चुकी होती है कि
1: True.
0: हम फिर घबराने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो प्रिपरेशन है, क्या मेरी प्रिपरेशन उतनी है, या कैसे तैयारी करनी है?
1: We cannot deny कि challenges are getting bigger day by day. कहीं ना कहीं हमने बहुत मेहनत करके अपने अंदर शक्ति लाई होती है वो जो प्रेजेंट परिस्थिति है उसको क्रॉस करने के लिए, और अभी वो शक्ति उतनी भरी नहीं होती कि मेरे सामने एक उससे कई गुना
0: बड़ी
1: बड़ी
0: सिचुएशन आ जाए।
1: परिस्थिति खड़ी हो जाती है. लेट्स टेक अ लिटिल थिंक के व्हाट आर द सिचुएशंस वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि फोकस बहुत ज्यादा हमारा सिचुएशन पर होता है और सारा दिन माइंड में वो सिचुएशन की लिस्ट जैसे कि चलती ही जाती है. सिचुएशन जो हो चुकी है, परिस्थितियां परिस्थितियां जो वर्तमान समय मेरे जीवन में हैं, और कुछ परिस्थितियां जो मैं ऐसे ही क्रिएट करती हूँ जो मुझे लगता है हो जाएंगे,
0: हाँ होने
1: यू नो
0: वाली है,
1: ये
0: आने
1: शायद
0: वाली।
1: मेरे साथ हो ना जाए, या जैसे जॉब इनसिक्योरिटी है, तो अभी जॉब है तो जॉब इज वेरी नाइसली देयर एवरी डे, बट द थॉट, सो आई एम ऑलरेडी क्रिएटिंग द सिचुएशन इवन दो द सिचुएशन इज नॉट देयर. तो नोइंग हाउ टू फेस द सिचुएशन, लेकिन वॉट आर द सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज हमारे जीवन के दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं, एक है मेरी पर्सनल और फैमिली लाइफ, और दूसरी है मेरी वर्क लाइफ,
0: प्रोफेशनल
1: चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे एक बच्चे के लिए उसकी वो स्टूडेंट लाइफ है, इट्स दैट लाइफ. तो अगर हम अपनी वर्क लाइफ को देखें, नाउ यू आंसर, आई विल क्वेश्चन यू, अगर
0: ओके
1: हम अपनी वर्क लाइफ, कर्म उस क्षेत्र को देखें जहां हम रोज कार्य करने जाते हैं, व्हाट आर द सिचुएशंस फॉर यू?
0: द टॉप चैलेंजेस और द
1: या
0: सिचुएशंस,
1: सिचुएशंस चैलेंज, उसको चैलेंज बोले, प्रॉब्लम बोले, सिचुएशन बोले, व्हाट एवर, बिकॉज सिचुएशन तो वही है, अब आप उसको किस रूप से देखने वाले हो वो डिपेंड करता है.
0: सी अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं, मतलब लाइक यू आर आस्किंग मी,
1: नो, इन जनरल
0: हाँ
1: फॉर
0: मतलब
1: एनीबडी इन
0: जनरली,
1: वर्क
0: हाँ
1: लाइफ.
0: जो अगर एक मीडिया पर्सन के रूप में भी, तो ये कि आई एम ए फ्रीलांसर, सो रिसेशन का ये दौर जहाँ ऑलरेडी जिनकी फिक्स जॉब है
1: ट्रू.
0: उनको प्रॉब्लम आने वाली है, तो आई हैव दिस कंटिन्यूअस थिंग दैट इट्स ओके राइट नाउ, आई हैव वर्क, बट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, बिकॉज हाउ रिसेशन इज गोइंग टू हिट, रिसेशन कैसे हिट करेगा मीडिया को हम नहीं जानते
1: हमें
0: हैं
1: नहीं पता,
0: अपने
1: एंड इट्स
0: ऊपर।
1: नॉट नेसेसरी मीडिया, इट्स फॉर एवरीबडी.
0: हाँ
1: लाइक इफ यू लुक एट इट इवन ग्लोबली, शायद ही कोई ऐसा देश है अभी जो इससे हिट नहीं हुआ है, शायद ही कोई ऐसा लेवल है सोसाइटी में जो इससे हिट नहीं हुआ है, चाहे आप यू आर टॉकिंग अबाउट द टॉप लेवल ऑफ सोसाइटी और यू आर टॉकिंग एब्सोल्युटली द सिंपल लेबर, इवन द लेबर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क टूडे इज स्टक, यू नो. तो आप एक पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं जिसमें जॉब, रिसेशन, फॉर आर्थिक परिस्थिति.
0: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात बहुत से लोगों के साथ ये है कि मैंने अपना कंफर्ट जोन उसके साथ कर
1: दैट
0: लिया।
1: इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई, जॉब इनसिक्योरिटी
0: अच्छा,
1: हो
0: और
1: गई,
0: फिर मेरा जॉब जहां है वो बहुत कुछ मेरे बॉस पर डिपेंड कर रहा
1: तो माई बॉस,
0: है।
1: माई कोलीग्स, दीज आर ऑल द चैलेंजेस. देन ट्रांसफरेबल जॉब, चेंज ऑफ योर होल फील्ड, कई बार आपको एक जगह से उठाकर एकदम दूसरे क्षेत्र में डाल देते हैं. सो दीज आर चैलेंजेस एट वर्क, चैलेंजेस एट होम,
0: ओह यू आस्किंग मी
1: नो
0: बस
1: एवरीवन
0: ना बेसिकली बहुत ज्यादा सिचुएशंस, अगर घर पे देखें तो बच्चों को क्या हम सही परवरिश दे
1: दैट्स अ
0: पा रहे
1: वेरी
0: हैं,
1: बिग
0: क्योंकि
1: थिंग
0: मेजर
1: इन मेनी प्रोग्राम्स. वेर एवर आई हैव आस्क्ड पीपल व्हाट्स योर टॉप कंसर्न, कहते हैं पेरेंटिंग. ऐसे पेरेंटिंग जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हुआ करता था, आज सबसे बड़ी चिंता का विषय
0: क्वेश्चन
1: बन
0: मार्क
1: चुका
0: लगा लिया
1: है.
0: हमने ऊपर,
1: यस
0: क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, इतनी सारी बातें हो रही होती हैं, पीयर प्रेशर बच्चे के ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है. बच्चे के करियर को लेकर फाइनेंशियल जो चीजें आएंगी वो एक बहुत प्रेशर लेके रखते हैं पेरेंट्स का, आजकल का जनरल जो ये है. मेरे लिए भी अगर मुझसे पूछो तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे सामने. देन रिलेशनशिप्स, इफ यू आर अ सिंगल
1: रिलेशनशिप्स.
0: पेरेंट, इफ यू आर यू नो इवन इफ बोथ द पेरेंट्स आर देयर, कोई पेरेंट बाहर गया हुआ है विदेश में, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और वो सिंगल पेरेंटिंग में
1: डिवोर्स
0: जब
1: केस भी बहुत बढ़ गए.
0: हाँ मैक्सिमम ये चीजें जो होती जा रही हैं
1: डिवोर्स है, सेपरेशन है, डेथ है,
0: और उसका पेन.
1: तो वो तो फिर मेरा रिस्पॉन्स है. लेकिन सिचुएशन जब मेरे सामने आके खड़ी होती है, एन अनटाइमली डेथ, अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड किसी पेरेंट के लिए, या डेथ ऑफ एनी फैमिली मेंबर, एक डेथ तो एक डेथ है ही, विच कम्स एज अ वेरी बिग सेटबैक, जिसमें हमें लगता है कि ये परिस्थिति, मतलब मेजोरिटी पीपल आज कहते हैं, स्पेशली इफ इट इज डेथ ऑफ अ चाइल्ड और अ स्पाउस, अब मेरे जीवन जीने का तो कोई पर्पस ही नहीं रह गया, यू नो. सो दैट सिचुएशन इज नॉट अ सिचुएशन, बट इट्स फॉर मेनी पीपल एंड ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि हम समझते कि वहां तो एंड हुआ ही हुआ उनके लिए, लेकिन ये मेरे लिए भी दी एंड है. इसके बाद मेरे जीवन जीने का कोई पर्पस नहीं है, मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है. यू नो द वे पीपल से टू देमसेल्व्स, हाउ कैन आई बी हैप्पी, यू नो आई एम और आई एम नॉट बी हैप्पी, तो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैं खुश हो ही कैसे सकता हूँ, मुझे खुश रहने. सो सिचुएशन, सो डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप क्राइसिस, पेरेंटिंग, कई बार चेंज ऑफ सिटी, आपको आप बहुत समय से यू नो एक जगह पर सेट हैं, एक कंट्री में सेट हैं, या आप एक सिटी में सेट हैं, एंड सडनली
0: यू हैव टू गो.
1: पीपल आर नॉट एबल टू
0: और
1: टेक
0: वो
1: इट.
0: एकदम से क्या होता है, सिचुएशन आती है तब तो आप हेड ऑन फेस करते हैं, लेकिन जो उसके बाद का डिप्रेशन
1: आफ्टर
0: सीप इन
1: इफेक्ट
0: करता है, ये मेजर प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है.
1: द सिचुएशन उस टाइम नहीं है ना सिर्फ, वो एक सिचुएशन अब
0: लंबा
1: लंबा
0: हाँ
1: प्रोसेस है. तो अब अगर हम इन सारी परिस्थितियों को देखें, वर्क पे हमने देखा फाइनेंशियल, जॉब, बॉस.

0: एंड लाइक यू सेड वी आर नॉट रेडी फॉर चेंज, क्योंकि हमारा एक कम्फर्ट जोन है, तो हर परिस्थिति एक सिचुएशन एक प्रॉब्लम नहीं लेकिन एक चेंज है. यू नो द मिनट आई जस्ट लुक एट इट लाइक दैट, चेंज चाहे चेंज इन रिलेशनशिप, चेंज चाहे फॉर मी इट कुड बी कि यू हैव चेंज्ड एज अ पर्सन. मैं आपको जो जानती थी इतने इतने साल, यू नो मेनी पीपल विल से अब तो आप वैसे रहे तो चेंज चेंज, या आप मेरे साथ इतने साल थे आज सडनली आप मेरे साथ नहीं है, चेंज. मेरा एक जीवन जीने की एक शैली थी, एक लाइफस्टाइल था, सडनली मुझे वो क्रैश हो गया, चेंज. सडनली मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा, चेंज. सो एवरी स्टेप जो चीज मुझे हिट कर रही है वो है चेंज. एंड समवेयर मोस्ट ऑफ अस आर नॉट रेडी फॉर चेंज बिकॉज वी आर somehow, क्योंकि हमने अपने आप को उस दायरे के अंदर, चाहे वो मुश्किल वाला भी दायरा था, चाहे वो दर्द वाला भी दायरा था, लेकिन हम एडजस्ट कर चुके थे. यू नो हम एडजस्ट कर चुके थे और हमें उसके साथ जीने की एक आदत पड़ गई थी. इट वॉज माई हैबिट, इट वॉज हैबिचुअल, वेदर इट वॉज प्लेजेंट और नो वी डोंट नो बट इट वॉज हैबिचुअल. लेकिन जहां वो चेंज आया तो इट हैज हिट मी. अब जैसे ही चेंज आएगा, Let's look at yourself. You're standing that side.
1: लेकिन change के लिए एक और चीज, जो अगर आप change की बात करते हैं तो बहुत लोग ये कहेंगे कि change for good or change for bad. You know, like is this change for good or is this change for bad?
0: Change is change. Now, how good or bad, I will make it now.
1: Yeah, that's very important.
0: जो यहाँ से change आया, see change तो situation से आ रहा है ना. Change बाहर है, या तो किसी व्यक्ति के अंदर या आपकी position. Change बाहर से आ रहा है. Good or bad किस पे depend करता?
1: मुझ पे.
0: एट एवरी स्टेप जहां आपके सामने कुछ हिट करता है, इफ यू कैन जस्ट टेक आउट वन मिनट एंड जस्ट स्टॉप एंड सी, इस समय क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है. हमेशा कुछ एक बातें होती हैं जो मेरे कंट्रोल में है, कुछ एक चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, एनीथिंग माई कंट्रोल?
1: नहीं.
0: वॉट इज इन माई कंट्रोल? चेक. फाइनेंशियल क्राइसिस, माई कंट्रोल? जॉब चला गया आज, माई कंट्रोल? नो. तो मेजोरिटी 95% से ज्यादा परिस्थितियां जो आपको मिलने वाली हैं, जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कंफर्टेबल ही हो जाते हैं ना, उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं,
1: उसको हमें पता भी नहीं चलता कि वो चेंज हुआ है.
0: एक ट्रैफिक जैम में भी अटकना एक परिस्थिति आज, कहना आप कहते हैं इतनी मुश्किल, इतने हाईवेज बने बने, जब तक बने तब तक वी स्टिल अगेन स्टक. सो अगेन यू आर स्टक इन दैट, बट इन योर कंट्रोल? Not in your control. What is in my control in every case? Kya control mein hai aur kya control mein nahi hai?
1: Even my thought process, see, I would have said.
0: Yes.
1: Lekin wo bhi to control mein nahi hota. क्योंकि वो जब हमें टेक ओवर कर जाता है, जैसे स्पेशली अगर किसी का जॉब छूटा, आई नो somebody जिनको सडनली she was told कि आपको 6 महीने पहले उन्हें टॉप का लीडर बनाया गया, मतलब कंट्री हेड, और विद इन 6 months उन्हें बोला गया कि नहीं, यू नॉट डूइंग योर वर्क, आपको छोड़ना पड़ेगा. उसका सब कुछ उनका उस पर डिपेंड कर रहा था. वो डिप्रेशन सीप इन ऐसे करता है
0: बहन, तो एग्जैक्टली वही हुआ ना. ये सब कुछ आपका क्रैश कर गया. सपोज मेरे आसपास सब कुछ क्रैश कर गया, लेट मी लुक एट द वर्स्ट सिचुएशन दैट कैन हिट मी. एंड वो ये है कि एक पल में मेरा सब कुछ जो मैं समझती हूँ मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार भी, लेट से एक मिनट में सब कुछ खत्म हो गया. अगेन नॉट इन माई कंट्रोल, बट वॉट इज इन माई कंट्रोल इवन नाउ?
1: कि मैं उसको कैसे लेती हूँ सिचुएशन,
0: बिकॉज फाइनली. लेकिन हम क्यों नहीं उस तरफ देख पाते कि व्हाट इज इन माय कंट्रोल, क्योंकि हमारा सारा अटेंशन उन बातों के ऊपर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. आज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, सब लोग लेकिन आपस में बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं? सारा जो एनर्जी लग रही है वो किस पर है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड. प्रॉब्लम ही ऐसे, सिचुएशन ही ऐसे, टॉक अबाउट सोल्यूशन. अच्छा ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, हो गया, लेकिन हम डिप्रेशन में चले गए, कौन सा लॉस ज्यादा बड़ा?
1: हमारा.
0: ये किसने क्रिएट किया था?
1: हमने खुद.
0: ठीक है, दुनिया में जिन लोगों ने जो किया सो किया, जिसकी वजह से मेरा सारा धन चला गया, लेट्स से वर्स्ट केस कंडीशन, लेकिन ये जो लॉस किया ये किसने क्रिएट किया? तो एक लॉस तो हुआ हुआ, ठीक है, लेकिन उसके कंपेरिजन में जो ये लॉस हुआ कि आई गो इनटू डिप्रेशन, कल को इफ आई गो इन टू डिप्रेशन, सपोज इट गेट्स वर्स एंड मुझे हाइपर

0: या हाथ की प्रॉब्लम या कुछ, अब ये लॉस किसने किया? मैंने किया. अगर मैं अपने दर्द से बाहर नहीं निकल के आ पाती और मैं घर के लोगों के साथ उस बात को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन या झगड़े और वो सब करते रहूं और हम आपस में दूर हो जाएं, ये लॉस किसने क्रिएट किया? अब ये सब लॉस के सामने वो आपका फाइनेंशियल लॉस कितना बड़ा बैठता है?
1: और इनफैक्ट नो, यू नो व्हाट हैपेंस कि जब मेरे साथ कुछ ऐसा लॉस होता है तो मैं ही चाहती हूँ कि एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि मेरा गुस्सा, मेरी फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाइड है. मेरे को जो हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड टू मी.
0: फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. इफ आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग मी? एंड मे बी यू आर इन योर ओन पेन. यू सी, सो फॉर मी टू एक्सपेक्ट कि आप मुझे समझो, मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही हूँ. तो इसलिए हर एक परिस्थिति में फिर भी, येस द सिचुएशन इज वेरी बिग, क्वेश्चन इज कि अभी भी मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं सारी अपनी अटेंशन उस पर फोकस कर दू. इट्स लाइक मेरी एक चीज तो चली गई लेकिन तीन चीजें तो बची है ना. लेकिन क्योंकि मैं वो तीन चीजों का ध्यान न
1: कि वो
0: रखकर,
1: तो है ही,
0: हाँ,
1: उसको
0: फॉर
1: तो सोचा ही
0: ग्रांटेड
1: नहीं.
0: उनको लगती हूँ,
1: हाँ
0: आज मेरा पैसा चला गया लेकिन मेरी मन की स्थिति अभी भी ठीक है, मेरा तन अभी भी ठीक है, मेरा परिवार अभी भी ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया तो ये तो गया गया, साथ में कितना और नुकसान हुआ. क्यों नुकसान हुआ? सिर्फ क्योंकि आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन देयर. सिर्फ बिकॉज आई वॉज मोर, क्यों हुआ क्यों हुआ, नॉट इवन लुकिंग एट द सोल्यूशन, ओनली लुकिंग एंड चर्निंग ओवर द प्रॉब्लम. सोल्यूशन हर परिस्थिति में है. ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली आपके सामने, कोई चैलेंज ही नहीं आने वाला जिसमें सोल्यूशन नहीं है. यस, इट जस्ट डिपेंड्स मुझे कितना टाइम लग जाता है उस सोल्यूशन तक पहुंचने में. और सोल्यूशन भी कब दिखाई देगा? सोल्यूशन भी कब दिखाई देगा? जब माइंड थोड़ा सा
1: हाँ, नहीं तो
0: साइलेंट.
1: नजर, यस,
0: नहीं
1: नजर
0: तो
1: नहीं
0: मैं
1: आता.
0: अपने दर्द में कौन सा सोल्यूशन दिखाई
1: ओहो,
0: देगा? दर्द में
1: यस.
0: तो सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाई देगी. और जितना दर्द बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम इतनी भी होगी ना,
1: बहुत
0: तो वो
1: बड़ी हो
0: प्रॉब्लम
1: जाएगी.
0: बहुत बड़ी हो जाएगी. और प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती जाएगी, उतना हम सोल्यूशन से
1: दूर होते
0: दूर होते
1: जाएंगे.
0: जाएंगे. परमात्मा का जो ज्ञान हमें मिलता है राजयोग के द्वारा, उसका पूरा पर्पस ही ये है कि जैसे ही आप अटेंशन आपके कंट्रोल में जो है, एंड दैट्स ओनली वन थिंग, माई स्टेट ऑफ बींग, उस पर जैसे ही जाता है तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटा देखना शुरू करते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम से बड़े हो जाते हैं. लेकिन अगर मैं कमजोर हो जाऊं तो मेरे सामने, आफ्टर ऑल इट्स अ फाइट बिटवीन टू ना, प्रॉब्लम एंड मी, हम दोनों का आपस का संघर्ष है, ज्यादा शक्तिशाली कौन. लेकिन क्योंकि मैं इतनी कमजोर हो जाती हूँ, इतनी दर्द में चली जाती हूँ, तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं तो उसको देख के ही बैठ जाती हूँ.
1: इनफैक्ट यहां तो मुझे भी लगने लग गया कि हमें प्रॉब्लम कहना ही नहीं चाहिए. द वे यू सेड, इट्स ओनली अ
0: एब्सोल्युटली,
1: चेंज.
0: इट्स द ओनली अ चेंज, इट्स अ सिचुएशन, इट्स अ चैलेंज. उसको चैलेंज आप बोलो, बहुत बड़ी बात आ गई आपके सामने, आप उसको चैलेंज करके बोलो. प्रॉब्लम करके बोलते ही तो वो प्रॉब्लम ही एक लगने लगती है.
1: एक मुसीबत थोड़ी ना, हजारों
0: हजार,
1: मुसीबतें.
0: हमारी वोकैबुलरी, भी ऐसे आ गई है. तो चेंज आएगा ही. देर इज ओनली वन थिंग, आई हैड रेड दिस समवेयर, वेरी ब्यूटिफुल, देर इज ओनली वन थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट एंड दैट इज चेंज.
1: ठीक, यस,
0: सो
1: आई
0: इट्स सो
1: रियलाइज दिस.
0: ब्यूटिफुल. जब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि एक चीज है जो कभी रुकने वाली नहीं है और वो है परिवर्तन, अब उसको मैं संघर्ष करूं उसके साथ, इट्स नो यूज. जस्ट बिकॉज आई थॉट जैसे चल रहा था वैसे बहुत अच्छा था, ऐसे ही क्यों नहीं चलता रहता ये, व्हाई डज दिस हैव टू चेंज? तो वो मेरे बोलने से या मेरे सोचने से रुकने वाला नहीं है. बट जैसे ही चेंज सामने आएगा, नाउ व्हाट डज इट डिमांड फ्रॉम यू? क्या चाहिए आपको?
1: मैं भी तो चेंज होनी चाहिए.
0: रिस्पॉन्स. एवरी चेंज, दिस चेंज कम्स
1: एक्शन,
0: फ्रॉम यू,
1: रिस्पॉन्स.
0: रिएक्शन, राइट?
1: अच्छा, एक चीज मैंने और भी पढ़ी थी. जैसे आपने कहा कि दिस वन थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ, दैट इज चेंज. एंड उसके आगे ही था, चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड. ये
0: इट इज, दैट
1: बहुत
0: वॉज
1: बड़ा
0: द
1: क्वेश्चन मार्क है
0: आइडियल,
1: लोगों के
0: यस.
1: लिए. सो इस पर हम एक्चुअली पूरी बातचीत करना
0: क्योंकि
1: चाहेंगे.
0: चेंज, वेन विल इट बी फॉर गुड? जब उसको आप प्रॉब्लम ना देखकर आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो, कि इस, क्योंकि वही तो परमात्मा हमें रोज बताते हैं कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत बहुत अच्छा. अब इम्पोर्टेंट मेरे लिए सिर्फ ये है कि मुझे इस सेंटेंस को, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य है, किसी मनुष्य आत्मा के नहीं, तो परमात्मा अगर ये स्टेटमेंट हमें दे रहे हैं, दैट मीन्स इट्स द ट्रूथ, दैट इज द फेथ. नाउ इफ आई रिजेक्ट द स्टेटमेंट, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है कि जो भी हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा, देन इट्स ओवर फॉर मी, मैं उसको उस दृष्टिकोण से लूंगी ही नहीं. लेकिन जहां ये फेथ है कि परमात्मा ने ये कहा है, और ये सेंटेंस ऐसा है जो मुझे लगता है हर एक को पता है, यू गो एनीवेयर इट्स रिटन एवरीवेयर कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर द गुड. लेकिन इसको बिलीव कौन कर रहा,
1: कोई नहीं कर पा रहा है,
0: इसमें फेथ कितना है कि हाँ जो हो रहा है वो अच्छा. तो लेकिन परमात्मा के महावाक्य है, अगर मैं उस समय जिस समय मेरे सामने वो चैलेंज आता, मैं अगर वो महावाक्य को अपनी स्मृति में ले आऊं और उसके बेसिस पे अब रिस्पॉन्स क्रिएट करूं, तो वो सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम ना लगकर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि अब इसमें मुझे क्या करना है. ये भी अग्री, एब्सोल्युटली अग्री कि जो भी सिचुएशन आज आ रही है ये छोटी नहीं है, ये बड़ी है, कल को और बड़ी भी आ सकती है. लेकिन डज दैट मीन कि आई विल कंटिन्यू टू लिव माई लाइफ इन पेन, और इज देयर अनदर चॉइस?
1: पेन एंड फियर ऑल्सो, कंटिन्यूस डर. सिस्टर शिवानी, आज की जो बातचीत हमने की है, सिचुएशंस हमारे सामने वो हैं जो हर व्यक्ति के जीवन की हैं, और कहीं ना कहीं एक ये परिवर्तन कि ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम, ये मुसीबत, ये सरदर्द ना होकर एक चेंज, एक परिवर्तन है. आगे हम जरूर अपने आने वाली श्रृंखला में जरूर देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे है, कैसे इस चैलेंज में हमें देखना है कि ये शुभ के लिए कैसे है, क्योंकि परमात्मा का महावाक्य है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल खरा और सच्चा है. सिस्टर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: बिल्कुल, आज जहाँ शुरुआत हमने की थी, सिस्टर शिवानी ने यही हमसे रिक्वेस्ट की थी, आग्रह किया था कि हम इस जो पूरी बात हो रही है ये सिर्फ बात के लिए नहीं है, हमारे आपके जीवन का एक हिस्सा है, उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास जरूर करें. आज ही से, कल का भी क्यों इंतजार करें, आज ही से जो सिचुएशन अभी मुझे तंग कर रही है या जो सिचुएशन कल मेरे सामने आ सकती है, मेरी कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू हो सकता है मेरे बॉस के साथ जहां ये तय होना हो कि मैं किस तरफ जाऊंगा, या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी बात हो सकती है जो डिसीजन लेना हो, अगर हम उसे एक चेंज के रूप में, एक परिवर्तन के रूप में एक्सेप्ट कर ले. गुड और बैड हम बाद में देखेंगे, आने वाले एपिसोड्स जो हैं उसमें हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे कि उसमें गुडनेस क्या है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन रही हो, और उसको हमारा रिस्पांस क्या होगा, उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये बातें भी जानेंगे. लेकिन आज के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसे अपने जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट करें. इम्प्लीमेंट करके जो आप अनुभव करते हैं वो हमारे साथ शेयर करें. उसके अलावा अगर आप के पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है, आप देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पर जा सकते हैं और अपने सवालों के जवाब तलाश सकते हैं. अगर आप नजदीक के सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है कि जीवन में कोई भी परेशानी है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी मुसीबत जिसे हम अभी तक मानते आ रहे हैं, वो एक चैलेंज है, एक परिवर्तन है. इस थॉट को अपने साथ रखें, आने वाली कड़ियों में और बहुत सी बातें करेंगे. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: धक धक
1: जैसे
0: धक धक
1: चिरा परी सावन बरसे।
2: ऐतिहासिक सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
3: सावित्री जी आपके पतिदेव तो जरूर आए होंगे, उनसे मिलाएंगी नहीं?
4: आइए।
5: ये क्या करती है, क्या मैं गा नहीं सकता?
4: सुनिए इनसे मिलिए, ये है मिस्टर।
6: इनका परिचय तो सबके सामने हो चुका है, मेरा नाम सागर है और मैं इनका पति हूँ।
3: मैं इनका भक्त हूँ, इनके संगीत का।
6: ये मेरी छोटी बहन प्रेमा है।
4: नमस्ते।
6: मेरा छोटा भाई
5: किशन रघुवीर सिंह। और आपका नाम?
3: वैसे लोग मुझे मनोहर गाइड भी कहते हैं, चैंपियन भी बुलाते हैं, और कुछ के लिए मैं अंडे वाला हूँ।
6: अंडे वाला? अंडे वाला क्यों?
3: बात यह सागर साहब कि बचपन से मुझे उस मुर्गी की तलाश है जो मेरे लिए सोने के अंडे दे। मुर्गी तो नहीं मिली, हाँ अंडे वाले का खिताब जरूर मिल गया।
4: आप लोग बातें कीजिए, मैं जरूर चंपा से मिलकर आती हूँ।
6: आप बैठिए ना।
3: माफ कीजिए, मैं आपकी शादी पे नहीं आ सका।
6: हाँ साहब, आप होते तो शादी का मजा ही और होता।
3: ये बात है, तो एक काम कीजिए साहब, एक शादी और कर लीजिए। आप कुछ खानी रहे?
6: अजी साहब बहुत खाया, और ये फ्रूट क्रीम खासकर बहुत बढ़िया।
3: एक और खाइए।
6: अजी नहीं साहब।
3: अरे खाइए साहब, हमारे हाथों से खा के देखिए, मजा ही कुछ और होगा। एक मुझे दे दो, सागर को बहुत अच्छी लगी है।

0: करें।
1: सर, प्रोफेसर साहब की भविष्यवाणी सच नहीं तो सभी तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूं। ये फ्रूट क्रीम का कप और बस काम खत्म। पार्टी में किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ,

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। जिंदगी में साथ चलते चलते हम कई बार ये जान लेते हैं कि हमारे साथ वाले की या हमारे सामने वाले जो हमारे साथ है उसकी जिंदगी की क्या परेशानी है। हमारी श्रृंखला में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। आपके ढेरों खत हमारे पास आते हैं, बहुत सा ईमेल आता है और ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ आदतें ऐसी हैं हमारी जिंदगी में जो कभी लगता है कि मजबूरी बन रही हैं। उन्हीं के सॉल्यूशंस तलाशने के लिए हमने एक बार फिर बातचीत का सिलसिला शुरू किया है और आपको याद होगा कि पिछली बार हमने कुछ ऐसी आदतों के बारे में भी जाना था जिन्हें हम सिर्फ एक हैबिट मानकर जिए जा रहे थे और ये नहीं जान पाए कि कभी भी ये मजबूरी का सबब बन सकती हैं और मुश्किल खड़ी हो सकती है। आज कुछ और आगे इसी बात को बढ़ाते हैं और कुछ उन एडिक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनसे अगर हम नहीं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा अपना कोई या हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा हो जो उससे अफेक्टेड हो रहा हो। कौन सी हो सकती है ऐसी एडिक्शंस, कौन सी ऐसी आदत हो सकती है जो मुश्किल खड़ी कर सकती है, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू हैव डॉक्टर गिरीश पटेल, जाने माने साइकोथेरेपिस्ट जो कई किताबों के रचयिता भी हैं और माइंड पावर को एक बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का, आम जिंदगी में इस्तेमाल करने का तरीका समझाते हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर गिरीश पटेल। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: और हर बार की तरह हमारे साथ इस पूरी श्रृंखला के हम सफर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
2: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, आज हम मोटे तौर पर उस एडिक्शन की बात करते हैं जिसे ड्रग एडिक्शन भी कहा जाता है कि कई सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो नशे की लत कहते हैं, क्या क्या उनमें शामिल है?
1: बहुत सारी चीजें, अगर सिस्टमेटिकली उसको पूरा देखना हो तो आमतौर पर जैसे हम कहते हैं चरस, भांग, कैनाबिस इंडिका जिसे कहा गया है, तो वह एक पूरा सारा सा ग्रुप है कि भी जो कहीं साधु भी लेते हैं और ये समझते हैं कि भी उसी से हमें आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं। फिर दूसरा अगर देखिए तो हेरोइन, हेरोइन दूसरा एक ग्रुप है और एक पूरा ग्रुप है कि जो पेन किलर्स है, नहीं मॉर्फिन लेते हैं, अफीम देते थे, नहीं जब हम भी छोटे गाँव में तो देते थे ना कि बच्चा रो रहा है अभी अफीम की गोली दे दो तो बच्चा शांत हो जाएगा, फिर माँ अपना काम कर सकती है। इसी प्रकार से और एक है जैसे LSD आपने सुना होगा, और एक सारा ग्रुप है कि जो स्टिम्युलेंट्स।
0: सर शिवानी, जैसे कि डॉक्टर पटेल ने कहा कि गांव में होता था, अफीम की गोली दे दी गई, लोगों से अगर हम ये बात करते हैं तो कहेंगे कि साधु संत भी जैसे कहा कि लेते हैं, हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इनफैक्ट कई बार तो ये कहा जाता है कि भांग खाना, शिवरात्रि की जो महोत्सव मनाया जाता है उसमें भांग खाना एक परंपरा का हिस्सा है।
2: कहीं ना कहीं जो हम करना चाहते हैं उसको ये संस्कृति का हिस्सा कौन लोग देंगे, वही जो उसको करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस में ये भी है कि शायद ठीक नहीं है जो हम कह रहे हैं, तो उसको एक जस्टिफिकेशन तो देनी पड़ेगी ना कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो हमेशा हमने देखा कि हमें कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो मिल जाती है अपने बिहेवियर के लिए, तो उसमें ये जस्टिफिकेशन दे दिया कि रिलीजन ने हमें ये सिखाया या कल्चर ने ये सिखाया, बट देन रिलीजन तो हमें बहुत सारी और बातें सिखा रही है। हैव वी अडॉप्टेड एवरीथिंग? नहीं, जो चीज हमें कन्वीनियंट लग रही है या जो हमारा करने को दिल कर रहा है और वो भी हमने उसके राइट भाव को नहीं समझा है। रिलीजन में जो इंटॉक्सिकेशन की बात आएगी वो कभी फिजिकल नहीं हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी जो इंटॉक्सिकेशन सिखाएगी वो है इंटरनल, कि आप एक इतने नशे में, नशा मतलब वो फिजिकल चीजों का नशा नहीं लेकिन आंतरिक एक खुशी में, एक अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, वो इंटॉक्सिकेशन। तो वो अंदर से हम क्रिएट नहीं कर पाए तो हमने कहा फिजिकल चीजें लेकर या एडिक्शंस लेकर हम उस नशे को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी जस्ट गिविंग अ जस्टिफिकेशन। इसको कोई हम लॉजिकली एक्सेप्ट करने जैसी बात नहीं
1: है। एस्केपिज्म भी है, ये भी आपने कहीं से रियलिटी से भाग जाना चाहते हैं, और जो साधु लेते हैं वो तो सचमुच फिर व्यसन ही हो जाते इसके, भले जस्टिफिकेशन तो दे ही रहे हैं
0: लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि उसे ठप्पा मिल जाता है कि वो भी तो पी रहे हैं, तो ये तो पार्ट ऑफ हमारा कल्चर है, तो कभी कभी पी लेना चाहिए, कभी कभी इवन हुक्का जो था, ये भी कहते हैं जो स्मोक कर रहे हैं लोग, स्मोकर्स का भी है कि ये तो परंपरा का एक हिस्सा है, हुक्का पीना, हुक्का ऑफर करना, ये तो एक सभ्यता का हिस्सा आता है। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक जस्टिफाई?
1: एक तो वह भी एडिक्शन है पहली बात, दूसरी बात है कि भी धर्म में कहीं भी यह नहीं बताया गया है। हाँ, किसी भी वेदों में बताओ, उपनिषद में बताओ, जहां पर ये लिखा हो कि भी चरस गांजा लेना है, ये तो जो भी ऐसे ही एस्केप करने वाले साधुओं ने सोचा कि इससे उन्होंने फिर से हेलुसिनेशन होते थे, लगा कि जैसे कि हम कोई अति इंद्रिय आनंद में है, नहीं, हमें ध्यान में मदद करता है, वास्तव में कोई ध्यान में मदद नहीं करता है ना, उसकी एक आदत लग जाती है और फिर जो आपकी एक्चुअल क्रिएटिविटी है, आज जो हमें कुदरत ने बहुत बड़ी क्रिएटिविटी दी है जिसका 5-7% ही हम यूज करते हैं, उस क्रिएटिविटी को आप टोटली खत्म कर रहे हो।
0: कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, अगर हम इसी पर आ गए हैं कि इसके बारे में जानकारी जानना बहुत जरूरी है, तो आज के इस परिपेक्ष में सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन सा ऐसा वर्ग लगता है जो इसको इसमें पढ़ सकता है और फिर लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलता
1: है? हाँ जी हाँ, तो अगर हम स्टेटिस्टिक्स को भी देखें तो स्टेटिस्टिक्स के भी अनुसार ऑलमोस्ट 90% जो ड्रग एडिक्ट्स है वो करीब 11 साल से 26 साल की आयु वाले हैं। नहीं, ऑलमोस्ट 90%, उन्होंने कुछ बच्चे भी देखे गए, तो इसलिए यही एक मैं समझता हूँ पीरियड है कि उस समय उन्हें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक से एजुकेट करना चाहिए ताकि वह कभी भी, प्रिवेंशन इज द ओनली मेडिसिन, ड्रग्स में ट्रीटमेंट इज वेरी लिटिल, हार्डली नो, आफ्टर रिपीटेड एफर्ट्स हमें 10 या 20% ही सफलता मिलती है, तो इसलिए उनको इससे बचाना वही सबसे अच्छा इलाज है, या तो कहेंगे वही इलाज है वास्तव में।
0: बिल्कुल, जो जैसा कि आपने कहा कि जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और साथ साथ शिवानी अगर हम बात करें मेडिटेशन की, पिछली कड़ी में मुझे याद है आपने ये कहा था कि जो भी केमिकल्स इनको खाने से जनरेट होते हैं, जहां कहीं हमें उस सुख की बात करते हैं वो होता है, तो सही मात्रा में वो जो केमिकल्स हैं वो मेडिटेशन से इंड्यूस होते हैं। अभी तक भी ये कहा जा रहा था कि मेडिटेशन इज एन एस्पेक्ट जो कि 30 साल की उम्र में 40 साल की उम्र में आना चाहिए। आज अगर हमारे पास ये आंकड़े हैं कि 11 साल की उम्र का बच्चा एडिक्शन की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो क्या हम 11 साल के उस बच्चे को मेडिटेशन की तरफ नहीं ला सकते?
2: एब्सोल्युटली, और जैसे भाई साहब ने कहा कि उसकी तरफ जाने से पहले ही हमें उसे रोकना है, तो एडिक्शन की तरफ जाने का कारण भी क्या है? टेंशन, कोई डिप्रेशन, लोनलीनेस, जैसे कहा एग्जाम की टेंशन, तो अगर हम ऑलरेडी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अगर फैमिली स्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, तो बच्चा उन तरफ जाएगा ही क्यों? एटलीस्ट ऑन हिज ओन चॉइस नहीं जाएगा, फिर बाकी ध्यान यही रखना होगा कि किसी ने इनडायरेक्टली ना आपको उस चीज की आदत डाल दियो, बट ऑन योर ओन यू विल नॉट वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विद इट। अगर आप अंदर से फुलफिल्ड हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप अंदर से खुश हैं, तो आपको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना खुशी जनरेट करने के लिए। तो उसके लिए परिवार अपना स्ट्रक्चर, जो फैमिली यूनिट है, वो कितना स्ट्रांग बनाकर रखते हैं। अगर पेरेंट चाइल्ड जो रिलेशनशिप्स की भी हमने बात की, वो बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग होगी, तो बच्चे के अंदर लोनलीनेस, फियर, एंग्जाइटी ये ट्रिगर नहीं होगा, ही वुड नॉट वॉन्ट टू गो टूवर्ड समथिंग लाइक दिस। अगर बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होगी, तो अगर पियर से कुछ ट्राई करने के लिए कहा भी जाता है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करेगा।
0: तो डॉक्टर पटेल, यहाँ ये बात अभी शिवानी ने भी कही कि अगर बचपन से ही मेडिटेशन का एक एस्पेक्ट डाल दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं विल पावर और डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा ये गया है कि जो अट्रैक्शन है टूवर्ड्स, जैसे कि आपने कहा कि स्कूल और कॉलेजेस में जो आकर्षण बना रहता है और बच्चे उस तरफ आकर्षित होते हैं, ड्रग्स लेने के बाद क्या वो शरीर में जो बदलाव आते हैं, और खासकर उस उम्र की बात करें अगर हम जो टीनेज है, जहां ऑलरेडी इतने चेंजेस आ रहे हैं उनकी बॉडीज में, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस फिजिकली आल्सो इन देयर बॉडी?
1: उसका आधार होता है जो अलग अलग वर्ग हमने जिसके बारे में चर्चा की, उदाहरण के रूप में LSD है, तो उसमें एक बार तो बहुत अच्छा लगेगा कि भी मैं स्वर्ग में आ गया, ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था, लेकिन फिर जब जो उसके नर्व्स हैं, नसों को इस चीज की आदत हो जाती है, और जब तक वह नहीं मिले तो नसें इस प्रकार के मैसेजेस देगी कि सारा शरीर टूट रहा है, जैसे कि भी शरीर में जान है ही नहीं, कुछ जो और चीजें पेन किलर्स जैसे मॉर्फिन, पैथेडिन आदि, कि जिससे एक बार दर्द की महसूसता बिल्कुल खत्म हो जाती है और अच्छा लगता है, लेकिन फिर अगर वह नहीं मिलते हैं तो वह केमिकल्स की मांग दिमाग में उत्पन्न होती है, और वह केमिकल्स को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है ना, वो वायलेंट भी हो जाता है,
0: सोचने समझने की शक्ति, एक्चुअली क्षमता खत्म होने लगती है,
1: और वह नहीं मिलने के कारण एक तो वह है, परंतु जब विड्रॉल निर्माण होने लगते हैं तो वह वायलेंट भी हो सकता है, और एक नेगेटिव इफेक्ट है कि जैसे कोकेन जैसी चीज है कि वह नहीं मिले तो व्यक्ति फिर सोता ही रहता है, अनकॉन्शियस होके कोमा में भी जा सकते हैं। एक्सटेसी में भी ऐसा ही हुआ है कि जो एक बहुत ही फेमस ड्रग हुआ था कि अगर नहीं मिले तो व्यक्ति अनकॉन्शियस होकर उसकी मृत्यु भी हो सकती है।
0: डॉक्टर पटेल, ये सारी जब हम बातें सुन रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी ये बैठ के देख पाती हूँ और हमारे दर्शक जो हैं वो भी ये देख पाएंगे कि ये हम सिर्फ अखबारों में पढ़ते हैं, आज हम अपने प्रोग्राम में सुन रहे हैं या फिर फिल्मों में देखते हैं, मेरे आसपास कभी नहीं हो रहा, मेरे घर में नहीं हो सकता। मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता नहीं कि आई कैन रिलेट टू आम आदमी की आज सोच ये है कि मेरे घर में या मेरे मोहल्ले में आई डोंट थिंक कि मेरे आसपास कोई ऐसा है जो ड्रग लेता है। ये कितनी बड़ी मिथ है, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: बहुत सारे केसेस है, हो सकता है कि भी आपने कभी सुना नहीं, परंतु आपकी सोसाइटी में भी बहुत सारे केसेस है। अगर आंकड़ों को भी देखे तो बंबई और दिल्ली में करीब 3 लाख से 4 लाख सचमुच ड्रग एडिक्ट्स, जिनको कहेंगे कि मॉर्फिन, पैथेडिन, ब्राउन शुगर, इस प्रकार की जो चीजें उसको लेने लगे। और देखे जैसे कप सिरप लेते हैं, वो भी सचमुच मेजर एडिक्शन है, वो कोई छोटी बात नहीं है। तो आंकड़े बहुत बड़े। आज कई कॉलेजेस में देखा गया है कि 25-30% कप सिरप लेने लगे और उसके वो एडिक्ट हो गए।
0: लेकिन लोग ये बोलेंगे कि मैं ओकेजनल ड्रग्स लेता हूँ, पार्टी में दो जो जब होता हूँ तो एक एक ज्वाइंट ले लेता हूँ, या कभी कभार सोशली कहा जाता है, ऑफर किया जाता है, आई एम नॉट एन एडिक्ट। हाउ इजीली दैट पर्सन कैन ऑल्सो बिकम एडिक्ट।
1: अब सबसे बड़ी इसमें जो दिक्कत है कि अगर आप ओकेजनली भी ले रहे हैं और जब आपको कोई टेंशन होगा, कोई समस्या होगी, तो वही चीज याद आएगी। और जिस व्यक्ति ने कभी उसे छुआ भी नहीं है वह और कुछ सोचेगा कि भाई मैं नींद करूं या तो एक्सरसाइज करूं, म्यूजिक सुनूं, मेडिटेशन करूं, ऐसी कोई चीज पर उसका ध्यान जाएगा, वह ड्रग्स नहीं लेगा। और अगर 4-5 बार भी ले लिया तो व्यक्ति पक्का एडिक्ट हो जाता है। बहुत सारे जो ड्रग एडिक्ट्स है जिनको मैंने भी ट्रीट किया है, देखा है कि वो पहले यही बात सोचते थे कि भी मैं तो कभी कभार ले रहा हूं, मैं एडिक्ट बनने वाला नहीं हूं, परंतु जब उन्हें विड्रॉल्स होने लगे और उस विड्रॉल्स को सेटिस्फाई करने के लगे, किसी न किसी तरीके से उन्होंने ड्रग्स लिए, तब यह एहसास हुआ।
0: फिजिकली अगर हम देखें, केमिकली अगर हम अपने अंदर देखें, तो एडिक्ट होना मतलब क्या हो जाता है, क्या होता है हमारे अंदर? जब मैंने एक बार वो ड्रग ले लिया तो उसके बाद मेरे अंदर क्या ऐसा चेंज आया कि मुझे अगली बार जैसी वो सिचुएशन आई या जब भी मन करने लग गया और मैं एडिक्ट हो गई, व्हाट आर द चेंजेस व्हिच टेक प्लेस?
1: दो चीजें जब आप इसमें पूछ रहे हैं ना, एक तो ये समझने की जरूरत है कि हमारा दिमाग और उसके द्वारा जो नसें सारे शरीर में गई है उनको इसकी आदत हो जाती है, और दूसरा दिमाग में करीब 1000 से अधिक केमिकल्स है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स एक बड़ी मात्रा में निर्माण होते हैं जब व्यक्ति ड्रग्स लेता है, और अच्छी बड़ी मात्रा में निर्माण होने से उन्हें अच्छा लगता है, वो जो सारे अनुभव होते। परंतु अगर 4-5 बार ये ड्रग्स ले लिया, फिर एक दिन अगर आपको नहीं मिला तो ब्रेन व मांग को उत्पन्न करता है सारे, क्योंकि जो नर्व्स है ना सारे शरीर में, प्रत्येक कोशिका में गए, वह सभी इसको डिमांड करते हैं, और वो डिमांड करने के कारण दिक्कत निर्माण होती है, जैसे कि

0: बिल्कुल नींद नहीं आएगी, नहीं आप तो अंदर में चिड़चिड़ापन आने लगेगा, लगेगा कि भी सारी नसें टूट रही है, नहीं सारे जॉइंट्स एक्सट्रीमली पेन हो रहे हैं, डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं,
1: फिजिकल सिम्टम्स इतने
0: हाँ
1: हो जाते
0: होते
1: हैं तो
0: हैं,
1: ये
0: इट्स सो डेंजरस
1: जी सर शिवानी, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने की हम बात करते आ रहे हैं अभी
0: ना।
1: तक, कि खासकर अगर इस एस्पेक्ट को देखें कि वन इज एक्सपेरिमेंटिंग, हाउ टू एक्चुअली टेक कंट्रोल ऑफ इट, कि नहीं मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहूंगा, मैं नहीं ट्राई करना चाह नहीं करना चाहिए, ये आज के सिनारियों में, आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो पीयर प्रेशर, और उसमें एक लगता है कि एक बार ट्राई करने में हर्ज क्या है, देखने में हर्ज क्या है, करके देखने में हर्ज क्या है, कैसे वो अपने अंदर की विल पावर को जनरेट करें, और एक बार जब होने लग गया तो ये जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, जो फिजिकल हमें पेन या जो भी बातें कर रहे हैं, उनको हम स्पिरिचुअली कैसे हैंडल कर सकते हैं?
2: आई थिंक पीयर प्रेशर को सॉल्व करने के लिए सिंपल बात तो है कि वो जो हमारी सेल्फ एस्टीम है वो बहुत लो होती है, और हमारी सेल्फ एस्टीम ज्यादातर इस पर बेस्ड है. यू नो, आजकल ये ड्रग्स लेना, दिस इज ऑल्सो लाइक अ
1: यू आर
2: स्टेटस, या यू
1: समबडी,
2: आर द इन थिंग ओवर देयर इन
1: लाइक
2: द
1: यू नो
2: पार्टी,
1: हाउ टू डू इट, यस
2: या
1: दिस बिकम्स वेरी
2: यू नो, एंड
1: इम्पोर्टेंट.
2: एक पार्टी में जो उस तरह की पार्टी हो रही है जहां बहुत सारे लोग ले रहे हैं, और अगर आप नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फील करते हैं कि आप एक आउटकास्ट है, और तब आप उस प्रेशर के अंडर लेना शुरू करते हैं. तो कहीं ना कहीं अपने आप से ही ये बात करनी पड़ेगी कि अगर सब लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मैं समझता हूं कि गलत है, आई हैव टू हैव द नॉलेज कि दिस इज राइट और रॉन्ग फॉर मी. बाकी सबके लिए राइट है रॉन्ग है वी नॉट डिसाइडिंग, कि अगर लेकिन ये मेरे लिए रॉन्ग है, लेकिन अगर सब लोग कर रहे हैं, डू आई वॉन्ट टू डू इट, डू आई वॉन्ट टू डू समथिंग रॉन्ग जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या फील करते हैं, इज इट बेस्ड ऑन इफ आई डू दिस रॉन्ग थिंग फॉर देम, तब आई गेट फोर्स्ड इनटू डूइंग इट. लेकिन अगर मैं जो हूं जैसा हूं, आई एम फाइन एंड पीपल वुड अंडरस्टैंड मी फॉर व्हाट आई एम रादर देन मैं जो खाता हूं या जो पीता हूं, तो देन आई वुड नॉट नीड टू एक्सपेरिमेंट, एटलीस्ट अंडर प्रेशर. और दूसरी चीज, अगर खुद से दिल करे एक्सपेरिमेंट करने का कि सब लोग ये ले रहे हैं तो पता नहीं ये कौन सी चीज होगी, तो अगेन आई नीड टू टॉक टू माई सेल्फ कि एक तो हमारी लाइफ में ऑलरेडी कई ऐसे संस्कार हैं, कई ऐसी आदतें हैं जिन्हें हमें फिनिश करना है बिकॉज वो हमें इतनी तकलीफ दे रहे हैं. अब उस अवेयरनेस के साथ हम एक नई कॉम्प्लिकेशन क्यों क्रिएट करना चाहते हैं, हम जान पूछ कर उस रास्ते पर क्यों चले जहां पता है कि आगे
1: कुछ
2: कोई
1: नहीं है.
2: फ्यूचर नहीं, फिर वापस आने की जर्नी में इतनी ज्यादा तकलीफ होगी, तो उस राह पर चलकर भी क्यों देखें जब नॉलेज है कि वहां पॉजिटिव या हेल्थ कुछ है ही नहीं, वट एवर इट इज, इट्स अ डिसएडवांटेज, तो उस रास्ते पर हम क्यों चल के देखेंगे. आई नीड टू रियली आस्क माई सेल्फ कि गलत राह पर चलकर भी क्या देखना है जिसका रिजल्ट ही
1: ऑलरेडी
2: अच्छा
1: पता
2: नहीं.
1: ही है कि क्या
2: यस,
1: है.
2: जब इतना कुछ सुन लिया, इतना पढ़ लिया, मालूम है इसका क्या फ्यूचर है, तो वाई जम्प इन टू दैट, वाई वुड आई वॉन्ट टू डू दैट, आई नीड टू आस्क माई
0: और एक
2: सेल्फ
0: बहुत
2: दैट.
0: बड़ी बात शिवानी भी नहीं जरूरी है, मैं समझता हूँ फैमिली बॉन्डेज. आप बोल रहे थे तभी मैं ये सोचने लगा कि जब मैं छोटा था तो कहेंगे कि लोअर मिडिल क्लास वो सोसाइटी होती थी जहां हम रहते थे, और कई लोग शराब पीते थे, सिगरेट तो कॉमन थी, सिगरेट बीड़ी कॉमन थी, फिर भी मैंने कभी भी नहीं छुआ. और कैसे, तब मन तो इतना स्ट्रांग नहीं था सचमुच, मेडिटेशन भी नहीं कर रहे थे, लेकिन दो फैक्टर मेरे ध्यान में आए जब इस पर चिंतन किया. एक तो माता पिता का प्यार, है ना, मेरी माँ तो अनपढ़ थी, कभी स्कूल में गई नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो आज पैसे वाले नहीं दे सकते हैं ऐसा अच्छा से प्यार दिया, तो वह एक. और दूसरा फैमिली बॉन्डेज, मेरे से दो बड़े भाई थे तो उनके डर के कारण हमने कभी छुआ नहीं.
2: आज अगर पेरेंट्स वो चीज कर रहे हैं तो बच्चे भी एक्सपेरिमेंट करना
0: करना
2: चाहेंगे ही,
0: चाहेंगे,
2: बट अगर घर के अंदर वो सिस्टम सेट किया हुआ है एंड वो पेरेंट्स बच्चों को बताएंगे कैसे ये रॉन्ग है, अगर इफ दे आर डूइंग इट देमसेल्व्स, आप नहीं बता सकते, आप नहीं समझा
1: आप
2: सकते,
1: उतने स्ट्रांगली नहीं कह पाएंगे क्योंकि
2: आप
1: आप
2: नहीं, आपके बोल की कोई वैल्यू नहीं
1: वैल्यू नहीं
2: रहेगी ना जब
1: रहेगी.
2: हम खुद ही वो कर रहे हैं.
1: बिल्कुल
0: और यहाँ पर
1: डेफिनेटली.
0: ही जरूरत है कि भी बच्चों को क्यों हमें एजुकेट करने की आवश्यकता है. ये
1: अब
0: तो
1: तो
0: ये
1: एक और बात देखी जा रही है कि बच्चे अपने फादर फादर या मदर दोनों के स्मोकिंग को छुड़वाने में काफी एफर्ट्स कर रहे हैं. ये भी एक
0: दो
1: रिवर्स
0: बात तो,
1: प्रोसेस जो
0: हाँ
1: शुरू हुआ हुआ है, ये भी बात बहुत हो रही है. डॉक्टर पटेल, यहाँ हमने जिन ड्रग्स की बात कर रहे थे और जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं, हमने ये तो जान लिया कि ड्रग्स में इंट्रोड्यूस क्यों होते हैं, ये कारण भी जाने, हमने ये भी जाना कि विड्रॉल सिम्टम्स जो है ये क्यों, एडिक्शन मतलब क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं.

0: लॉन्ग टर्म ना भी जाए, शॉर्ट टर्म भी प्रॉब्लम जरूर आती होंगी, फिजिकल बीमारियां जो लग सकती हैं, और लॉन्ग टर्म ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इट वेयर विल इट लीड अस टू।
1: जैसे जो हमारी आम बीमारियां जिसको हम जानते हैं कि भल लोग डिप्रेशन के कारण ड्रग्स लेते हैं, लेकिन ड्रग्स अल्टीमेटली डिप्रेशन में व्यक्ति को ले जाते हैं। दूसरा है जो ड्रग्स है वह पागलपन, सिजोफ्रेनिया क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकता है, दे रियली बिकम लाइक सिजोफ्रेनिक अल्टीमेटली। और शरीर में तो वह है ही, जो शारीरिक बीमारियां हैं जैसे कि एसिडिटी, अल्सर, ब्लड प्रेशर, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स तो होंगे ही होंगे, सारी ने स्किन खत्म हो जाएगी, आंखों की बीमारियां होगी, सो दोज नो फिजिकल डिजीज आर डेफिनेटली देयर। परंतु जो बहुत बड़ी बात है ड्रग्स के लिए, जो बहुत बड़ी बात है ना कि वो सारी सिस्टम को खोखला कर देती है। और मैंने देखा है कि एटलीस्ट 25-30% तो मर जाते और वह सभी नौजवान थे, जो मेरे मैंने अपने पेशेंट्स देखे।
0: कितना टाइम लगता है, टाइम स्पैन भी हम ये सोचते हैं अभी तो बहुत दूर की बात है कि मुझे बीमारियां ठीक है मैं तो अभी ले रही हूँ ड्रग्स ले रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन व्हाटएवर विल हैपन देखा जाएगा तब, लेकिन कितना टाइम स्पैन में ये सब दिखने लगती है?
1: ऑलमोस्ट 6-7 मास में फिजिकल डिजीज तो हो गई, सारा शरीर खत्म हो जाएगा, मतलब इस एक्सट्रीम। फिजिकल डिजीज तो फिर भी मैनेजेबल है कि भी आपको ब्लड प्रेशर हुआ, आप चलो दवाइयां ले रहे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया, डायबिटीज हुआ उसे कंट्रोल किया, परंतु यहाँ पर तो आपके शरीर पर कोई एक आम व्यक्ति भी देख सकता है कि भाई यह सामान्य नहीं,
0: जर जर होता हुआ,
1: हाँ वो एबनॉर्मल है, इस प्रकार की बात, जिसे पता भी नहीं कि यह नौजवान ड्रग ले रहा है वह भी उस निर्णय पर आ जाएगा। और मैंने तो देखा कि मृत्यु 3-4 साल में ही हो जाती, मेरे कुछ पेशेंट्स में बस 3-4 साल में तो दे वर फिनिश।
0: जैसे शिवानी, जिन वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो नौजवान है या कोई बड़ा व्यक्ति भी है, एक वैल्यू सिस्टम पे खड़ा हुआ है, हम में से हर कोई एक वैल्यू सिस्टम को लेके ही अपनी जिंदगी शुरू करता है, उन वैल्यूज का क्या हो जाता है वंस वी आर यू नो किसी के और अधीन हो गए, किसी एडिक्शन के अधीन आ गए हैं, तो वो हमारा अपना स्व, जो स्व अभिमान की भी बात करें, आदर्शों की बात करें जिन पर लेकर हम जिंदगी शुरू की थी, उनका क्या हो जाता है?
2: हमारे शायद सारे कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज के हम इतने अधीन हो जाते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यू सी, आफ्टर यू बिकम अडिक्ट टू समथिंग, अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही है, आप उसके लिए झूठ भी बोल सकते हैं, आप उसके लिए चोरी भी कर सकते हैं, आप उसके लिए किसी को फिजिकली हार्म भी कर सकते हैं, अपने आप को हर मतलब कितना कुछ आप कर देते हैं जो आप नॉर्मल अवस्था में कभी ना करते, क्योंकि आप उसके बिना अब नहीं रह सकते। तो वैल्यू सिस्टम तो पूरी तरह फिनिश हो जाता, एंड सबसे इम्पोर्टेंट शायद अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वो खत्म हो गया। हाँ। वो बिल्कुल, और क्या होता है ट्राई भी करते हैं उसके बिना चलने के, चल नहीं पाते बिकॉज दे हैव गॉन फार अहेड, तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल फिनिश हो जाता है। और वो जो एक स्टेबिलिटी की स्टेज है जो नॉर्मली नॉर्मल रहती थी सारा दिन, अब वो उस केमिकल के बिना होती ही नहीं है, तो फिर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेफिनेटली फर्निश हो जाएगा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसके बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो विल पावर, जहां एक एस्पेक्ट पे विल पावर फिनिश हो गई, तो वो किसी भी और एस्पेक्ट में, अगर आपको अपना करियर परस्यू करना है या लाइफ में कोई और आए हुए चैलेंज को क्रॉस करना है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो विल पावर डायमेंशन था हमारा वो वीक हो गया है, और उसके बिना फिर हम लाइफ के किसी भी पहलू के ऊपर कैसे चल पाएंगे। तो लाइफ इटसेल्फ यू नो लूजेस इट्स एंजॉयमेंट, इट्स पर्पस इज ओवर, कहने को हम उस एक्सटेसी में चल रहे हैं, बट नॉट रियली, आफ्टर सम टाइम भी रियालिटी हिट करेगी ना। ड्रग्स लेना मतलब हम रियालिटी से दूर होने की कोशिश करते हैं, हम एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं, बट इट विल कोलैप्स आफ्टर सम टाइम एंड देन रियालिटी।
1: थोड़ा ही बोला इस एक्सट्रीम से ना, आप एंटी नेशनल एक्टिविटी में भी चले जाएंगे, है ना, जैसे आतंकवादी भी बन सकते, इवन प्रोस्टिट्यूशन, दे वर पुश्ड इनटू दिस बिकॉज ऑफ ड्रग्स, फर्स्ट एंट्री वहां पर थी, तो इसलिए सोचना चाहिए कि कितना एक्सट्रीम है, पूरा पिक्चर क्रिएट।
0: बिल्कुल, भी एक्चुअली एक मॉडल का एक एग्जांपल भी सामने आया था अभी कि क्या कहां से कहां सिर्फ ड्रग्स के कारण था। डॉक्टर पटेल, ये पूरी की पूरी जो बातचीत है ये आगे और लगातार चलती रहेगी, क्योंकि एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स तक ना सीमित करके जिंदगी के हर आयाम में दिखती है। ये जानना चाहेंगे, हमने सबसे बड़ा आस्पेक्ट लिया है ड्रग्स का, क्या मेडिकली और अगर हम देखें फिजिकली पॉसिबल है इसके सोल्यूशन, कितना भी ज्यादा गहरा एडिक्शन हो क्या इसको निकाला जा सकता है मेडिकली?
1: डेफिनेटली, भल बहुत डिफिकल्ट है परंतु इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे।

0: कि जो सचमुच पूरी तरह से बाहर आ पाए, उनमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान था। माता पिता ने कुछ चीजें छोड़ भी दी कि भल जॉब कुछ समय मैं नहीं जाऊंगा, परंतु इस पर मुझे ठीक से मेहनत करनी है। परिवार के सभी सदस्यों ने मिल करके कार्य किया, समाज भी उन्हें सहयोग दे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत कब आती है कि उन्हें लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जॉब नहीं मिलता है उन्हें। दोबारा अगर उन्हें जॉब चाहिए तो असंभव सी बात हो जाती
1: है। तो फाइनली बात यही आती है कि इट कैन बी, यू नो, इट इज पॉसिबल। स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो यहाँ तो ये बात हुई कि एक बार निकलने के बाद रिलैप्सेस के चांसेस भी नजर आते हैं। स्पिरिचुअलिटी अगर इसमें शामिल हो जाए, आध्यात्मिकता का एक पुट आ जाए, तो क्या रिलैप्सेस के चांसेस कम हो जाएंगे?
2: एब्सोल्युटली, क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी। जब आप अपने आप को पहचान लेंगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम जो बिल्कुल क्रैश हो गई थी व्हेन यू नो वेंट इनटू एडिक्शन, और जो औरों का आपके प्रति दृष्टिकोण है वो आपकी सेल्फ एस्टीम को इतना क्रैश कर देता, तो ये जब स्पिरिचुअल डायमेंशन आपके जीवन में आप इंक्लूड करते हैं तो सेल्फ एस्टीम वापस जागृत हो जाती है, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नीडेड टू यू नो टू बिगिन ऑल ओवर अगेन। और अंदर क्लैरिटी होगी तो भले जॉब अभी कोई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपना रास्ता खुद ही

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: झलकारी देवी का जन्म बुंदेलखंड के एक गांव में 22 नवंबर 1830 को हुआ था। ये वो इलाका था जहां आए दिन डाकुओं का आतंक रहता था, इसलिए आत्मरक्षा के लिए झलकारी के पिता ने उन्हें घुड़सवारी और शस्त्र संचालन में निपुण किया था, ताकि समय पड़ने पर वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। बचपन की यही शिक्षा आगे चलकर राष्ट्र के काम आई और रणभूमि में फिरंगियों से जूझने में सार्थक साबित हुई। झलकारी का विवाह महारानी लक्ष्मीबाई के तोपखाने के तोपची पूरन सिंह के साथ हुआ था। झलकारी भी महारानी लक्ष्मीबाई की महिला फौज में शामिल हो गयी। झलकारी बाई ने रानी को फौज में सामग्री की अल्पता और तोपचियों की गद्दारी के राज से अवगत कराया, साथ ही शत्रु के किसी भी क्षण भीतर आने की संभावना और भविष्य के संकट बचाव के उपाय भी सुझाए। दुश्मन के आक्रमण के वक्त झलकारी ने स्वयं रानी का वेश धारण कर मोर्चा संभालने का प्रस्ताव रखा, ताकि छद्म वेश में रानी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। झलकारी बाई जानती थी कि रानी के वेश में युद्ध करने का मतलब है मृत्यु को वरण करना, किंतु उनकी अद्वितीय स्वामी भक्ति और अटूट राष्ट्र प्रेम ने उन्हें आत्म बलिदान के लिए प्रेरित किया। योजना के अनुसार अदम्य साहसी और बलिदानी झलकारी प्राणों की परवाह किए बगैर टुकड़ी लेकर आगे बढ़ी, लेकिन दुर्भाग्य से पहचान ली गयी। झलकारी को देखकर अंग्रेज जनरल ने कहा था कि यदि भारत की 1% नारियां भी उनकी तरह हो जाएं, तो अंग्रेजों को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा। झलकारी देवी अंग्रेजी सेना से जूझती हुई उस जगह जा पहुंची जहां उनके पति पूरन सिंह अंग्रेजी सेना से मोर्चा ले रहे थे। लड़ाई के दौरान पूरन सिंह को तोप का गोला लगा और वे जीवित भस्म हो गए। झलकारी देवी पति की मृत्यु पर जरा भी विचलित नहीं हुई और बिना विलंब किए तोप का संचालन करने लगी। झलकारी देवी ने अपनी अंतिम सांस तक शत्रुओं की सेना से लोहा लिया था।
2: राम राम काका।
3: अरे आओ आओ राम रतन, कैसे हो? अरे वाह, आज तो विजया रानी भी आई है साथ में।
4: अरे अरे अरे, तू कहाँ भाग रही है?
3: अरे खेलने दो, बच्ची है, खुली जगह है, जरा दौड़ भाग करेगी और थक के बैठ जाएगी।
5: अरे भूत से तान हो गई है काका।
4: अरे का हुआ? अरे अरे देखा ना, हम मना कर रहे थे। अरे अरे फिर भागी? अरे रुक जा बेटा, रुक जा, सुनती नहीं है।
3: अरे ये तो सच्ची पूरी झलकारी हो रही है।
4: झलकारी जे नाम तो सुनो लग रहा हो कितने सरे। अरे हाँ, वे गांव के हरबोलों की कहानी में सुनो ये जनाब।
3: ठीक पहचाना राम रतन, बुंदेलखंड की तो थी झलकारी, रानी लक्ष्मीबाई की सेना में।
4: अच्छा।
3: हाँ बेटा, झलकारी उसी देवी का नाम है जिसने 1857 के संग्राम में स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया अपना।
4: वो कैसे? पूरी ही बात बताओ काका आप तो।
3: ठीक है। अरे बेटा दो चाय लगा यहाँ, और बिटिया के लिए एक ग्लास में दूध ले आ, और बिस्कुट भी।
6: काका हो, मैं देखता हूँ।
7: अरे काय को तकलीफ कर रहे काका?
3: तकलीफ? अरे दूध तो तुम्हारे यहाँ का ही है, और झलकारी की कहानी सुनना है तो छोटी झलकारी का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सैनिक थी झलकारी। झलकारी का जन्म लक्ष्मीबाई से 5 साल पहले झांसी के पास हुआ था, भोजला गांव में। सन 1830 22 नवंबर को भोजला के सदोव सिंह के घर में बधाए गाए जा रहे थे।
8: लक्ष्मी आई है नाना साहब, लक्ष्मी, हम तो बस नई पायल पहने
9: और हमारे नानी चुनरी।
8: हीरे की बुंदा नहीं चाहे। चलो चलो चलो।

0: अरे झलकारी अपने पिता की बहुत लाडली थी, पर उन दिनों डाकुओं के आक्रमण से लड़कियों वाले सारे पिता डरे रहते थे। इसलिए सदो सिंह ने निर्णय लिया,
1: हमारी झल्लो किसी के भरोसे नहीं रहेगी, बल्कि औरों की मदद करने में भी आगे रहेगी।
2: ये झल्ली बिटिया तनक आराम से, आज तुम आओ दूसरों दिन आए। अरे देख देख देख देख संभल के, अरे अरे अरे अरे अरे हाँ, अरे गिरते हो तो हाथ पैर टूट जे हैं।
3: बाऊजी, पता है हम ना जंगल में बहुत अच्छी जगह देख के आए हैं निशाना साधने की। चलिए ना अभी सिखाइए, चलिए।
1: पर बेटा,
3: चलिए ना
1: बेटी कल।
3: नहीं नहीं नहीं, कल वाल नहीं, आज ही शुरू करना है बाऊजी।
1: अरे सदो भैया, जे नहीं रुकने वाली, चलो हम भी चलते हैं साथ में, देखें तो हमारी झल्लो बंदूक कैसे चलाती है।
3: कक्का देखना हमारा निशाना, बताओ कौन सा आम गिरा है, बताओ बताओ। वो मारा, ये लो अब वो वाला गिराती हूँ। अच्छा अब मैं ऊंचा वाला गिराऊं। बटोर लो।
1: चल झल्लो, दिया बत्ती का समय होगा, चल घर चले।
0: चलो हम भी चलते हैं साथ में।
3: अच्छा बाऊजी, हम कढ़ी रोटी बना रहे हैं।
0: चित संभाल के, अरे अरे अरे अरे, अरे।
1: वाह सदो भैया, कोई नहीं कह सकता जे कि जे बिन माँ की बच्ची है।
0: इधर झलकारी बड़ी हो रही थी, शस्त्र विद्या में पारंगत हो रही थी, और झांसी में बुंदेलखंड की वीरांगनाएं भी बड़ी हो रही थी।
1: झल्लो तू कहाँ चलती बिटिया?
3: बाऊजी आप आराम कर लो थोड़ी देर, मैं गैया हाँक लाती हूँ। चल चल कमली, गौरी श्यामा चल। है

0: सदो भैया झल्लो को चीते ने घेर लिया है।
1: राम तुम का कह रहे हो? तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है हमारी बिटिया के लाने। तो कोई बचा लो हे राम कोई बचा लो हमारी बिटिया के। ए झल्लो बिटिया, झल्लो बिटिया, झल्लो बिटिया।
2: हाँ बाबूजी।
1: हे राम तुमने क्या कर दो, ये चीते को मार दो। हे राम तुमने तो कमाल ही कर दो।
2: हाँ बाबूजी, बस चार बार में ही काबू कर लिया था हमने और पांचवे में तो चित।
3: वाह बेटी वाह, हमारे गांव को नाम कर दो तूने राम दही। अरे इसमें तो माँ की शक्ति है। वाह सदो भैया, कोई नहीं कह सकता जे कि जे बिन माँ की बच्ची है।

0: చదువా? ఓ చదువా.
1: అరే అమ్మమ్మా, ఆవా
0: ఇతే ఆ अपनी जल्लों को लोग आसपास के गांव तक जानन लगे हैं। कछु पतो है? भोजला गांव झल्लों के नाम से जानो जात है। झांसी तक खबर पहुंच गई है।
1: सच्ची मम्मा?
2: देख बेटा, बिन माँ की बच्ची है सो हमारी लोगन को फिकर करने पड़े। अब ब्याह के लायक हो गई है अपनी झलकारी।
1: हाँ अम्मा, मैं भी न जाने का भूल ही गया था। अब ढूंढाई लगानी पड़ेगी दूल्हे।
0: अरे हम का ऐसे ही आए, एक भलो मोड़ा देखो है अम्मा ने झांसी में।
1: झांसी में?
0: हाँ, पूरन सिंह नाम है, और तो और रानी की सेना में तोपची है तोपची।
2: तुम कहो तो बात बढ़ाए बेटा।
1: हाँ अम्मा, अब आप लोगन से अच्छा वो सोचा था, हमारी झल्लो के तो भाग खुल जाएंगे। हाँ, आप लड़का दिखा के बात पक्की करो। बस अम्मा, मोड़ी को ब्याह हो जाए और हमें का जाने।

0: अपना ध्यान रखना। हम अकेला छोड़े जा रहे हैं आपको। अम्मा बाबूजी को ध्यान रखियो।
1: नहीं बेटा, तू तो हमारा मान है। बेटा पूरन, झलकारी के बाबूजी ने बहुत अच्छे से अच्छी विद्या देने की कोशिश करी है अपनी झल्लों को, बिन माँ के पाला है। जे ध्यान रखियो, हमारी झल्लो पूरे गांव की लाडली है। अरे गांव को बेटा है जे बेटा, बहुत बहादुर।
2: आप चिंता नहीं करें अम्मा, आखिर झांसी जा रही है आपकी झल्लो, उसको पूरा सम्मान मिलेगा। बाबूजी आपकी शिक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी।

0: प्रणाम माँ। प्रणाम बाऊजी।
1: अरे जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। देख बेटा, मैंने और पूरन के बाऊजी ने उपहार में तुझे सोना चांदी नहीं दिया। हम चाहते हैं जो मान तुमने भोजला को दिलाया वो बेकार नहीं जाए। बेटा तू अब झांसी में है, जिसकी बहु बेटियों के असली आभूषण यही है।
0: धन्यवाद माँ। माँ मैं इतनी खुश हूँ ये तलवार का उपहार पाकर कि कुछ बोल ही नहीं पा रही। मैं अभी इन्हें दिखाकर आती हूँ माँ।
1: जरूर जा बेटा, बाहर पूरन घोड़े पर तुम्हारी राह देख रहा है। वो अपने बलदेव कक्का है ना, उनसे घोड़ा मांग के लाया है। कह रहा था झलकारी सवारी करके देख ले तो अपन ही रख लेंगे।
0: अब हम चलते हैं।
1: जा बेटा जा।
0: जोहार माँ। जोहार बाऊजी।
2: जोहार बेटा। जुग जुग जियो।
3: आज हलकारी चलो नदी तक हो आते हैं। तुम्हें जब घोड़ा ठीक लगे तो रख लेंगे।

0: अरे बस भाई, नदी आ गई, यहाँ रुकते हैं।
1: तुम तो बड़ी अच्छी थे सवारी, जानती हो झलकारी?
2: जी, बाऊजी ने पूरी शिक्षा दी है हमें। हम तो तीर तलवार और बंदूक चलाना भी जानते हैं। एक बात कहें आपसे?
1: कहो।
2: हम रानी जी को देखना चाहते थे बचपन से ही।
1: इसमें क्या बड़ी बात है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि बाऊजी की शिक्षा बेकार मत जाने दो। तुम आज ही चलो किले, रानी जी से मिलवा भी देंगे और तुम्हारे सेना में भर्ती होने की बात भी कर लेंगे।
2: जी सच में? क्या हम सच्ची में भर्ती हो सकते हैं?
1: क्यों नहीं, तुम तो सभी कलाओं में निपुण हो और तुम्हारे जैसी वीरांगना की तो झांसी को जरूरत है झलकारी।
2: पर भाई साहब, रखेंगे हमें?
1: भाई साहब वीरों का बहुत मान रखती है और उन्हें जरूरत भी है।
3: ये वो समय था जब झांसी की गलियों में आजादी की लहरें उठना शुरू हो रही थी। 7 मार्च 1854 को डलहौजी ने झांसी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। एक तरफ मेजर डगलस ने झांसी का अंग्रेजी बंदोबस्त शुरू किया, दूसरी तरफ रानी ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी।
1: जोहार भाई साहब।
4: आओ आओ पूरन, तो ये है झलकारी।
1: जी भाई साहब, झलकारी आपके दर्शन की बड़ी इच्छा रखती थी, सो लेता आया।
4: झलकारी, तुम्हारी बहादुरी की बहुत बातें सुनी है हमने, तुम्हें अपना समय यूं ही नहीं गवाना चाहिए। अपने गुणों का उपयोग झांसी की सेवा में नहीं करना चाहोगी?
2: हमारे सौभाग्य भाई साहब।
4: ये कुछ उपहार है तुम्हारे लिए झलकारी। पहली बार दिखा है तुम्हें, रख लो।
2: भाई साहब, सेना में भर्ती करके आपने हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार तो दे ही दिया, बस अब आशीर्वाद दें कि अपने कर्तव्य को निभा सके। झांसी की आन बान के लिए हमारा सब कुछ न्योछावर है भाई साहब।
4: झलकारी, तुम जैसे वीरों की निष्ठा और आत्मविश्वास के बल पर ही तो मैंने स्वराज्य की घोषणा की है। जाओ और कल से ही सैन्य परीक्षण के लिए बड़ा बाग आ जाना।
3: झांसी में युद्ध की तैयारियां चल रही थी। लोगों ने युद्ध की तैयारी को उत्सव में बदल दिया था। बच्चा बच्चा झांसी के लिए मरने को तैयार था। औरतों ने मेहंदी वाले हाथों में बंदूक उठा ली थी। इधर झलकारी की रात काटे नहीं कट रही थी। भोर होते ही तैयारी करके उतावली झलकारी बड़ा बाग जा पहुंची।
4: सुंदर मुंदर, यहाँ आओ। काशी, चुन्नी और कमला तुम, झलकारी तुम भी यहाँ आओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ आज से अपने अपने अस्त्र संभालो और उसी का अभ्यास करो। युद्ध में किस शस्त्र का कैसा उपयोग करना है ये नीति हम अभी तय करेंगे।
5: जी भाई साहब।
4: तो शुरू हो जाओ। काशी, तुम तो लाठी में पारंगत हो। सुंदर, तू कटार रख। कमला, तू तीर कमान रखना। मुंदर बल्लम का कमाल करेगी। और झलकारी, तू तो बंदूक रख जिसमें तेरा निशाना अचूक है। जरूरत पड़ने पर तुझे तोप भी चलानी पड़ेगी।
5: जी भाई।
4: तुम सब मेरी ही नहीं पूरी झांसी की हिम्मत हो। हमें जल्दी ही युद्ध भूमि में उतरना है।
5: झांसी का मान सर आंखों पर, अपना खून बहा देंगी पर झांसी नहीं देंगी।

सेना में सैनिकों की भर्ती हुई और युद्ध का जोरदार अभ्यास चला। प्रधानमंत्री, दीवान, सेनापति इन सब के साथ

0: महिला सैनिकों की टोली और आम जनता की पूरी तैयारी थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू ही क्रांति की चिंगारी झांसी तक आ पहुंची। 6 जून को झांसी में क्रांति का बिगुल बज उठा। अंग्रेजों ने किलों को घेर लिया। घमासान युद्ध से हालात बिगड़ते जा रहे थे। अंत में आपात बैठक बुलाई गई।
1: शत्रु का दबाव हम पर बढ़ता ही जा रहा है, स्थिति नाजुक लगती है।
2: जी भाई साहब, हमारे सैनिकों की संख्या कम होती जा रही है।
3: भाई साहब की जय। एक महिला सैनिक आपसे मिलना चाहती है।
1: अंदर भेजो।
4: जोहार भाई साहब, एक विनती थी आपसे।
1: कहो झलकारी।
4: भाई साहब, एक तो हमारे सैनिक बहुत कम हो गए हैं, दूसरी ओर हमारे तोपचियों में कुछ गद्दार हैं, जो अंग्रेज सैनिकों पर निशाना ही नहीं साधते, जिससे वो अंग्रेज बचकर निकल जाते हैं।
1: हम जानते हैं, पर तुम क्या कहना चाहती हो झलकारी?
4: भाई साहब, इस आक्रमण की घड़ी में किले की दीवार कभी भी टूट सकती है, फिर तो आमने सामने युद्ध होगा।
1: हमें तो हर हाल में तैयार रहना है।
4: पर ऐसे में तो आपका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है भाई साहब।
1: वो कैसे?
4: छलावे से।
1: छल से?
4: जी भाई साहब, हमारी और आपकी कदकाठी एक सी जो है, सो हम आपके भेस में अंग्रेजों को दूर ले जाएंगे अपने पीछे, और इधर आप पीछे के रास्ते सुरक्षित निकल जाइएगा।
1: पर इसमें तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है झलकारी।
4: हमसे कहीं ज्यादा आपकी जान जरूरी है झांसी के लिए। आप फिर से सेना को संगठित करके लड़ तो पाएंगे अंग्रेजों से। बस अब आज्ञा दे भाई साहब।
1: तुम्हारी ये हिम्मत और बहादुरी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे झलकारी।

0: योजना के अनुसार रानी घुड़साल वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। इधर झलकारी ने रानी की तरह श्रृंगार किया और लड़ते लड़ते छावनी जा पहुंचा।
1: कौन हो तुम?
2: रानी।
1: कौन रानी?
2: रानी लक्ष्मीबाई।
1: झांसी की रानी लक्ष्मीबाई?
2: हमें तुम्हारे जनरल से मिलना है।
3: जनरल? जनरल ह्यूरोज और स्टुअर्ट यहीं आ रहे हैं।
4: Who are you? कौन है तुम?
2: रानी लक्ष्मीबाई।
4: ओह, तो तुम रानी है? Oh, I must say, very beautiful.
1: लक्ष्मी बाई पकड़ी गई, किरानी पकड़ी गई, झांसी किरानी पकड़ी गई।
3: राम राम सरकार, मैं दुल्हाजू।
4: देखो दुल्हाजू, तुम्हारा रानी।
3: अरे अरे नहीं नहीं सरकार, ये तो झलकारी है, झलकारी कोरिन।
4: What?
3: जी, अरे सरकार, ये तो महिला सैनिक है, तोपची पूरन की पत्नी। उनवाओ फाटक पर आपके कई सारे सिपाहियों को इसी ने मौत के घाट उतारा था।
2: अरे पापी, तुझे लाज नहीं आई दुल्हाजू? पहले तो ओरचा फाटक से गोरों को घुसा दिया, तब मन नहीं भरा तेरा गद्दार, फिर भी दोगलापन कर रहा है नमक हराम। तू मरेगा, तू मरेगा, और पूरी झांसी थूकेगी तुझ पर।
4: तुमने हमको धोखा दिया झलकारे।
2: धोखा? अरे तूने तो हमारे पूरे देश को धोखा दिया है।
4: तुमको हम गोली से उड़ाएगा।
2: हम मरने से नहीं डरते, डाक गोली, डाक।
5: सर, she's mad.
4: No, no, no, Stuart. This is serious. One person ladies भारत का ऐसा हो गया तो हमको भारत छोड़ना पड़ेगा। सिपाही, बंद कर दो इसे चांबो में।
3: राम राम राम।

0: कर लिया झलकारी को दुष्टों ने।
1: अरे जिसके सर पर खून सवार, दिल में स्वाधीनता की चीतकार, ऐसी देवी झलकारी को कोई पहरा रोक सकता था भला?
0: फिर क्या हुआ?
1: अरे फिर क्या, रात को ही भाग निकली वो तंबू से और दूसरे ही दिन पति पूरन के साथ मोर्चा संभाल लिया।
2: देखो झलकारी,
3: ये ले जनरल।
4: झलकारी, पूरन भैया गिर गए।
5: अब झांसी के नाम का सवाल है झलकारी, झांसी की रक्षा करना मेरी चिंता।
3: मैं आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, आपकी तरह ही झांसी की रक्षा करूंगी। जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
1: अपने बगल में गिरकर दम तोड़ चुके पति के पास ही लड़ती रही झलकारी, दागती रही गोले झांसी की शान के लिए, स्वराज्य के लिए लड़ती रही और शत्रुओं के नाक में दम कर दिया।
0: फिर झलकारी का क्या हुआ काका?
1: अब ठीक ठीक तो पता नहीं भैया, कोई कहता है अंतिम सांस तक गांव में रही और कोई कहता है कि उसने अंतिम सांस वहीं मोर्चे पर लड़ते लड़ते ली।
6: वाह वाह वाह वाह, जय हो ऐसी देवी की।
1: अरे ऐसी न जाने कितनी झलकारी हुई जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया।
6: ठीक कहा काका, आपको बड़ा धन्यवाद जो इतनी अच्छी बातें बताई। अब जब फिर आए तो किसी और के बारे में सुनेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं हम काका?
1: हाँ जरूर जरूर, अब मैं भी लगता हूँ काम में।
6: अरे चल रही झलकारी, जो तेरी भाग दौड़ खत्म हो गई हो तो चल चल चल चल। राम राम काका।
1: हाँ राम राम बेटा, राम राम।

निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग ब्लिस।
2: थैंक यू
1: सिस्टर। हम ब्लिस की बात कर रहे थे, हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, कंजर्विंग एनर्जी की बात कर रहे थे। तो इससे पहले मैं कुछ आपसे पूछूं, मैं कुछ पढ़ सकता हूं? जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। हाँ जी। द यूनिवर्स इज नॉट पनिशिंग और ब्लेसिंग यू, द यूनिवर्स इज ओनली रेस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशनल एटीट्यूड दैट यू आर एमिटिंग। वॉट इफ एवरी वर्ड यू सेड वेर अ विश टू द यूनिवर्स, वुड यू स्टिल से द सेम थिंग्स दैट यू डिड यस्टरडे? योर थॉट्स एंड वर्ड्स एको थ्रू आउट द यूनिवर्स। मेक श्योर टू ओनली पुट आउट वंस दैट यू वॉन्ट बैक।
2: दिस इज एग्जैक्टली इन लाइन विद व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे।
1: जी,
2: कल हमने देखा के थॉट्स जो सारा दिन हम क्रिएट करते हैं, ये एक ही चीज है जो हम सारा दिन क्रिएट कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं रुकती, रात को भी नहीं बंद होती, कम हो सकती है लेकिन बंद नहीं होती है। एंड विच मीन्स एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ आई एम क्रिएटिंग थॉट्स, एवरी सेकेंड। दिस लिविंग बींग जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, ये हर क्षण सोच रहे है। सिर्फ शरीर लेने के बाद नहीं, शरीर छोड़ती है तब भी आत्मा सोचती है, आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो भी सोचती है, फिर बच्चा पैदा होता है तब से सोचता है,
1: तब मन।
2: आत्मा है ना, आत्मा है मतलब सोच है।
1: अब मरने के बाद सोचती,
2: सी इट्स एनर्जी। आत्मा यहाँ बैठी है, सोच रही है, मतलब एक एक थॉट क्रिएट हो रही है। अब वो यहाँ बैठने के बजाय अगर यहाँ से निकलकर यहाँ बैठी है, सोचने का काम तो उसका चल रहा है। शरीर में आने से क्या होता है, जो थॉट वो क्रिएट करती है उसको वो इस शरीर के थ्रू एक्सप्रेस कर सकती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, थॉट फिर भी क्रिएट करती है, एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। एक छोटा बच्चा है, थॉट क्रिएट करता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है।
1: कोमा में,
2: कोमा में है, थॉट क्रिएट कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उसको कर नहीं सकते हैं, थॉट क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए अगर जैसे सो ब्यूटिफुली यू सेड, कोई कोमा में है तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या वो हमें सुन सकते हैं, कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारी हर बात सुन सकते हैं, हमारी हर थॉट

0: अटैच कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई इस तरह से बीमार है, उनके पास बैठकर हम जो बोलेंगे और बहुत अच्छी प्यारी बातें अगर हम उनसे करें, क्योंकि आत्मा जब एक्सप्रेस नहीं कर सकती तो इट्स लाइक अ पनिशमेंट। यू नो, यू वॉन्ट टू से समथिंग बट यू कांट से इट, यू वॉन्ट टू डू समथिंग यू कांट डू इट। सो इट्स लाइक
1: सपने में भी होता है, आई वॉन्ट टू से समथिंग लेकिन आवाज नहीं निकल रही, चोक हो गया।
0: इसी तरह जब आत्मा माँ के वूम्ब में भी होती है, बोल नहीं सकती, छोटा बच्चा होता है, अपनी बात नहीं बता सकता है, सिर्फ रो सकता है, भूख लगी तो भी रोएगा, पेट दर्द हो रहा है तो भी रोएगा,
1: नींद आई
0: तो भी रोएगा, बिकॉज इट जस्ट कांट डू इट एनी अदर वे। सो दिस इज सफरिंग, क्योंकि वो रोता ही जाता है हर बात के लिए, रोता ही जाता है। दिस इज सफरिंग क्योंकि बोलना चाहता है, बताना चाहता है, बता नहीं सकता, क्योंकि अभी तक फिजिकल कॉस्ट्यूम रेडी नहीं है बताने के लिए। इसी तरह जब कोमा में है तो आत्मा का ब्रेन से जो कनेक्शन होता है, सी आत्मा थॉट क्रिएट करती है, सिग्नल ब्रेन को भेजती है, फिर ब्रेन उसको बॉडी के थ्रू मैनिफेस्ट करके बाहर ले आता है। कोमा में सिर्फ इतना सा होगा, बॉडी भी है वहां, ब्रेन भी है, सब ठीक है, लेकिन आत्मा का ब्रेन से जो एक कनेक्शन है ऐसे डिस्कनेक्ट हो गया, वो एक तार जिसको बोलेंगे ना, जैसे डिस्कनेक्ट हो गई तो लिंक टूट गया, तो सोच रही है, सुन रही है, फील कर रही है, सिर्फ उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकती ब्रेन को, और फिर ब्रेन बॉडी के थ्रू उसको करा नहीं सकता। तो इट इज सो पावरफुल कि हर क्षण आत्मा सोच रही है, एंड जो चीज हम हर क्षण कर रहे हैं उसी के बारे में हम अवेयर नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं।
1: तो ये अवेयरनेस हमें नहीं थी कि हमें अवेयर होना है,
0: होना है। और इसी तरह जैसे आपने कहा, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी सोच रही है, वाइब्रेशंस रेडिएट भी कर रही है, हम जो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं उस आत्मा के लिए जिसने शरीर छोड़ा है, उसको भी कैच कर सकती है। वेरी इम्पोर्टेंट कि हम उस आत्मा के प्रति जिसने शरीर छोड़ा है, हम कैसी थॉट क्रिएट करते हैं,
1: कितने भजन करते हैं, पूजा करते हैं, उस समय पे भगवान का नाम लेते हैं,
0: भजन करते हैं,
1: बोलते हुए ले जाते हैं,
0: पूजा भी करते हैं, लेकिन बहुत रोते भी हैं। भजन तो कर रहे हैं लेकिन बहुत रोते हैं, रोते भी हैं लेकिन साथ साथ क्या बोलते हैं और सोचते हैं, कैसे चले गए ऐसे, मेरा क्या होगा अभी आपके बिना, आपको वापस आना ही पड़ेगा, मुझे तो जीना ही नहीं है आपके बिना। एक एक थॉट ये हमें विजुअलाइज करना होगा कि हाउ इट फील्स कि हम यहाँ से निकले, हम एक दूसरी जगह पर हैं और हमारा परिवार कंटिन्यूसली इस तरह के मैसेज भेज रहा है।
1: सपोजिंग मैं छुट्टी पे या बिजनेस के लिए अमेरिका गया,
0: यस,
1: और पीछे से आप बोल रहे, आपने सोचा भी नहीं कैसे चले गए, हम काम कैसे करेंगे, घर कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, आप वहाँ क्यों चले गए, जल्दी वापस आ जाओ,
0: और वो भी कॉन्स्टेंट। ऐसा नहीं दिन में एक बार ऐसा मैसेज आ जाए,
1: कॉन्स्टेंट नहीं, दुख से, रोते हुए, दर्द से,
0: कॉन्स्टेंट
1: नहीं, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट भी है, खुशी से नहीं,
0: खुशी से नहीं ना, हाँ, दर्द के, और वो भी एक व्यक्ति से नहीं, परिवार के कई लोगों से। तो ये आत्मा जिसने शरीर छोड़ा उसके लिए कितना सफोकेटिंग होगा। अब आप तो अमेरिका गए, तो वापस आना हो तो आ तो सकते हैं ना, फोन पर बात कर सकते हैं, तो इट्स नॉट दैट सफोकेटिंग, उतना सफोकेशन नहीं है, फिर भी परेशान होंगे ना, वहां कॉन्स्टेंटली ऐसे मैसेजेस मिले, अगर दिन में कोई दो ईमेल भी भेज दे ऐसे, या दिन में एक बार फोन करके भी रोज ऐसा बोल दे, तो भी कितना परेशानी होगी। और यहाँ तो आत्मा शरीर छोड़ के गई है, वापस आ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, और उसको कॉन्स्टेंट और पूरे परिवार से ऐसे मैसेज मिले, तो कैसी फीलिंग क्रिएट होगी। तो ये हमें सारा दिन इस डायनेमिक्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बच्चा गर्भ में है तो भी थॉट्स कैच कर रहा है, बोल सुन रहा है, बता नहीं सकता, अटेंशन रखे हम उस बच्चे के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। द सोल इज कैचिंग एंड थिंकिंग एंड फीलिंग, नॉट ओनली जस्ट कैचिंग।
1: पुरानी कहानियों में थे, गर्भ में इसने ये सीख लिया,
0: yes.
1: बाप ने ये सुनाया तो गर्भ ने में इसने ये सुन लिया,
0: absolutely.
1: वो सीख लिया,
0: एब्सोल्युटली। नो, सो इट्स नॉट ओनली जस्ट कैचिंग बट इट्स ऑल्सो थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट दैट। सपोज हमारे मतलब somebody is expecting a baby and उसके घर में ये चिंता हो, ये बच्चा आ रहा है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं इसको कैसे बड़ा करूंगी, कैसे पालूंगी, हमारे पास तो घर में एक ही कमरा है, दो कमरे भी नहीं है,
1: पता नहीं लड़की है कि लड़का,
0: लड़की है या लड़का
1: है, शादी कैसे करेंगे, लड़का हुआ तो ये होगा,
0: अच्छा लड़की है तो मेरा परिवार ही मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरी तो ऑलरेडी दो बेटियां हैं। अब ये आत्मा गर्भ में ये सब कैच भी कर रही है, मतलब सुन भी रही है, लेकिन सुनने के बाद उसके बारे में सोच भी रही है, फील कर रही है।
1: टाइप की फीलिंग
0: हाँ, लेकिन कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ना
1: कि मैं बोझ बन के तो नहीं आ रहा हूँ।
0: सो दिस वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हर आत्मा वो मन है जो हर क्षण सोच रहा है, और जो आपने अभी पढ़कर सुनाया, जो हम सोच रहे हैं वो रेडिएट हो रहा है, और जो रेडिएट हो रहा है वही हमारा भाग्य है, क्योंकि वही एनर्जी वापस आएगी। जब वो बच्चा माँ के गर्भ में है तब से वो अपना भाग्य क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि वो सोच रहा है। तो उसको हमें कैसा मटेरियल देना चाहिए सोचने के लिए, ताकि उसकी सोच अच्छी हो। हम इस बात पर तो ध्यान रख लेते हैं कि बच्चा किस दिन पैदा होना चाहिए, किस पल पैदा होना चाहिए, पैदा होते ही उसकी जन्म पत्री होनी चाहिए, किस अक्षर से उसका नाम होना चाहिए, कैसा पूजा होनी चाहिए जब बच्चा पैदा हुआ, नामकरण है तो कैसे पूजा होनी चाहिए, क्यों हम ये सब कर रहे हैं, ताकि उस बच्चे के लिए सब कुछ शुभ होना चाहिए, उसका भाग्य श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन उसका भाग्य सिर्फ ये बाहर की चीजों से, तो उसका भाग्य तो उस क्षण बनना शुरू हो गया जब वो आत्मा आपकी सोच कैच करके अपनी सोच क्रिएट करने शुरू कर दे। अगर हमने उस आत्मा को किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट्स दे रहे थे, अच्छा चलो उस बच्चे के प्रति नहीं भी क्रिएट कर रहे थे, हमारी जो लाइफस्टाइल है अगर उसमें टेंशन है, एंग्जाइटी है, सपोज उस बच्चे के पेरेंट्स ही झगड़ा कर रहे हैं, अगर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा भी हो रहा है, तो वो आत्मा पहले से ही नहीं कैच कर रही कि ये जो दो लोग जिनके पास मैं जा रही हूँ ये तो ऑलरेडी कितना झगड़ा करते हैं।
1: अगर इतना कोई मजबूरी से पैदा हुआ हो बच्चा और बड़ा हो के उसकी जो हरकतें कुछ आपको अच्छी नहीं लगे, तो उसके ऊपर हम उसको दोष कैसे दें फिर?
0: Yes,
1: दूसरे पॉइंट से सोच रहा था।
0: Yes, अगर हमने कह दिया स्ट्रेस नेचुरल है, गुस्सा नेचुरल है, तो उस घर में जहाँ वो आत्मा ऑलरेडी आ चुकी है और वो थॉट्स को कैच कर रही है, और जिस क्वालिटी की थॉट्स को कैच कर रही है उस क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट कर रही है, और जो थॉट्स क्रिएट कर रही है वो उसका भाग्य अभी लिख रही है। सो द पेरेंट्स, द इन लॉज, मतलब जितने भी लोग आसपास उस बच्चे के, उस आत्मा के हैं, दे नीड टू रिमेम्बर कि अगर वो चाहते हैं, क्योंकि इंटेंशन बहुत अच्छी है ना, कि ये जो हमारे घर बच्चा आया है इसका भाग्य बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर चाहते हैं कि उसका भाग्य अच्छा हो तो उसके लिए उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, अगर चाहते हैं कि उसकी सोच अच्छी हो तो उसको उस समय से ही अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी सोच देनी होगी, और फिर जैसे ही बच्चा पैदा हो और थोड़ा बड़ा हो उसको सही सोचना सिखाना होगा। अगर सही सोचना नहीं सिखाया तो फिर सही समय, सही दिन, सही अक्षर का नाम, ये सब चीजें भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाई दीज टू लाइन्स आर सो पावरफुल। द यूनिवर्स इज नीदर ब्लेसिंग यू नॉर कर्सिंग यू। हम कह देंगे ऐसे समय पे पैदा हो गया, मतलब वी आर ब्लेमिंग द यूनिवर्स,
1: नॉट इवन पनिशिंग यू।
0: इट इज नॉट ब्लेसिंग यू। सी, इट्स नॉट इवन सेइंग इट्स नॉट पनिशिंग यू, इट्स सेइंग इट्स नॉट ब्लेसिंग यू ऑल्सो। हम अच्छा अगर कहे ना कि नहीं, पनिश नहीं करती प्रकृति या परमात्मा, पनिश नहीं करता, लेकिन ये कहता है ना पनिश करता है ना ब्लेस करता है, यू आर ओनली गेटिंग दैट
1: व्हाट
0: यू आर रेडिएटिंग आउट। तो सारी पावर किसके पास है?
1: मतलब जैसे जो परफ्यूम हम लगाते हैं उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है,
0: और उसकी खुशबू सबसे पहले किसको मिलती है?
1: मुझे।
0: दिस इज इट।
1: तो मतलब ये वो जो वही रेड उसी प्रकार ये है।
0: Yes, हर सोच, मेरी हर सोच, सारा दिन जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो पहले मुझे मिलती है, फिर मुझसे रेडिएट होती है, रेडिएट होके वो वापस मेरे पास आती है। कर्म और भाग्य, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये तो मालूम है कि वो रेडिएट हो रहा है, रेडिएट होके वो वापस आ रहा है, जब रेडिएट हो रहा है कर्म, वापिस आ रहा है भाग्य। सिर्फ ये हुआ कि जब हमने अपने कर्म को चेक किया तो हमने सोचा जो हम करते हैं वो कर्म है, जो हम बोलते हैं वो कर्म है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी गहरा सिखाती है जो हम सोचते हैं वो पहला कर्म है।
1: मेरे ये समझ में नहीं आया कि अभी सोच को कैसे सोचें या फिर चेंज कैसे करें या बदलें कैसे, क्योंकि मुझे अभी

0: ही भी सोचने के बाद, खाते समय कभी कोई बिल्कुल फालतू सी थॉट आ जाती है तो मेरा खाने का फिर क्या हुआ, आप खाना रोक दे, नहीं मैंने सॉरी मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। ये सोच इतनी देर देर बाद पता चलेगा कि मैं सोच रहा हूँ तो मैं करूँ क्या,
1: इसमें भी
0: इसकी भी फिर टेंशन हो जाएगी मुझे।
1: हमारी थॉट्स की क्वालिटी, अब हमें थॉट्स को चेंज करना है ना, एक तो टू मेनी थॉट्स एंड क्वालिटी ऑफ थॉट्स। तो अगर मुझे अपनी थॉट्स की क्वालिटी को चेंज करना है तो फिर मुझे एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा कि मेरी थॉट्स किस किसकी वजह से क्रिएट होती है। क्रिएटर तो मैं हूं लेकिन उस क्रिएशन का भी रॉ मटेरियल क्या है, ये बहुत जैसे फिजिकल एनर्जी है, हमें आज पता चल रहा है कि मैं फिजिकली स्ट्रांग हूं या वीक हूं, एनर्जी है या नहीं, परिस्थिति मतलब मौसम को फेस करने की मेरे अंदर ताकत है या नहीं, लेकिन ये एनर्जी क्रिएट किस बेसिस पे हुई, मेरा रॉ मटेरियल जो इस बॉडी को दिया जा रहा है, डाइट एंड एक्सरसाइज। तो अगर मुझे इस एनर्जी को चेंज करना है, मैं बार बार सिर्फ बोल नहीं सकती ना, शरीर कमजोर है, शरीर कमजोर है, क्या करूं, शरीर कमजोर है, शरीर कमजोर है तो उसको स्ट्रांग बनाओ। तो देन आई विल आस्क समबडी, अच्छा स्ट्रांग बनाओ तो क्या करो, तो बोलेगा ये डाइट, ये एक्सरसाइज, ये विटामिन, सनलाइट, वाटर, 5-6 इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे, आप ये करो, शरीर ठीक, शरीर ठीक, एनर्जी ठीक, एनर्जी ठीक, चीजों को फेस कर लेंगे, मौसम बदलेगा, गलत खाना आप खाएंगे, कुछ होगा, यू विल मैनेज, यू विल क्रॉस एवरीथिंग। अब मन कमजोर है, कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है, छोटी छोटी बात में बीमार हो जाता है। स्ट्रांग करना है, कैसे स्ट्रांग करो, रॉ मटेरियल को चेक करो, क्या रॉ मटेरियल जा रहा है इसके अंदर। तो थॉट्स जो हमारी है उसकी जो क्रिएशन है उसके लिए तीन रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मीन्स थ्री फैक्टर्स जिसके बेसिस पे थॉट्स क्रिएट होती है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, जो हम सारा दिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सब कुछ जो ऐसे जा रहा है, एनीथिंग, चलते चलते क्या पढ़ा, सुबह अखबार में क्या पढ़ा, टीवी पर क्या पढ़ा, क्या सुना, कैसी मूवी देखी, कैसे गाने सुने, किन लोगों से आज बात की, कैसी बातें सुनी, एवरीथिंग जो आई टेक इन, इनटेक, यू नो, इनटेक ऑफ द बॉडी, इनटेक ऑफ द सोल। तो ये जो इनटेक जाएगी ये स्टोर हो जाएगी जाकर, जिसको हम कहेंगे मेमोरी। मेमोरी में स्टोर जो क्वालिटी की इनटेक हो गई,
0: तो ये एक बैंक की तरह है।
1: आपके पास कितनी मेमोरीज है, आपके पास, जैसे आपने लास्ट टाइम कहा 10 साल पहले मुझे किसी ने शादी पे नहीं बुलाया, तो वो मुझे याद है ना, तो वो कहाँ स्टोर हुआ हुआ है, मेमोरी में। तो वो सारा स्टोर होता जाएगा। अब जो स्टोर होता जाएगा, स्टिमुलस आएगा, मतलब परिस्थिति आएगी, जब परिस्थिति आएगी वो मेमोरी बैंक को ट्रिगर करेगी, जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी उस क्वालिटी की ही थॉट क्रिएट होगी। ये डेफिनेट है, इसके साथ तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है। आप जो स्टोर करेंगे परिस्थिति आएगी, जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर की होगी परिस्थिति उसको ट्रिगर करेगी और उस क्वालिटी की थॉट क्रिएट होती जाएगी। अगर हम सारा दिन में, आज क्यों इतना बोला जाता है कि बच्चे वायलेंट ज्यादा हो रहे हैं ना, अग्रेसिव ज्यादा हो रहे हैं, तो इमीडिएटली ये कहते हैं आज वो वायलेंट कार्टून्स देख रहे हैं। पहले हम बहुत सिंपल क्यूट सी कार्टून्स देखते थे, आज कार्टून भी वायलेंट हो गई है, आज जो वीडियो गेम खेलते हैं उसमें भी वायलेंस है, आज टीवी वो देखते हैं जो हम नहीं देखते थे जब हम छोटे बच्चे थे उसमें भी वायलेंस है। तो ये जो सब वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब वो उनके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। क्यों? इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, हैबिट, एक्शन, पर्सनालिटी। सो इंफॉर्मेशन पर्सनालिटी बन गई, वायलेंट इंफॉर्मेशन ली, वायलेंट पर्सनालिटी बन गई।
0: एक सवाल था, खाना शरीर के लिए, मैंने आज अच्छा अच्छा खाना शुरू कर दिया बीमार होने के बाद, डॉक्टर ने बोला अभी आप फल खाओ, फ्रूट खाओ, अच्छे थोड़ी सब्जियां हरी हरी खाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो, योगा करो, लेकिन पहले, उससे पहले मैं जंक फूड या नशे वाली चीजें सब, तो तब बॉडी तब की अब की फर्क, इसी तरह जो खाना हमने माइंड को पहले दिया हुआ था, आपने जैसे कहा 10 साल पहले वाली बात, उसको फिर मैं अब नया वाला कैसे करूं, आज जो खाना थॉट को दूंगा वो इम्पोर्टेंट है या पुराने वाले को मैं कैसे डिलीट करूं?
1: जैसे शरीर भी पुराने वाले खाने से बना हुआ ना, अगर जो हमने 30 इयर्स खाया वो शरीर के अंग अंग में है ना, ब्लड में, मसल्स में, बोन्स में, मैंने दूध ही नहीं पिया बचपन से, तो हड्डी तो कमजोर है, अब वो बना हुआ है। लेकिन अब जैसे ही नया डाइट देना शुरू करेंगे, धीरे धीरे बॉडी का स्ट्रक्चर उससे चेंज हो जाएगा। सेम विद द माइंड, अगर वो स्टोरेज बैंक है जैसे, और वहां बहुत कुछ स्टोर्ड है, अब हम वो स्टोर्ड को निकाल नहीं सकते, वी कैन रिमूव इट। तो स्टोर्ड है तो हमें क्या करना है, सिर्फ डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है, जितना ये डलता जाएगा, क्योंकि स्पेस तो उतनी है ना फिर आपके। इट्स लाइक अ बोल, आपने एक कटोरा लिया जिसमें गंदा पानी है, अब अलाउड नहीं है, कटोरे को टेढ़ा करके खाली नहीं कर सकते, तो एक ही ऑप्शन है ना, दूध डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। एक बूंद दूध भी अगर जाएगा तो एक बूंद गंदा पानी स्पिल ऑफ हो जाएगा, एक बूंद भी अगर जाएगा एक बूंद स्पिल ऑफ हो जाएगा। भरते जाओगे दूध की मात्रा बढ़ती जाएगी, पुराने गंदा पानी कम होता जाएगा, एक दिन आएगा बर्तन पूरा दूध से भरा हुआ होगा। आज जो बच्चे वायलेंट मूवीज या वायलेंट वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, आज बंद करा दो एंड उसको सब्स्टिट्यूट कर दो कोई बहुत ऐसे, जैसे पहले मॉरल स्टोरीज, जकार्ता टेल्स, ये वो ऐसी कहानियां हमें सुनाएंगे ना, आज वायलेंट है। तो जो कहानियां सुनकर, पढ़कर, जिस तरह की कॉमिक्स पढ़कर हम बड़े हुए, वो यहाँ है।
0: हम लोग बचपन में कैसी कैसी कहानियां सुनते थे, वाल्मीकि जी की, और श्रवण कुमार अपने माता पिता का कैसे ख्याल रखता था, ऑल दीज थिंग्स। अभी तो कुछ और ही हो गया।
1: तो अभी क्या देख रहे हैं वो, आज उनके पास 24/7 टेलीविजन है, हमारे पास नहीं था। आज उनके पास 24/7 इंटरनेट है, हमारे पास नहीं था। फॉर्चुनेट, एक्चुअली फॉर्चुनेट कि इतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। एंड इन्फॉर्मेशन होना प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब आज अगर बच्चा पेरेंट के साथ बैठकर न्यूज देख रहा है, तो वो क्या न्यूज देख रहा है, यहाँ वायलेंस, यहाँ डेथ, यहाँ अटैक, यहाँ गलत गलत गलत, हर आधे घंटे की न्यूज में उसने एक एक विजुअल क्या देख लिया, तो थॉट क्या क्रिएट हुई, दुनिया ऐसी है, ये दुनिया ऐसी है। और फिर विजुअल देखा, फिर उसके बाद उसकी पूरी फैमिली ने बैठकर उसको डिस्कस भी किया,
0: नाश्ते की टेबल से शुरू हो जाता है आज के पेपर में क्या हुआ।
1: इन्फॉर्मेशन कौन सी जा रही है, कल यहीं पे जहां हम शूट कर रहे हैं, कुछ बच्चे आए थे बिजनेस स्कूल से, 5 लड़के थे, तो मैंने कहा आप बिजनेस स्कूल से पास होकर क्या करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं। I said, give me one thing you have to keep in mind. Business करने के लिए कौन सी चीज आप याद रखेंगे, एक चीज कौन सी पक्की करते हैं। तो एक ने कहा, be honest with your business. Doesn't matter how you are with other people. तो I said, इसका क्या मतलब है? तो कहा, अपने काम के साथ, काम के प्रति पूरी मतलब वफादारी, honesty. उसके लिए चाहे आपको आसपास के लोगों के साथ कुछ भी करना पड़े। बोला, ये किसने सिखाया कि आसपास के साथ आप कुछ भी करो, मतलब अपने काम में आपको ऑनेस्टी चाहिए। कहते, दुनिया में यही है आज। बोला, ये किसने सिखाया, मम्मी पापा ने बोला आपको? कहते, नहीं, हम सारा दिन नहीं देख रहे क्या दुनिया में क्या है, यही चलता है। ये कहाँ सीखा?
0: बी ऑनेस्ट विद योर बिजनेस, इसका मतलब है बी डिसऑनेस्ट विद द वर्ल्ड।
1: ही सेड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव टू डू विद एनीबॉडी।
0: हाँ, तो यही तो मीनिंग हो गया कि बी डिसऑनेस्ट विद द वर्ल्ड, अपनी बिजनेस के साथ आप ऑनेस्ट रहो,
1: मतलब आपको अपने प्रॉफिट पर, अपने काम पर फुल अटेंशन, डजंट मैटर आपको। एंड सेंटेंस कितना अच्छा बनाया था उसको, ऐसे आके मम्मी पापा ने तो नहीं सिखाया ये। कहते, नहीं, वो तो सिखाते हैं कि सबको सुख दो। मैं कहता, मम्मी पापा तो अच्छी बात सिखा रहे हैं सबको सुख दो, लेकिन सारा दिन इन्फॉर्मेशन, विजुअल, ऑडियो, इंटरनेट, टीवी, दोस्त, तो वो एक मम्मी पापा भी कितना सिखाए फिर। सो इन्फॉर्मेशन का कितना बड़ा रोल है। आज सुबह उठेंगे, म्यूजिक बजना शुरू हो जाएगा, टीवी न्यूज, मेजोरिटी हाउसेस बिगिनिंग द डे, मॉर्निंग डे, 6 o'clock मॉर्निंग टीवी न्यूज, मतलब, एंड ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सारी सुबह 6 o'clock आने वाली है।
0: वर्ड बड़ा अच्छा है, ब्रेकिंग।
1: yes.
0: किस चीज को ब्रेक कर देता
1: breaks
0: है?
1: lot of us. It completely, because early in the morning, I'm going like this. सुबह का समय मन एकदम फ्रेश होता है। मनोवैज्ञानिक साइकाइट्रिस्ट बताते हैं कि मन की जो अब्सॉर्प्शन पावर है वो सुबह के 2-2.5 घंटे है, वेरी हाई। आप देखो, हमें तो बचपन में सिखाते थे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, आज तो वो भी ऑपोजिट हो गया है, रात को पढ़ते हैं।
0: कॉफी पी के मास कॉफी रख देती है स्ट्रॉन्ग, ताकि नींद ना आए बच्चे को। हाँ। पूरी रात पढ़ो बच्चे।
1: यस, पर हमें तो सिखाया जाता था एंड जिसका हमें बेनिफिट हुआ है कि अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ना है, मन फ्रेश। जिस चीज जो किताब लेकर बैठोगे वो ऐसे अंदर समझ आती जाएगी, फिट होती जाएगी, बिकॉज क्लीन ब्लॉटिंग पेपर है।
0: कई रिलीजन्स में ऐसा ही है ना, सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करना,
1: सभी जगह है ना। क्योंकि साइंस ने ये प्रूफ किया है कि जो सुबह का समय है, 4 बजे का, 3 से 5, 6 बजे का, ये जो समय है
0: वातावरण,
1: यस, अमृत वेला,
0: गुरादा वेला,
1: यस, ब्रह्म मुहूर्त, शब्द कितने सुंदर है, बिकॉज इट्स द हाईएस्ट एनर्जी टाइम ऑफ द डे, हाईएस्ट एनर्जी टाइम। एंड उस समय जो वातावरण में हाईएस्ट एनर्जी है, यहाँ की क्रिएटिविटी हाईएस्ट है उस समय। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, यू नो समटाइम्स पता ही नहीं चल रही है, गेट अप एट फोर ओ क्लॉक, जस्ट एक्सपेरिमेंट दिस एंड सी। टू रीजंस, मेजोरिटी पीपल आर स्लीपिंग एट दैट टाइम। सो जब मेजोरिटी लोग सो रहे होते हैं, मतलब मेजोरिटी जो एनर्जी है, मन की एनर्जी जो आज काफी तनाव और गुस्से वो वाली क्वालिटी की है, वो सब थोड़ी साइलेंट है। ये वो टाइम है। आज लोग 1, 2, 3 बजे तक भी जाग रहे हैं, 4 बजे तक आते आते मेजोरिटी लोग सोने जाते हैं। 4 बजे जो लेट सोते हैं वो भी अभी सोए हैं, तो थोड़ा जल्दी सो के 5-6 बजे उठते हैं वो भी सोए हैं। 4 o'clock इज द टाइम व्हेन मेजोरिटी पीपल आर स्लीपिंग, बोथ द साइड्स आर स्लीपिंग। उस टाइम आप उठ जाइए, फ्रेश होकर आप साइलेंस में बैठ जाइए, कुछ नहीं, इवन इफ यू आर नॉट प्रेइंग, नॉट मेडिटेटिंग, नथिंग, just sit and start thinking about the solution, you will get it. Kyunki wo highest energy time hai, highest energy even of you, jo intuition hum kehte, intuition ko activate karna hai. Intuition tab activate hogi jab upar ki layer of thoughts silent hongi na, meri sara din ki baatein, problems ki baatein, gussa, ye silent hoga. To jo intuition hai ki andar wala jo mera tutor baitha hai, वो अंदर वाला टीचर जिससे मुझे सोल्यूशन चाहिए, वो उस टाइम इजी हो जाता है, क्योंकि मेरा भी कॉन्शियस माइंड साइलेंट है, आसपास भी वातावरण में कॉन्शियस माइंड साइलेंट है, प्रकृति हाईएस्ट एनर्जी पर है। ये समय पर हम जब उठे, हमारा माइंड हाई एनर्जी पर है। अब ये समय पर हम जो पढ़ें भी, अगर स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट टाइम टू स्टडी 4 to 7, बिफोर गोइंग टू स्कूल, बिफोर गोइंग टू कॉलेज। इफ यू स्टडी, मेहनत कम, रिजल्ट कई गुना ज्यादा मिलने वाला है, बिकॉज इट विल जस्ट गो इन लाइक दिस।
0: कल सुबह 4 बजे में उठकर क्या ये कर सकता हूँ कि मैं अपने आप के साथ बैठ कर ये सोच सकता हूँ कि मैं सोच कैसे कम करूँ,
1: yes?
0: अच्छी सोच कैसे लाऊं, और अवेयरनेस कैसे रहे कि मैं क्या सोच रहा हूँ।
1: आप 4 बजे ये करें, सी अगेन, बिकॉज इट्स अ वेरी फर्टाइल टाइम, फर्टाइल लैंड जब होती है, समय अच्छा होता है, मौसम अच्छा होता है, ऐसे समय पे बीज डाल देना चाहिए। जब अभी कैसे है, ये टाइम पे कॉन्शियस माइंड अवेक है, तो जो बीज हम डालते हैं वो अंदर नहीं जाता है। सी, एक है कॉन्शियस माइंड, मतलब रोज की थॉट्स, ऊपर की लेयर, एक है सब कॉन्शियस माइंड, मतलब डीप लेयर ऑफ थॉट्स। अब हम जो थॉट क्रिएट करते हैं ना, मुझे ये करना है, मुझे करना है, ये ऊपर जैसे धरती पे बस ऊपर आती है और बीज खत्म हो जाता है, नीचे नहीं जाती है, उसको नीचे जाना है, क्योंकि वो, हाँ, नीचे जाने के लिए जो ऊपर की मिट्टी है उसको हटाना पड़ता है। तो आप सुबह 4 बजे उठकर ये नहीं सोचे कि ये मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, आपको जो करना है सारा दिन, सपोज यू वॉन्ट टू से टूडे होल डे आई विल बी वेरी पीसफुल, instead of don't get up in the morning and think why I get angry, I should not get angry, वो बीज चला जाएगा अंदर, जो सोचेंगे वो बीज अंदर चला,
0: हाँ
1: मेरे से होता ही नहीं, मैं कितना ट्राई करता हूँ, ये कितना, ऐसा नहीं। क्रिएट वन पावरफुल बीज, एक श्रेष्ठ बीज लेना है, आई एम अ पीसफुल सोल,
0: आई विल ट्राई दिस टुमारो मॉर्निंग एंड कम बैक टू यू अगेन, आई एम अ पीसफुल सोल। थैंक यू सिस्टर,
1: थैंक यू,
0: ओम शांति।
2: The soul is always creating thoughts. Whether a soul leaves the body, or a soul is in the womb of the mother, or if a person is in coma, the soul still creates thoughts and also receives our thoughts, but cannot express. When a soul leaves the body, the family left behind should create thoughts of love, not pain. Thoughts such as, "We cannot live without you. How could you leave us?" These thoughts will only cause pain to that soul. When a soul is in the womb, create thoughts of love and happiness. Thoughts such as, "Will it be a boy or a girl? Do we have the resources to look after the baby?" These thoughts of anxiety are not welcoming energy. The information we take in is the most powerful influence on the thoughts we create. Early morning newspaper has a deep impact. Begin the day with 15 minutes of powerful, positive information.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर स्वागत है आप सबका। कितना कुछ हम जान गए हैं और कितनी आसानी से उसे अगर हम अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं तो जिंदगी आसान हो गई है। पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि जो कार्मिक पूरा का पूरा एक सिनेरियो है, जो कार्मिक फिलॉसफी की हम बात करते आ रहे हैं, एक बात बहुत क्लियर हुई थी कि कितने जन्म कितने ही लिबास हम बदलते आ रहे हैं, लेकिन जो संस्कार जो हम कर्म करते आ रहे हैं वो साथ साथ उसकी याद उसका इम्प्रेशन हमारे साथ साथ चलता आ रहा है, क्योंकि हम वो सोल हैं। और आगे अगर हम देखें तो एक और बात बहुत क्लैरिफाई हुई थी कि मैं अगर आज इंसान या मनुष्य की योनि में हूँ तो मैं मनुष्य की योनि में ही रहूंगा या रहूंगी, और अगर मैं पशु की योनि में हूँ तो वो योनि ही चलती रहती है। कोई भी इंसान पशु योनि से इंसान की योनि से पशु योनि में नहीं जाता और कोई भी पशु योनि से इंसान की योनि में नहीं आ सकता। तो ये एक जो हमें भय था वो खत्म हुआ। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस पूरी फिलॉसफी को कुछ और गहरे में उतर कर जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब लगता है कि शायद हम तैयार हैं। और हर बार की तरह हमारे से बात करने के लिए, हमें इस पूरी फिलॉसफी के बारे में समझाने के लिए हमारे साथ है सिस्टर शिवानी ब्रह्मा कुमारी। सिस्टर शिवानी ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, क्या वो जो जन्म मैं गुजार के आई हूँ, क्या उसमें आज की मेरी जो प्रॉब्लम है वो छुपी हुई हो सकती है?
1: एवरी टाइम, हमेशा ही होगी, क्योंकि जब हमारा एक एपिसोड फिनिश होता है या जहां से हम अपनी नेक्स्ट लाइफ शुरू करते हैं, यू नो, आत्मा, लेट्स इमेजिन अभी मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, अभी जब मेरा समय आएगा कि जिन आत्माओं के साथ मैं अभी कनेक्शन में हूँ उनके साथ लेन देन अभी के लिए पूरा हुआ, उस क्षण आत्मा ये शरीर छोड़ देगी और ये शरीर छोड़कर ये वहां जाएगी जहां इसके लिए दूसरा शरीर ऑलरेडी तैयार हो रहा है। सो इन द वूम्ब ऑफ द मदर द बॉडी इज गेटिंग डेवलप्ड, यू नो, माँ के गर्भ में, तो अप्रोक्सीमेटली इन द फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द सोल एंटर्स, एंड तब हम कहते हैं कि वो हलचल शुरू होती है एंड पूरी बॉडी डेवलप होना शुरू होती है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड द कर्म ऑफ द सोल जो एंटर हुई है उस अनुसार शरीर भी डिवेलप होता है। आज आप देखो, अगर हम अपने कर्मों को एक लाइफ से रिस्ट्रिक्ट करें तो वी विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन आर बर्थ। यू नो, कोई बच्चा एक बहुत ही अच्छे परिवार में जन्म लेता है जहां सब कुछ है, कोई ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां भोजन भी नहीं मिल रहा, कोई ऐसे परिवार में जन्म लेता है कि उसके जन्मते ही उसके माता पिता अलग हो रहे हैं, सो ही इज बीइंग बोर्न इनटू अ ब्रोकन फैमिली, कोई जन्मते ही कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, उसने अभी तो कोई कर्म ही नहीं किया, अभी तो वो आत्मा माँ के ही गर्भ में है तो भी उसका शरीर वहीं से ठीक से फॉर्म्ड नहीं है। अब उसकी पूरी जीवन थोड़ी सी बाकियों से डिफरेंट तो रहेगी, तो मैं बाकियों से डिफरेंट क्यों, ये किसने डिसाइड किया, ये सारे मैं कहाँ पैदा होंगी, किस एनवायरमेंट में, किस कल्चर में, किस सेट ऑफ पेरेंट्स के साथ और किस फिजिकल शरीर को लेकर। किसी का शरीर बहुत हेल्दी है, किसी का बचपन से ही बीमार है, किसी के लिए कोई डिसेबिलिटी है तो कोई मेंटली रिटार्डेड है, उसकी पूरी लाइफ क्या है। और जब आप देखो कि जब एक घर में बच्चा पैदा होता है ऐसे, तो वो अकाउंट सिर्फ उस आत्मा के लिए नहीं है जो उस घर में आई है, लेकिन उन सभी आत्माओं के लिए है। तो मैं जो बच्चा, मैं आत्मा जो उधर जन्म ली, मेरा आपके साथ उस तरह का कोई अकाउंट है, तो मैं उस अकाउंट को, वो ये बहुत डीप लोन है जो आपने मेरे से लिया हुआ था, अब पूरी जीवन आपको मुझे संभालना पड़ेगा, आई विल नेवर बी इंडिपेंडेंट, तो आपको मेरी जिम्मेवारी पूरी जीवन लेनी है, ये आपका अकाउंट है। पूरी लाइफ ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, सारे बच्चे तो ठीक है, सबके बच्चे तो ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों, तो वो दर्द को बढ़ा देता है, वो अकाउंट को और बढ़ा देता है। एक्सेप्ट कर ले, है हमारा उस आत्मा के साथ कोई अकाउंट, अब उसको इतना स्नेह दे, इतना प्यार दे, इतने स्नेह से उसकी परवरिश करे, दर्द से नहीं, नेगेटिव एनर्जी उस घर में ना आए, जो भी है सिचुएशन एक्सेप्ट करे, पॉजिटिव एनर्जी उस आत्मा को भी दे, तो वो आत्मा भले उस रियलाइजेशन में शायद नहीं है अभी, लेकिन उसके भी अकाउंट फिर इजिली चुक तो हो जाए। और ये इसीलिए हमें समझ में आता है कि पास्ट में कुछ मैंने जो ऐसा किया दैट डिसाइड्स कि मेरा जन्म कहाँ होगा। अगर वो एक ही लाइफ टाइम में रिस्ट्रिक्टेड होता तो सभी का नेक्स्ट बर्थ if it has to start fresh with a fresh account, then from birth at least everything should be perfect. फिर उस जन्म में मैं जो कुछ भी करूं उसके हिसाब से मेरे साथ अच्छा और बुरा होता जाएगा. और आज साइंस भी इसमें बहुत रिसर्च कर रहा है, बहुत सारी रिसर्च हो रही है रीबर्थ पर. क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है दूसरे, तो पहले तो उसको अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृति है. और एक्चुअली गर्भ में जो समय आत्मा रहती है, तो बहुत सजा तो उसी में भोग लेती है, क्योंकि उसको सारा कुछ

0: याद होता है, उस समय जो कहते हैं ना अपनी पूरी जीवन की रील आपके सामने आती है कि मैंने क्या क्या पिछले जन्म में किया. क्योंकि व्हेन द सोल इज नॉट अटैच्ड टू द न्यू बॉडी एंड इट इज डिटैच्ड फ्रॉम द प्रीवियस बॉडी, तो प्योर इट्स सोल कॉन्शियस स्टेज. और सोल कॉन्शियस में हमें अपना सही और गलत बिल्कुल क्लियर दिखता है,
1: कोई कन्फ्यूज जी रहे हैं
0: बिल्कुल. तो तब सबसे ज्यादा भोगना उसमें होती है, और तब आत्मा अपने आप से बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करती है कि इस जीवन में आकर अब मैं ये सारी गलतियां.
1: अच्छा, एंड दिस ऑल इज हैपनिंग व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम.
0: चाइल्ड मीन्स व्हाट, द सोल ना, इट्स इन अ डिफरेंट कॉस्ट्यूम, दैट्स ऑल. लेकिन जब बाहर आती है, अब छोटा बच्चा है वो भी पास्ट से ही कनेक्टेड है, वो अपने बहुत नजदीक के लोगों से उसका बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है. इसलिए हम छोटे बच्चे को देखते हैं, कभी हंसता है कभी रोता है, ऑल पास्ट मेमोरीज जो वो रिवाइंड कर रहा है. बाय द टाइम द चाइल्ड इज 2-3 ईयर्स ओल्ड, उसका प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन लेयर वो सब इम्प्रेशन के रूप में कोड होता जा रहा है, पास्ट इज मर्ज्ड. तो जब तक वो बोलने की एज में आता है उसको पूर्व जन्म की बातें सारी भूल जाती है, एंड विच इज वेरी गुड, लॉ ऑफ नेचर इज लाइक दिस. लेकिन कई बच्चों में 3-4-5 साल की एज तक भी वो बातें याद रहती हैं, तो वो फिर सारा रिकलेक्ट कर देते हैं और सारा बता देते हैं कि हम कहाँ पे थे, क्या थे. एंड अगर आप वहां जाकर वेरीफाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट ऑलवेज टर्न्स आउट टू बी ट्रू. एंड इसके ऊपर पूरी रिसर्च है अमेरिका में, तो बहुत सारी स्टडी इस पे हो रही है. डॉक्टर रेमंड मूढ़ी करके एक डॉक्टर है और पूरी उनकी टीम ऑफ डॉक्टर्स है, और उस टीम में एक बहन डॉक्टर है जो ब्रह्मा कुमारीज के साथ भी एसोसिएटेड है, और वो हमेशा हमें आकर ये पूरी स्टडी सुनाती है. तो दे हैव फिनिश्ड रिसर्च ऑन ओवर 1,90,000 केसेस अभी तक ऑफ लाइफ आफ्टर, यू नो, डेथ के बाद जो नेक्स्ट लाइफ है. और उसके ऊपर एक बुक भी बहुत अच्छी जो बनी लिखी है उन्होंने, इट्स कॉल्ड लाइफ आफ्टर लाइफ, डॉक्टर रेमंड मूढ़ी की, जिसमें उन्होंने सारे ये केस स्टडीज अपनी बताई है. और हर केस में मनुष्य पिछले जीवन में मनुष्य ही था, किसी भी एक भी केस में. तो इतने बड़ी प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं हो सकता है, एक भी केस में वो पशु नहीं था पिछले जीवन में. और दूसरी जो एक टेक्निक जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस की थी, वो था हिप्नोटिक रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन. क्योंकि बहुत सारी, क्या इनफैक्ट हमारी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, दे आर कनेक्टेड विद माई प्रीवियस इंटरेक्शंस विद पीपल. तो उस पर हमें डॉक्टर पीछे लेकर जाता है जो मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि ये एक टेप है, इसको रिवाइंड करना है. आप हिप्नोटाइज करना मतलब माइंड को साइलेंट करना, और जो डीप पीछे के रूटेड इम्प्रेशंस हैं उनको आगे ले आना, लेयर्स को आगे ले आना. तो अगर वो हमें इस एज के अंदर, इस शरीर के लाइफ टाइम में रिवाइंड कर सकते हैं, सो लेट्स से 30 ईयर्स और 40 ईयर्स, तो वो हमें 50 ईयर्स भी रिवाइंड कर सकते हैं, वो हमें 200 ईयर्स भी रिवाइंड कर सकते हैं. इट्स ओनली अबाउट कितना रिवाइंड करना है. तो ये एक विधि है, एक इलाज करने का तरीका है. पर इससे ब्यूटीफुल बात ये पता चलती है कि जैसे ही आत्मा को पता चल जाता है, क्यों ये समझना बहुत जरूरी है, जैसे ही आत्मा को पता चलता है कि हाँ मैं आत्मा हूं, मैंने वो रोल प्ले किया था, मैं अभी आई हूं, इस आत्मा के साथ मेरा ये थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ था, यू नो, द होल कन्फ्यूजन इज क्लियर्ड कि अब मुझे ऐसा क्यों हो रहा है.
1: Why this fear? Yes. Why the problem in my relationship?
0: She's understood that. तो जैसे ही वो समझ में आ जाता है तो फियर खत्म हो जाता है. एंड दैट्स वॉट, अब हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की जरूरत नहीं है टू अंडरस्टैंड दिस. वी अंडरस्टैंड कि मेरे साथ जो भी हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ सम प्रीवियस इंटरेक्शन. जैसे ही वो समझ में आ जाए तो आई शुड बी एट पीस, क्योंकि क्वेश्चन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं, इट वॉज माई इंटरेक्शन, मैंने ये एनर्जी दी थी, अब मैं इसको चेंज कर सकती हूँ. तो जैसे ही नॉलेज मिली, अब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी लाखों केसेस हो चुके हैं, एंड इन नन ऑफ द केसेस वॉज द ह्यूमन बीइंग एन एनिमल. मनुष्य हमेशा मनुष्य ही था. तो ये बात तो डेफिनेटली, मतलब जो शिव बाबा ने आकर बताया, आज विज्ञान भी उस बात को बता रहे हैं कि मनुष्य हर योनि में, सिर्फ पास्ट बर्थ नहीं, उसे कितने भी बर्थ पीछे ले जाए वो मनुष्य ही था.
1: अच्छा, लेकिन यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं सिस्टर शिवानी, कि आपने कहा कि जैसे ही रियलाइजेशन हुआ, जैसे ही हम सोल कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुंच

0: इम्पोर्टेंट चीज उसके लिए फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेंस, ये फर्स्ट स्टेप हो गया. नॉलेज से क्लैरिटी आ गई, जिम्मेवार मैं हूं, मैंने किया था, अब जो मेरे साथ हो रहा है मेरे कारण है, मैंने किया था इसलिए मैं ही इसको अब ठीक कर सकती हूँ, कोई और मेरे कार्मिक अकाउंट्स मेरे लिए सेटल नहीं कर सकता है. वो हर आत्मा अपने कार्मिक अकाउंट सेटल कर रही है. मे बी समबडी कैन गाइड यू, मे बी समबडी कैन हेल्प यू,
1: करना मुझे,
0: लेकिन वो मेरे हैं और मुझे ही उसको चुक तो करना पड़ेगा. तो पहली चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेंस, फिर फर्स्ट स्टेज अवेकनिंग अवेयरनेस सोल कॉन्शियसनेस. क्यों? क्योंकि अभी तक बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार बहुत सारे थे. अब हमें दो चीज करनी है, पास्ट वाले संस्कार को काटना है. तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि नाउ अवेकन टू रियलिटी कि मैं कौन हूं, एंड स्टार्ट क्रिएटिंग द न्यू सेट ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, ताकि पुरानी जो थिंकिंग प्रोसेस है, नहीं तो वो ही थिंकिंग प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है ना, एक स्पाइरल बनता जा रहा है, मैं नीचे की तरफ गिरती जा रही हूँ. तो पहले तो इस स्पाइरल को यहां रोकना पड़ेगा. यू नो टू थिंग्स वी आर डूइंग, कि एक तो है पास्ट को फिनिश करना है, लेकिन अब है कि और भी तो नहीं करने, और नया तो नहीं क्रिएट करना. तो पहली बात जब हम सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं तो वी अवेकन टू अ न्यू रियालिटी. आई डू एवरी कर्म नाउ विद दिस रियालिटी कि मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, ये मेरी इंट्रेंसिक क्वालिटी है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मुझे कोई भय नहीं है. तो भय क्रोध ईर्ष्या ये सब धीरे धीरे मेरे थॉट एक्शन के प्रोसेस से खत्म होता जाएगा. अब ये सब करते हुए हो सकता है मैं कभी कभी फिर सो जाती हूँ, यू नो, फिर उसको मुझे अपने आप को फिर से जगाना पड़ता है. और इसीलिए जो हम कहते हैं ना सेंटर्स हैं बहुत सारे, क्योंकि जब हम इस जर्नी पे अकेले चलते हैं हमें आवश्यकता पड़ जाती है कभी कभी कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो जग रहे हैं थोड़े से. अगर हम उस वायुमंडल में रहते हैं जो सारे ही सोए हुए हैं तो यू नो वी टेंड टू फॉल ऑफ टू स्लीप. सो इट्स गुड वंस इन अ व्हाइल टू गो टू अ प्लेस लाइक दैट जहां एवरी वन इज वेकिंग अप. तो आप उनके अनुभव सुनते हैं, यू लिसन अबाउट देयर जर्नी, तो इट गिव्स यू अ लिटिल इंस्पिरेशन. तो अगर आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे हैं, यू नो, यू टेंड टू मूव फॉरवर्ड. तो दैट्स व्हाई वी यू नो हैव दीज सेंटर्स वेयर वी मीट रेगुलरली एंड हेल्प्स अस टू ऑल बी अवेक एंड ऑन द जर्नी टुगेदर. तो एक है कंटिन्यूसली सारा दिन में कॉन्शियसली अपने थिंकिंग को अब चेंज करना. समझ में आ गया ये नेगेटिव कर्म है, ये पॉजिटिव कर्म है. तो अब बार बार अभ्यास से अपने आप को याद दिलाइए कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा से बात कर रही हूँ. न्यू थॉट, राइट? पहले सी हाउ इज द स्टैक कैसे बना. फर्स्ट लेयर्स यही थी, क्योंकि आत्मा जब सबसे पहले आई थी, मैं शांत आत्मा हूं, मैं पवित्र, ये सब संस्कार थे. उसके बाद पुराने यू नो ऊपर से संस्कार सारे बन गए, क्रोध ईर्ष्या द्वेष ये सब. अब जब हम फिर से वो थॉट क्रिएट करेंगे तो वो ऑलरेडी है, यू नो वी आर नॉट क्रिएटिंग अ न्यू संस्कार. सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्टैक में उसको नीचे से अब खींच कर ला रहे हैं, यू नो. सो वी आर इमर्जिंग एन एग्जिस्टिंग संस्कार, उसको लेकिन अब री इन्फोर्स करना है. तो उस थॉट को क्रिएट करो और उसको एक्शन में जरूर लेकर आइए. अगर बुद्धि ने फिर से ये पुराने वाली थॉट को आगे जाने दिया, फिर एक्शन में क्रोध आया, अब उस एक्शन का फिर से, तो इसलिए सिर्फ थॉट लेवल तक नहीं वर्क करेगा. इंटेलेक्ट को स्ट्रांग बनाकर ब्रिंग इट इनटू एक्शन कि अब आपके हर कर्म में वो प्योरिटी वो शांति दिख. योर एक्शन शुड नॉट बी द ओल्ड एंड ऑर्डिनरी, क्योंकि हर एक्शन का भी अब एक इम्प्रेशन बन रहा है. तो ये एक प्रोसेस हो गया, अवेकन थॉट्स एंड ब्रिंग देम इनटू एक्शन. दूसरा, फेस टू फेस जब हम उन लोगों से मिलते हैं जिनके साथ हमारे वो कार्मिक अकाउंट्स है, तो उस टाइम भी बहुत सारे सेटल होते हैं. यू नो, बहुत लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिनके मिलने से या जिनके इंटरेक्शन में आने से हमें तकलीफ होने लगती है, दर्द है, दुख है, क्रोध है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स. एंड वी नाउ इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम, लुक हियर, क्या रीजन है, इनकी वजह से मुझे क्या दर्द हो रहा है, मेरी क्या अटैचमेंट है इनके साथ या किस इमेज के साथ मेरी अटैचमेंट है, मुझे अब इस अकाउंट को फिनिश करना है, व्हाट डू आई हैव टू डू, लेट गो ऑफ दैट अटैचमेंट, ऑफ दैट अटैचमेंट. क्या मुझे उस आत्मा से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या चाहिए मुझे।

0: उससे, जब अब मैं ही प्रेम स्वरूप हूं, मुझे क्या किसी से चाहिए? व्हाट एम आई क्लिंगिंग ऑन टू दिस पर्सन? आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम हिम. टॉक टू योरसेल्फ कि इफ आई स्टिल आस्क द अदर सोल फॉर इट, तो मेरा वो वाला प्रेम वाला संस्कार री इन्फोर्स हो रहा है. मुझे अब सेटल करना है, लेट गो. किसी ने आकर मुझे इंसल्ट कर दिया, समझ में आ गया, रिटर्न है. अब अगर उस कार्मिक अकाउंट को सेटल करना है, मैंने ही किया था कुछ, मेरे पास ही फिर से आया है, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं. बट इफ आई वॉन्ट टू फॉरगिव, वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट फॉरगिविंग द अदर पर्सन, क्योंकि उसने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया था जिसकी वजह से ये रिटर्न मुझे आ रहा है. आप अगर उसको लेट गो करते हैं, आप उसे नहीं फॉरगिव कर रहे हैं,
1: खुद को,
0: आप अपने ऊपर रहम कर रहे हैं,
1: क्योंकि खुद के साथ वो सेटलमेंट कर रहे हैं.
0: यस, क्योंकि अब अगर आप फिर से वो थॉट्स क्रिएट करते हैं, क्यों ऐसा बोला मुझे, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसको तो मैं देख लूंगा, व्हाट एम आई डूइंग
1: अगेन,
0: आई एम क्रिएटिंग अगेन, थॉट डिसीजन एक्शन इम्प्रेशन, थॉट एक्शन इम्प्रेशन, गोज ऑन ऑन. नाउ आई वॉन्ट टू सेटल दिस अकाउंट विद दिस सोल, से व्हाट यू वॉन्ट, आई लेट यू गो. I had created it, but now no more. I had created it, but now no more. I'm not creating anymore. Future secure karna hai, present secure karne se. So what do? Stop creating it now. And say, okay. I forgive myself, ki maine ye kiya tha, lekin ab main apne upar rahim karungi. I'm going to forgive and forget. To jab hum kisi ko जाने देते हैं ऐसे, हम बहुत ज्यादा उनको टैंगल नहीं करते हैं, तो वी आर फॉरगिविंग आवरसेल्व्स एंड वी आर सेटलिंग एन अकाउंट. तो ये हम अगर हम उस टाइम सेटल नहीं करते हैं, तो हम और अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम और एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो स्टैक जो है वो और बढ़ता जाएगा. तो बहुत बड़ी हमारी अकाउंट्स की भोगना एक दूसरे के इंटरेक्शन में आने से हो जाती है, लेकिन उस समय फंडामेंटली हमारे पास चॉइस है, हम और भोगना चाहते हैं या इसको यहीं के यहीं खत्म करना चाहते हैं. तो कभी भी अब कोई आपको कुछ कहता है, आस्क योर सेल्फ, डू आई वॉन्ट टू सफर मोर, बिकॉज इट्स माई चॉइस, माई क्रिएशन. आई वॉन्ट टू सफर मोर, गो ऑन सफरिंग. आई वॉन्ट टू फिनिश इट, इन योर हैंड, स्टॉप. सो दैट्स द सेकेंड वे दैट वी सेटल ऑल आर अकाउंट्स. एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वे, एंड लेट्स से सबसे ईजी तरीका बहुत सारे अकाउंट सेटल करने का, जब आत्मा का उस परमात्मा से मिलन होता है. हमने उस दिन भी देखा कि वो ज्ञान सूर्य है, हीलिंग पावर, उसकी लाइट, उसकी वार्मथ, इतनी एनर्जी आत्मा पर पड़ती है, तो बहुत सारे स्कार्स जो आत्मा पर वूंड्स बने हुए हैं, वो सारे हील हो जाते हैं. कैसे? क्योंकि उसकी इतनी शक्ति है जो मुझे मिलती है. मेरे बहुत सारे संस्कार हैं क्रोध के, बहुत सारा ऐसे स्टैक जमा हुआ हुआ है, लेकिन उस परमात्मा से इतनी पावरफुल करंट आती है स्नेह की, मुझे चाहिए था वो जैसे ही आती है, इट लाइक जस्ट बर्न्स ऑल दीज संस्कार्स अवे एंड माय न्यू सेट ऑफ संस्कार्स विल गेट क्रिएटेड बिकॉज आई गेट फिल्ड विद दैट लव. आई वाज फिल्ड विद एंगर. जैसे एक कटोरा है, इसको हमने किसी गंदी चीज से भरा हुआ है, अब इसको हम खाली तो कर नहीं सकते, लेकिन हमें इसको चेंज करना है, हम इसको बहुत शुद्ध दूध से भरना है, तो हम कैसे करेंगे?
1: फिल इट, डालते जाओ.
0: आप इस पे डालते जाओ, एक दिन ऐसा आ जाएगा जो इसके अंदर से जो सारा गंध है वो बाहर निकल जाएगा और ये कटोरा दूध से भर जाएगा. सेम हियर, स्टैक है, बहुत सारे इम्प्योर संस्कार है, लेकिन वहां बहुत प्योरिटी है. तो जब वो प्योर एनर्जी मुझ आत्मा पर पड़ती जाती है, आई हैव दैट कनेक्शन, डायरेक्ट किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, धीरे धीरे इट विल जस्ट फिल दैट एंड वो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो होता जाएगा. तो मेडिटेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास्ट जन्मों के जो विकर्म है उनको चुकतू करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि
1: वो चुकता तो हमें करने ही है.
0: हाँ,
1: वो लॉ ऑफ जो कर्म है वो तो ये कहता है कि आपको भुगतना तो पड़ेगा,
0: राइट,
1: लेकिन इट बिकम्स इजियर
0: बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एट द संस्कार लेवल इट चेंजेस. अब बाकी वो सिचुएशन तो आपके सामने आएगी ही आएगी. लाइक जैसे अगर कोई कहे, अच्छा आप इतना कुछ कर रहे हैं, फिर आप बीमार क्यों हो रहे हैं? बीमार तो क्यों नहीं होंगे, हमने तो बहुत सारे पाप कर्म किए अपने पिछले जन्म में, उसकी भोगना तो मिलेगी. प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. नोबडी इज सेइंग कि आप ये करोगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. बट प्रॉब्लम क्या है? इट्स जस्ट अ सिचुएशन विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड. पहले क्या हो रहा था कि जब शरीर को तकलीफ होती थी तो बहुत दुखी हो जाते थे अंदर से, मेरे साथ क्यों ऐसा, क्यों मैं बहुत तकलीफ में हूं. वो भोगना थी, शरीर नहीं भोगता है, आत्मा भोगती है. अब मेडिटेशन से क्या हुआ कि बहुत ताकत भर गई है आत्मा में, तो सिचुएशन आती है और सिचुएशन चली जाती है,
1: स्ट्रांग हो जाती है,
0: बहुत स्ट्रांग हो जाती है. इट्स लाइक जिसको हम कहते हैं मक्खन से बाल निकल जाता है सो इजिली. बड़ी बड़ी सिचुएशंस, आई कैन टेल यू इतनी बड़ी सिचुएशंस आई हुई है माय पर्सनल लाइफ आल्सो, बिग सिचुएशंस जो इफ प्रीवियसली अगर आती तो मे बी आई वुड बी अ मेस, बट नाउ दे जस्ट कम एंड दे गो. तो भोगना की फीलिंग नहीं आएगी, तो हिसाब किताब आएगा तो सही जो हमने किया, लेकिन बहुत हल्के में चुक्त हो जाएगा. तो तीन तरह से हमने उसको चुक्त किया. एक आत्मिक कॉन्शियसनेस से होने से वो संस्कार्स को इमर्ज किया, तो उनको हम स्टैक पर ऊपर लाते गए, कर्म में उनको लाते गए, तो वही इम्प्रेशन पॉजिटिव वाला बनता गया. तो धीरे धीरे प्योर वाले संस्कार स्टैक में फिर से ऊपर आते गए हैं. दूसरा, वो जो नेगेटिव संस्कार का साइकिल बन रहा था वो बनना बंद हो जाता है. और तीसरा प्रोसेस, परमात्मा जो वो सर्वशक्तिवान है उससे जब कनेक्शन जोड़ते हैं तो बहुत सारे जो ये पुराने संस्कार बने हुए हैं ये बर्न हो जाते हैं. जिसको हम कहते हैं कि भगवान को याद करने से हमारे पाप वो क्षमा नहीं होते हैं, लेकिन वो संस्कार एक तो परिवर्तन हो जाते हैं और उस हिसाब किताब को फेस करने की ताकत मिल जाती है. वो रिटर्न फिर भी आएगा, लेकिन आपको लगेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं. जिसको हम कहेंगे पहाड़ को भी राई बना दिया, और पहले क्या था, राई को भी पहाड़ बना देते.
1: वो एक परिस्थिति बन के रह जाती है, जिंदगी नहीं बन जाती,
0: कुछ भी नहीं है
1: कि मेरी जिंदगी रुक गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरे लिए इतना बड़ा क्राइसिस आ गया.
0: बेसिकली उसका साइन ये होगा कि मेंटल स्टेबिलिटी नहीं डिस्टर्ब होगी. चाहे आपके घर में किसी फैमिली मेंबर को कुछ हो जाए, कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी आ जाए, ये सारे हिसाब किताब आ सकते हैं, लेकिन माइंड, आत्मा वो स्टेबल रहेगी. तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके हिसाब किताब चुक तो हो रहे हैं. परमात्मा की याद से हम बहुत सारे विकर्म, और इसीलिए कहा जाता है चुक तो करना है, या तो भोग कर चुक तो करो या योग से चुक तो करो. तो योग से चुक तो करेंगे तो तकलीफ कम होती है.
1: तो इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, अगर मैं याद करूं तो हमने जब ये यात्रा शुरू की थी आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आपके लिए खुशी कब होगी. तो मेरा तो जवाब जो भी था सर, लेकिन आपसे आपने जब कहा था कि मेरे लिए खुशी वो लम्हा है जब किसी भी सिचुएशन में मेरी इनर स्टेबिलिटी कायम रहेगी. आज वही बात सामने
0: आती है,
1: कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी कैसी भी परिस्थिति हो, अगर मैं सोल कॉन्शियसनेस के पे जी रही हूँ, अगर मैं अवेयरनेस में जी रही हूँ, अगर मैं ये जानते हुए जी रही हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ, लेकिन मेरे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक वो शक्ति है, वो एक पिता है, परम पिता है मेरे साथ, जिनकी एनर्जी के साथ मैं हर सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ, तो शायद
0: वी रिमेन स्टेबल.
1: एक्चुअली मैं भी पहुंच सकती हूँ. हम सभी, जितने भी परिवार हमारा बन चुका है, जो इतने सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हम सब भी उस सिचुएशन तक पहुंच सकते हैं.
0: और इसके लिए एक ही चीज करनी है, सारा दिन अभ्यास करते रहे वही आत्मिक स्वरूप का, एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखने का, और शिव बाबा को साथ रखें हर समय. तो क्या होगा, जब वो परिस्थिति भी आएगी तो वो परमात्म याद इतनी साथ होगी, एंड वो सर्वशक्तिवान, यू विल फील ही इज लाइक विद यू देयर, एंड यू विल जस्ट क्रॉस द सिचुएशन.
1: नथिंग कैन हैपन टू मी,
0: एब्सोल्युटली.
1: लेकिन आया है, ठीक है, निकल जाएगा. ये हम कहते तो हैं, लेकिन जब उसे जी रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है.
0: दिस बिकम्स प्रैक्टिकल. हम सब के अनुभव है कि दिस बिकम्स प्रैक्टिकल, बिकॉज नाउ यू आर नॉट कनेक्टेड टू अ कॉन्सेप्ट. पहले हमारे लिए वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें परमात्मा एक कॉन्सेप्ट था, एक थॉट था सिर्फ. अब हम उस एंटिटी से जुड़े हैं जो रियली एग्जिस्ट करता है, तो जो वो एंटिटी है तो उनकी पावर्स भी तो फिर हमारे साथ काम करेगी. सो वी कैन रियली मेंटेन दैट स्टेबिलिटी देन, एंड फिर वो चुक तो होता जाएगा.
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर सिस्टर शिवानी. आज का ये जो चर्चा थी, जो बातचीत थी, वो सिर्फ चर्चा या बातचीत ना रह के, इनफैक्ट पूरी हमारी जर्नी जो है वो हर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे है, जिंदगी की बिल्कुल गहरी सच्चाइयों पर खड़ी, हर हर बात को हम खंगालते जा रहे हैं, जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: ओम
1: शांति। परमात्मा से या आत्मा से परमात्मा तक का जो एक सफर है कि मैं कौन हूँ, वो कौन है, और जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, ये जो ड्रामा है, जो हम कहते हैं एक सोप ओपेरा की तरह हर पल जिंदगी रंग बदल रही है, उस सिचुएशंस को, उन जिंदगी की जो सच्चाइयां हैं, उनसे कैसे रूबरू होना है, कैसे जीना है, जीने की कला भी कही जाती है, या सचमुच कोई भी नाम दे दें, अगर हम इन पूरी जो बातें आज हमने की हैं, जो हम करते आ रहे हैं, इन सभी सच्चाइयों के रूबरू अगर जिंदगी जिएंगे तो हर पल आनंद का हो सकता है। अभी भी कोई बात है, कुछ ऐसे सवाल हैं जो जरूर सर उठा रहे होंगे, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। ये सफर अभी यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत सी बातें हैं, बहुत आनंद आ रहा है इस पूरे डिस्कशन में भी, चर्चा में भी, क्योंकि जिंदगी की सच्चाई यही है। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में बहुत सी बातें अभी बाकी है, अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
3: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई, बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। This is my checking for today.
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। अभी सुनते हैं बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम।

0: बच्चों कैसे हो तुम लोग?
1: बहुत अच्छे
2: दीदी।
0: लग रहा है सैंडी की थोड़ी सी तबीयत खराब है यार।
2: हाँ
3: मुझे भी लग रहा।
0: क्या हुआ सैंडी?
2: कुछ नहीं, थोड़ी वीकनेस हो रही है।
0: कभी कभी गर्मियों के दिन में तबीयत खराब हो जाती है।
2: हाँ ये बात तो है।
0: तो रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाओ।
3: ज्यादातर ट्रैवल करने से तबीयत खराब होती है।
0: ट्रैवल करने से तबीयत खराब होती है? ये तो है।
2: और आज मैं ट्रैवल करके आया हूँ इसीलिए।
0: ट्रैवल अगर गर्मियों में किया जाए तो फिर तो बॉडी का सारा पानी सूख जाता है। बहुत सारे पानी की जरूरत होती है और आराम की।
2: हाँ दीदी
0: है ना। अच्छा चलो, आज तुम ट्रैवल करके आए हो तो चलो हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं।
3: ओके
2: ओके।
0: तो तुम लोग की फेवरेट जगह, घूमने की फेवरेट जगह कौन सी है?
3: दिल्ली, मेरी माउंट आबू।
0: माउंट आबू?
3: हाँ।
0: और भुवना?
4: मेरी तो कूर्ग।
0: कूर्ग, ये कहाँ पे है?
4: कर्नाटका।
0: कर्नाटका में? क्या वो आपके घर के पास है?
4: नहीं।
0: आप कूर्ग घूमने कब गए थे?
4: लास्ट समर हॉलीडेज कहीं 2015
0: में। अच्छा, कितने टाइम के लिए और किसके साथ गए थे?
4: मैंने मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया और अंकल के साथ गई।
0: अरे वाह। और वहाँ पे सबसे अच्छा आपको क्या लगा?
4: मुझे वहाँ सबसे अच्छा वो क्लब लगा जहाँ हम रुके थे, क्योंकि वह स्विमिंग पूल इतना अच्छा था कि हम दिन भर वहीं थे। और नेक्स्ट डे हमने एक तलकावेरी, एक प्लेस है जहाँ कावेरी रिवर स्टार्ट होती है, वहाँ गई। वहाँ का फॉग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी मोमेंट थी वो जब हम महसूस करते हैं। वो बहुत कूल था वह जगह, हिल स्टेशन है ना इसलिए।
0: अच्छा, वो एक हिल स्टेशन है।
4: हाँ,
0: इसीलिए वहाँ पे ठंडी होगी।
4: और
0: आपने इतने सारे दिनों में वहाँ पे क्या क्या देखा?
4: कॉफी एस्टेट्स, फिर बहुत सारे टेम्पल्स देखा मैंने, और एक रिवर के पास गई जहाँ हम खेल रहे थे पानी के साथ में और मेरे भैया।
0: अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या बोला?
4: कॉफी एस्टेट।
0: कॉफी स्टेट्स, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा?
4: मैंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रीज और कॉफी प्लांट्स देखी मैंने। कॉफी के पत्ते जैसे निकालते वो स्मेल बहुत अच्छी।
0: क्या आपने वहाँ कॉफी पी?
4: नहीं, वो सीजन नहीं था ना।
0: अच्छा, मतलब सिर्फ कॉफी को बनते हुए देखा और बहुत सारे टेम्पल्स देखे।
4: हाँ।
0: अरे वाह, जगह तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। घूमने का मन कर रहा है ना सैंडी?
2: हाँ दीदी,
3: सुन के तो ऐसा लग रहा है हम भी वहाँ घूमा है।
2: चले।
0: हाँ, यहाँ तो थोड़ी गर्मी हो रही है, ठंडी जगह जाने में तो मजा आता है। और सैंडी, तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है?
2: दिल्ली।
0: दिल्ली? दिल्ली तुम कब गए थे?
2: इसी वेकेशन में।
0: इसी वेकेशन में गए थे। दिल्ली में सबसे अच्छा क्या लगा?
2: लोटस टेम्पल।
0: लोटस टेम्पल? हाँ, लोटस टेम्पल तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। लोटस की शेप का नजर आता है दूर से देख के।
2: हाँ।
0: और बताओ, दिल्ली में कौन कौन सी जगह तुमने देखी?
2: मीनार, फिर इंडिया गेट और अक्षरधाम, कालका मंदिर, बहुत सारी जगह घूम लो हमने।
0: मतलब बहुत सारे मंदिर तुमने घूमे। और उसमें से सबसे फेवरेट जगह
2: लोटस टेम्पल
0: लगी।
2: और कुतुब मीनार।
0: और कुतुब मीनार लगी। हाँ।
3: कुतुब मीनार तो कभी भूल ही नहीं सकता।
2: नहीं।
0: अच्छा, कुछ स्पेशल अलग रहा है कुतुब मीनार के साथ?
2: हाँ।
0: क्या
2: वहाँ पे काफी एंजॉय किया मैंने और पंकज ने।
3: वहाँ हमें एक नए फ्रेंड भी मिले जो फॉरेन के थे।
0: अच्छा, वहाँ आप लोग नए फ्रेंड्स मिले इसीलिए वो जगह स्पेशल हो गए। और दिल्ली में बस इतनी जगह गए? रेड फोर्ट नहीं गए?
3: रेड फोर्ट
2: गए थे ना, फिर क्लब भी गए, फिर मॉल भी गए, बहुत सारे
0: मॉल गए।
2: हाँ, वर्ल्ड स्क्वायर, एमएक्स मॉल, बहुत सारे मॉल घूमे।
0: दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं।
2: हाँ।
0: और मेट्रो में ट्रैवल किया कि नहीं?
2: खूब
3: मेट्रो में तो
2: पूरे दिन मेट्रो में, मेट्रो कार्ड बनवाया, पूरे दिन मेट्रो में घूमे।
0: मेट्रो में घूमने में मजा आता था
2: बहुत। पंकज तो बोले यही रुक जाते,
3: हमें तो ऐसा लगता था कि मेट्रो में ही अपना घर बना ले।
0: इतना अच्छा लगता था मेट्रो में।
3: हाँ।
0: और इंडिया गेट कैसा लगा?
2: इंडिया गेट तो अच्छा ही था, वहाँ से तो अपन थोड़ा घूम भी गए थे ना।
3: हम वहाँ खो गए थे।
0: खो गए थे।
2: हाँ।
0: अलग हो गए थे दोनों?
2: नहीं, साथ में थे।
3: रास्ता खो गए थे।
0: अच्छा, वहाँ से मेट्रो स्टेशन का रास्ता खो गए थे?
3: नहीं, टैक्सी स्टैंड का।
0: टैक्सी स्टैंड का। और अमर जवान ज्योति देखी कि नहीं?
3: देखी, बहुत अच्छी थी।
0: अच्छा लगा?
3: हाँ, वो ज्योति हमेशा जलती रहती नहीं है।
2: और वहाँ पे इंडिया गेट में खास बात और देखी, उस पे जो जो लोग शहीद हुए हैं सबका नाम लिखा हुआ उसके ऊपर।
0: और वो ज्योति हमेशा जलती रहती। हाँ। है
3: यदि वो ज्योति क्यों जलती है?
0: क्योंकि वो उन शहीदों की याद में जलाई जाती है और उनको हम हमेशा सल्यूट करते हैं।
3: हाँ।
0: हमेशा उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो जवानों के जो शहीद हुए उनके लिए वो ज्योति हम हमेशा जलाए रखते हैं। वो एक सिंबल की तरह उसको कंटिन्यू जलाया जाता है, कभी बुझने नहीं दिया जाता। और जब स्पेशल ओकेशंस होते हैं तो वहाँ परेड होती है, और खूब सारी भीड़ होती है उन्हें देखने के लिए।
2: हाँ, ऐसे टीवी में देखा।
0: टीवी में देखा है?
2: हाँ।
0: और दिल्ली कितने दिनों के लिए गए थे आप लोग?
3: 10 दिन।
0: आप लोग अकेले गए कि मम्मी पापा के साथ?
3: हम दोनों फ्रेंड्स गए थे, दीदी के साथ।
2: दीदी के साथ,
0: दीदी के साथ गए थे। अच्छा, अरे वाह। चलो, आप लोग देश की राजधानी को देख के आए। बहुत अच्छी बात।
3: हमने राजस्थान की राजधानी भी देखी,
2: जयपुर।
0: अच्छा, मतलब दिल्ली के बाद जयपुर का टर्न था।
2: हाँ।
0: तो पंकज, तुम बताओ जयपुर में तुम्हारा फेवरेट क्या था?
3: जयपुर में मेरा फेवरेट था WTP मॉल।
0: WTP मॉल? मॉल अच्छा क्यों लगा सबसे ज्यादा?
3: वहाँ बहुत अच्छा था, बहुत शांति थी, और इसके बाहर जो लाइट्स लगी हुई है बहुत स्पेशल लाइट्स है, वो बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को।
0: मतलब कुछ कलरफुल लाइट्स?
3: कलरफुल लाइट्स है, बहुत अच्छी।
0: अच्छा, तब तो देखना पड़ेगा। और जयपुर में क्या क्या देखा?
3: और जयपुर में तो कुछ खास नहीं, बस अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया।
0: हवा महल नहीं देखा?
3: नहीं।
0: अच्छा, जयपुर में हवा महल है। और जयपुर को पता है क्या कहते हैं?
3: पिंक सिटी।
0: और पिंक सिटी क्यों कहते हैं जयपुर को?
2: वहाँ की सारी दीवारें गुलाबी गुलाबी नजर आती।
0: हाँ। और पुराना जयपुर देखा आप लोगों ने?
3: हाँ। नहीं, मैंने नहीं देखा।
0: मतलब दोस्तों के साथ एंजॉय किया।
2: हाँ।

0: और भुवना, मैंने सुना है आपने बहुत सारी जगह घूमी है।
1: हाँ।
0: क्या आप कभी कंट्री के बाहर भी गए हो?
1: हाँ, मैंने यूकेजी में मस्कट गई।
0: मस्कट गए हो, तो आपको कुछ याद है मस्कट का?
1: मुझे लूलो मॉल याद है।
0: मॉल याद है, और वहाँ पे तो आप बच्चे होगे तो आपने खूब इंजॉय किया होगा।
1: हाँ,
0: है ना? और इंडिया में आप कहाँ कहाँ गए हो?
1: मैं भी राजस्थान गई, मेहरानगढ़ जोधपुर में, हवा महल, कुंभलगढ़, गुरु शिखर।
0: इतनी सारी जगह?
1: मैंने वो अरावली माउंटेन्स गई वहाँ, और मैंने जब ऊपर की इतना हवा रही थी, बहुत अच्छा फील हुआ। मैं जे बहुत प्लेजेंट था, और मैंने एक राजस्थानी ड्रेस भी खरीदी।
0: अरे वाह, राजस्थानी ड्रेस भी खरीदी, कलरफुल कलरफुल।
1: हाँ,
0: वहाँ पे आप शाम को गए होगे, सनसेट देखा कि सनराइज देखा?
1: सनसेट।
0: सनसेट देखा, कैसा लगा सनसेट देखने में?
1: बहुत अच्छा।
0: और कौन सी जगह? जोधपुर गए आप? जोधपुर कैसा लगा?
1: वो तो बहुत ब्लू सिटी है, तो इसलिए बहुत कूल रहा।
0: कूल रहा। वहाँ पे क्या क्या देखा?
1: मेहरानगढ़।
0: मेहरानगढ़, और वो क्या है?
1: वो एक महल है।
0: अच्छा, महल में आपको सबसे अच्छा क्या लगा?
1: जब हम छत में गए, वहाँ सब ब्लू सिटी दिख रहा था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: मतलब महल की छत से पूरी सिटी ब्लू नजर आ रही थी?
1: हाँ।
0: अरे वाह, फिर तो वो व्यू बहुत ही अच्छा होगा। और राजस्थान में आप कहाँ गए?
1: मैंने
0: कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।
1: हाँ,
0: है ना? उनका जन्म स्थान आप देख के आए?
1: हाँ।
0: और वहाँ तो बहुत ऊपर चल के जाना पड़ता है ना?
1: हाँ।
0: तो थके नहीं?
1: नहीं, मैंने एक वंडर भी देखा, राजस्थान का बादल महल।
0: अच्छा, और वो वंडर क्या है?
1: जहाँ हम, वो बहुत ऊपर है, हमें बहुत तेज चढ़ना पड़ेगा, और जब हम ऊपर चलेंगे तो वहाँ हम बादल को छू सकते हैं।
0: वहां से सिर्फ बादल नजर आते हैं।
1: हाँ, बहुत अच्छा।
0: बहुत अच्छा था ना? बादल महल तो मैंने भी देखा। और बताओ, कहाँ कहाँ घूमे हो पंकज?
2: और हम दिल्ली में अक्षरधाम घूमे।
0: अच्छा, हाँ, अक्षरधाम को हम कैसे मिस कर सकते हैं?
2: बहुत स्पेशल जगह है वो भी।
0: स्पेशल जगह है,
3: खास करके वाटर शो नाइट का।
0: आप लोगों ने वो देखा?
2: हाँ, बहुत अच्छा है।
0: क्या क्या देखा उसमें, हमें बताओ तो।
2: वाटर शो ऐसा है कि जब वहाँ फवारे से वाटर निकलता है, और ऐसा लगता है कि एक म्यूजिक चल रही है और उसपे वो वाटर डांस कर रहे हैं।
0: अच्छा,
3: हाँ जी।
0: और क्या उसके पहले उसमें कोई थीम भी होती है? लाइट एंड साउंड शो देखा आप लोगों ने?
2: हाँ, वही लाइट एंड साउंड शो कहते हैं उसको।
0: उसमें एक बार तो दुनिया की स्थापना, पालना और विनाश का पूरा शो भी दिखाया गया था। मेरे ख्याल से अलग अलग थीम पे वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है।
2: हो सकता है, क्योंकि हमने कुछ और देखा था।
0: हाँ, और वाटर और म्यूजिक के थ्रू वो थीम को रिप्रेजेंट किया जाता है।
3: काफी इंटरेस्टिंग था
0: ना? मजा आया
3: बहुत।
0: और वहाँ पे वो जो बड़ी सी जगह है जहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है, खुला खुला आसमान के नीचे, इतने सारे लोगों के साथ भी कितना मजा आता है ना?
2: बहुत अच्छा था। और वो खास करके टेम्पल, जिसमें ऐसा लगता है कि पूरा गोल्ड का बना हुआ है।
3: वहाँ की कैंटीन भी अच्छी।
2: इसे तो हमेशा खाने का ही।
0: नहीं, अच्छी बात है, अगर जगह अच्छी है और खाना भी अच्छा हो तो डबल डबल अच्छा हो गया ना।
3: मैं पहला कैंटीन नहीं था कहीं भी।
0: और कहाँ घूमे हो? दिल्ली के अलावा कहीं घूमने गए हो?
3: कोटा।
0: कोटा, कोटा में क्या देखा?
3: मैंने कोटा में वहाँ पे एक परमाणु ऊर्जा बनाते हैं ना अपने, जो लाइटें आती है पूरे राजस्थान में, वो देखा है।
0: अच्छा, उसको कैसे बनाते हैं आपने? हाँ, देखा?
3: हाँ, वहाँ पे अंदर गए थे हम, स्कूल से गए थे जब घूमने गए थे, तब स्कूल से कुछ प्रोग्राम था हमारे, जिम्नास्टिक होता है, तो उसमें हमारी टीम गई थी। तब सर में 6 लोग थे, तब सर हमको घुमाने ले गए, तो वहाँ पे काफी अच्छा है। कुछ चंबल करके कोटा में है, उस पानी से लाइट बनता है वहाँ पे, काफी इंटरेस्टिंग है।
0: पानी से लाइट बनती है? अरे वाह।
3: अपने ज्यादातर राजस्थान में सब जगह लाइट वहीं से आता है, परमाणु ऊर्जा।
0: अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज देख के आए आप। और कोटा में तो कोचिंग सेंटर बोलते हैं ना?
3: हाँ, बहुत।
0: मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स होते हैं?
3: स्टूडेंट। और कोटा में खास बात ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ये लागू कर रखा है कि घर को भी स्कूल बना सकते हैं।
0: हाँ, घर को भी स्कूल बना सकते हैं।
3: हाँ,
0: और वो कैसे?
3: क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, बहुत पढ़ाई काफी अच्छी है कोटा की।
0: पढ़ाई अच्छी है
3: और नॉलेज बहुत काफी है कोटा में।
0: लेकिन घर को स्कूल कैसे बना सकते हैं?
3: जैसे ना कि मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव दे रखा है।
2: मतलब अगर किसी घर में कोई एजुकेटेड व्यक्ति है तो वो खुद का क्लास खोल सकता
3: हाँ।
0: उसे अलग से परमिशन की जरूरत नहीं,
3: नहीं गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा वहाँ पे। ये हमने बहुत जब जहाँ रुके थे पास में कोचिंग सेंटर था, इतनी भीड़ हम तस्वीर से बस वही देखते थे।
0: वहाँ पे तो देश भर से स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए आते हैं ना, हाँ। दूर दूर से आते हैं। तो आप लोग भी थोड़ी पढ़ाई करके नहीं आए?
3: नहीं,
2: हम तो बस देखने गए थे।
3: हम तो बस खेलने के लिए गए थे। हमारा वहाँ पे उमेश सिंह स्टेडियम था, तो हमारे वहाँ पे प्रोग्राम था हमारा शो, मतलब जन्माष्टमी का शो था हमारा। तो सुबह जाना होता शो करने के लिए और शाम को।
0: अच्छा,
3: क्योंकि मैं जन्माष्टमी में रह चुका हूँ ना, स्टेट लेवल खेल के आ चुका हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो खेलने के बहाने आपको घूमने को मिल गया। हाँ,
3: पांचवा रैंक आया था हमारा, हमारी टीम का।
0: अरे वाह, इस पे हम लोग तालियां बजाते
3: हैं। थैंक यू।
0: तो ये पता है बच्चों, ये भी अच्छी बात है, जब आप पढ़ाई में अच्छे होते हैं, खेलने में अच्छे होते हैं, तो उसके साथ साथ भी आपको घूमने की कई अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है।
3: हाँ।
0: है ना। और पंकज, आप और कहाँ घूमने गए हो? जब आप छोटे थे क्या तब कहीं घूम के आए?
2: जब मैं छोटा था तब तो मुझे याद भी नहीं मैं कहाँ घूमने गया।
0: इतने छोटे भी नहीं,
2: ऐसी कोई मोमेंट याद नहीं है।
0: अच्छा, अपने आपका जो घर है, आप लोग आप रोड में रहते हो, ये भी तो टूरिस्ट प्लेस है, माउंट में बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं।
3: हाँ दीदी।
0: तो यहाँ के बारे में कुछ बताओ, यहाँ तो आप लोग बहुत घूमे होंगे।
2: यहाँ तो हमने हर जगह घूम रखा है।
0: तो यहाँ की जगह के बारे में कुछ बताओ।
2: यहाँ मैं सुंदर माता मंदिर घूमने गया था।
0: और वहाँ पे क्या है?
2: वहाँ पे बस एक मंदिर है, बहुत बड़ा है और फेमस मंदिर है।
0: फेमस है, बहुत पुराना है।
2: और वहाँ एक सैंड की हिल है।
0: सैंड की हिल है? अच्छा,
3: पूरा रेती रेत।
0: अच्छा,
2: इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है।
0: और भुवना, तुम्हारे घर के पास कौन सी ऐसी जगह है जो बहुत फेमस है?
1: चार मीनार।
0: चार मीनार। पहले हम सबको बताओ आपका घर कहाँ है?
1: मेरा घर तो थोड़ा दूर है चार मीनार से, मारेटपल्ली में।
0: अच्छा, और वहाँ कौन कौन सी जगह है जो आपने घूमी है?
1: मैंने चार मीनार घूमा, फिर गोलकंडा।
0: गोलकंडा क्या है?
1: वो एक महल है जहाँ राजा रहते थे, वो एक कैपिटल होता था हैदराबाद का पहले।
0: हैदराबाद का कैपिटल, ओके। और वहाँ क्या क्या चीजें हैं?
1: वो एक्चुअली रुइन हो गई, हाफ तो रुइन हो गई, इसलिए मैंने इतना कुछ नहीं देखा, फिर देख के आ गई बस
0: देख के आ गई। और आपके घर में कौन कौन सी घूमने की जगह है?
1: जब मैं छोटी थी मैं चेन्नई गई, वहाँ क्वींसलैंड गई मैं।
0: क्वींसलैंड?
1: बहुत छोटी थी।
0: वो जगह आपको याद है?
1: हाँ, फोटोज में देखी। और मैंने जू गए।
0: जू गए? ओह, जू में तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं।
1: हाँ।
0: आपका फेवरेट कौन सा है?
1: मेरा फेवरेट रैबिट।
0: रैबिट तो बहुत क्यूट होते हैं। और पंकज सैंडी, अपने शहर के बारे में हमें और नहीं बताओगे?
3: माउंट आबू हमारा काफी अच्छा है।
2: हमारा शहर तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है,
0: क्योंकि राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन।
3: हाँ, माउंट आबू। माउंट आबू को अपने राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं।
0: राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। अरे वाह। और कौन कौन सी घूमने की जगह है? अगर कोई आपके शहर घूमने आता है तो उसे कहाँ कहाँ लेके जाओगे?
3: दिलवाड़ा का जैन मंदिर।
0: दिलवाड़ा का जैन मंदिर,
3: जिसे इतिहास में पढ़ा भी जाता है।
0: वहाँ की खासियत क्या है सैंडी?
3: खासियत है वहाँ की महावीर भगवान की मंदिर 880 किलो सोने की है।
0: अच्छा। और वहाँ की जो कारीगरी वो तो देखने लायक
3: है। उन्हें लोग बुक्स में पढ़ते हैं और देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से आते हैं।
0: वहाँ की एक एक दीवार में अलग अलग नक्काशी और कारीगरी है।
2: उस
0: है ना?
2: मंदिर का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ कारीगरी नहीं की गई।
0: और कितना सुंदर और बड़ा मंदिर है।
3: हाँ दीदी, बहुत।
0: दिलवाड़ा मंदिर तो सच में बहुत।
3: और कहा जाता है कि दूसरे देश के लोगों ने शायद उसे वार करने की कोशिश करी, इस मंदिरों पे तोड़ने की कोशिश करी, पर उस मंदिर में कुछ भी एक खरोच भी नहीं आई।
0: पर एक खरोच भी नहीं आया,
3: ऐसा मेरे पापा से सुना मैंने।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत सी कहानियाँ हैं जो मंदिर से जुड़ी हुई हैं।
3: हाँ।
0: और कौन कौन सी जगह है?
3: अचलगढ़, जहाँ पर शिव जी की शिवलिंग है।
0: अच्छा, अचलगढ़ आप लोग गए हो?
3: हाँ, मैं एक बार गया था फैमिली के साथ। हाँ।
0: माउंट में तो वैसे कहीं भी घूमने चले जाओ अच्छा।
3: अचलगढ़ में पापा बता रहे थे कि वहाँ दो भैंस है, जो वहाँ पे दूध दही की नदियों बहती थी।
0: अच्छा,
3: हाँ,
0: मतलब है कि दूध घी दही सब हाँ, कुछ बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था।
3: हाँ, और वो दो भैंस पी जाते हैं, तो उनको शायद किसी राजा ने गोली मार दिया था, तो वो पत्थर के बन गए थे, अभी भी वहाँ पर है।
0: अच्छा, ऐसी कहानी मशहूर है।
3: हाँ, और हम लोग देख के अभी भी वो है ऐसे दो भैंस वहाँ पर,
0: जो पत्थर की भैंस है वो हाँ, वहाँ पे,
3: और अभी भी गोली मारी उसकी निशानी उस पे है।
0: अच्छा,
3: हाँ,
0: ये तो देखना पड़ेगा,
2: मैं भी देखना चाहता हूँ।
3: ठीक है, चलिए।
0: अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें फ्यूचर में घूमने का मौका मिले, किसी एक जगह जाने का मौका मिले, देश में या विदेश में, तो वो जगह कौन सी होगी?
3: मेरी तो अमेरिका।
0: अमेरिका? और अमेरिका क्यों?
3: बस अमेरिका अच्छा लगता है, अमेरिका जाना।
2: टीवी में अच्छा लगा।
0: टीवी में और फिल्मों में हम हाँ। अमेरिका देखते हैं और अमेरिका बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसलिए अमेरिका जाना है। और बाकी की चीजें तो अमेरिका जाके पता चलेगी
3: कि कैसा है।
0: तो सैंडी जब बहुत सारी पढ़ाई करके एक अकाउंटेंट बन जाएगा, फिर अमेरिका घूम के आएगा।
3: हाँ।
0: और हम सबको लेके नहीं जाओगे?
3: हाँ, अभी लेके जाऊंगा ना दीदी, बिल्कुल, पहले मैं जाके आऊंगा दीदी, अच्छा है तो ले जाऊंगा।
0: अच्छा, और पंकज?
2: मैं लंदन जाना चाहता हूँ।
0: लंदन जाना चाहते हो? लंदन क्यों जाना चाहते हो?
2: वो प्लेस मुझे नाम से ही अच्छा लगता है, इसलिए मुझे वहाँ देखना है कि वहाँ क्या है जो इतना फेमस है वो।
0: अच्छा हाँ, लंदन का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, जब भी हम विदेश की बात करते हैं लंदन का नाम तो जरूर आता है।
2: हाँ दीदी, इसलिए मैं भी जानना चाहता हूँ वहाँ ऐसा क्या है जो फेमस है।
0: वहाँ ऐसा क्या है जो वो इतना फेमस है, ये ढूंढने के लिए आप लंदन जाना चाहते हैं?
2: हाँ,
3: खोज करेगा पंकज।
0: ठीक है, आप दोनों साथ में जाके खोज करके आना।
3: ठीक है।
0: और भूमना, आप कहाँ जाना चाहते हो?
1: मैं पेरिस जाना चाहती हूँ।
0: आप पेरिस जाना चाहते हो? अच्छा, और पेरिस क्यों जाना चाहते हो?
1: क्योंकि मैं एक वंडर देखना चाहती हूँ इस वर्ल्ड का, ईफिल टावर।
0: अच्छा, जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनमें से एक वंडर आप देखना चाहते हो?
1: हाँ।
0: क्या किसी ने इंडिया का
1: ताजमहल
0: देखा है? देखा है? हाँ। मतलब आप आगरा गए हो?
3: हाँ, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो गांव जा रहे थे, तो बीच में आगरा ट्रेन लेट थी, तो फिर वहाँ से स्टेशन से पापा ले गए थे, 10-15 मिनट के ले गए थे हम।
0: अच्छा, तो वहाँ पे क्या देख के अच्छा लगा?
3: सबसे मस्त वहाँ की नदी, जो पास से नदी निकल रही है, काफी इंटरेस्टिंग। वहाँ की आगरा की पूरी ताजमहल है, उसका पूरा परछाई उस नदी में दिखती है।
0: नदी में दिखती है। हाँ। और वो दूर से बहुत ही सुंदर नजर हाँ। आता है ना?
3: हाँ।
0: और इंडिया के वंडर की बात की और वर्ल्ड का एक वंडर घूमना देखना चाहती है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या ट्रैवलिंग के टाइम पे कोई मुश्किलें आती हैं?
3: ऐसे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती हैं।
0: जैसे?
2: जैसे कई बार खो जाते हैं रास्ता।
3: जैसे हम दिल्ली में खो गए थे।
0: दिल्ली में खो गए थे, फिर मिले कैसे?
3: हम साथ में खोए, मतलब बस रास्ता भूल गए।
0: रास्ता भूल गए?
3: तो
0: रास्ता भूल जाए तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
3: हमने गूगल खोला।
0: गूगल खोला? हाँ, आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ है।
2: लेकिन हाँ। फिर भी मुझे एक मेन पॉइंट याद था जहाँ से हम वापस जा सकते थे।
0: इसीलिए जब आप घूमने जाए तो
3: मैं थोड़ा डर गया।
0: आप थोड़े डर गए थे कि कहीं गलत ना चले जाए?
3: हाँ, जबकि पंकज सही आ रहा था।
0: होता है कभी कभी, जब हम डर जाते हैं तो सही भी हमें सही नजर नहीं आता।
3: हाँ, थोड़ा मैं जल्दी हड़बड़ा जाता हूँ उस बात के लिए।
0: और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है?
3: कि पेशेंस रखना चाहिए।
0: हमें पेशेंस रखना चाहिए और सही रास्ता खोजने के लिए इंतजार करना चाहिए। गूगल है, आसपास के कुछ लोग हैं जो आपको विश्वास के पात्र लगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। और कभी भी एक व्यक्ति के डायरेक्शन पर ना जाके 3-4 लोगों से वो डायरेक्शन कंफर्म करें, तब ही आगे बढ़े।
3: ओके दीदी,
0: है ना?
2: हाँ दीदी,
0: उसे कहते हैं क्रॉस चेक करना। 3-4 लोग तो आपको एक साथ गलत नहीं बताएंगे।
3: हाँ।
0: है कि नहीं?
2: कुछ लोग मजाक भी करते हैं।
0: कुछ लोग मजाक कर सकते हैं या गलत बता सकते हैं, लेकिन अगर 3-4 लोगों से आपने क्रॉस चेक किया तो मतलब आप सही रास्ते तक पहुंच जाओगे, है ना?
3: हाँ दीदी।
0: और दोस्तों के साथ घूमने में ज्यादा मजा आता है कि फैमिली के साथ?
3: दोस्तों के साथ।
0: और पंकज?
2: फ्रेंड्स के साथ।
0: भुवना?
1: फैमिली के साथ।
0: भुवना को फैमिली के साथ ज्यादा मजा आता है। फैमिली के साथ मजा नहीं आता पंकज और सैंडी को?
3: मजा आता है पर उतना नहीं,
0: क्योंकि दोस्तों के साथ ज्यादा मस्ती करते
3: हैं।
0: लेकिन फैमिली के साथ भी बहुत मजा आता है, क्योंकि उनके साथ वो टाइम हमें घर पे कभी कभी नहीं मिल पाता, सब लोग अपने अपने जॉब में व्यस्त होते हैं, इसीलिए जब भी फैमिली को लेके जाओगे तभी भी और इन्जॉय करने की नेक्स्ट टाइम कोशिश करना।
3: ठीक है दीदी।
0: और सैंडी भी हमें कोई जगह के बारे में बताने वाले है क्या?
3: हाँ, अंबाजी मंदिर, जो कि हम पैदल गए थे घूमने के लिए।
0: पैदल कितनी दूर?
3: यहाँ से ज्यादा दूरी पे नहीं है। मैं और पंकज जब अंबाजी मंदिर में नवरात्रि चलते हैं तो काफी लोग पैदल जाते हैं, अच्छी मान्यता होती है, तो हम लोग भी फर्स्ट टाइम पैदल पैदल गए थे।
0: पैदल पैदल गए थे?
3: हाँ, फिर शुरू शुरू जाके वहाँ हालत खराब हो गई थी हम लोगों की, दर्शन तक ये नहीं सो गए,
0: मतलब इतना चले कि थक गए।
3: थक गए।
2: हाँ, तो बहुत मजा आया।
3: हाँ,
0: दोस्तों के साथ सफर में भी ज्यादा मजा आता है घूमने से ज्यादा।
3: फर्स्ट टाइम पैदल पैदल गए थे हम लोग कहीं।
0: पैदल पैदल
3: पता
0: नहीं लगा था आप लोग को पैदल चल के जाने में?
3: रात को 8 बजे निकले थे ना, फिर
2: 5 घंटे
0: पैदल चले थे
3: लगातार।
0: ठीक है बच्चों, आज हमने ट्रैवलिंग के बारे में बहुत सी बातें की।
3: हाँ दीदी,
0: अभी तो तुम लोग छोटे छोटे हो और इतनी सारी जगह घूम के आए हो, और जब और बड़े हो जाओगे तो और जगह जब घूमने जाओगे तो इंजॉय करने के साथ साथ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की भी कोशिश करना।
3: हाँ
2: दीदी, अभी तो सिर्फ इंडिया की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है,
0: बाद में विदेशों की भी करेंगे।
3: हाँ। हाँ।
0: और जहाँ भी जाएंगे उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे, ताकि वो हमेशा हमारे और भी काम में आए। ओके, आज की ये बातचीत हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।

तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: गोपी चंद, पात्र परिचय आकाश, वेदांत, आदित्य प्रकाश, आदित्य यश।
1: क्या तुम भूतों को मानते हो?
2: भूत सर सर सर क्या?
1: भूत खेड़ी में, चलो हमें आज ही निकलना होगा।
0: रूप चंद और गोपी चंद भूत खेड़ी पहुँच जाते हैं। सरपंच और गांव वालों से पूछते हैं,
1: सरपंच जी आखिर बात क्या है? मामला कुछ गड़बड़ा सा लग रहा है।
3: क्या कहें बाबूजी, जब से तांत्रिक दमदम बाबा को खोपड़ी मिली है तब से कभी कुएं का पानी लाल हो जाता है तो कभी गांव के तालाब में बाबा कुछ पत्थर फेंक देते हैं तो आग निकलती है। बाबूजी जरूर गांव पर भूत प्रेत का साया है, इसलिए दमदम बाबा साधना करेंगे गांव की खुशहाली के लिए।
4: सर मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, यह सब तो कोरी बकवास है।
3: हुजूर ऐसा न कहिए, दमदम बाबा अभी आपको तालाब में आग निकलते हुए दिखा सकते हैं और कुएं का लाल पानी तो आप देख ही सकते हैं।
1: तो चलो फिर बाबा के पास चलते हैं।
0: गांव के तालाब पर तांत्रिक दमदम बैठा था। पास ही एक बर्तन में मिट्टी के तेल में कुछ ठोस टुकड़े पत्थर रखे हुए थे। बाबा ने कुछ टुकड़े उस बर्तन में से उठाए और पानी में फेंके, सचमुच आग की चिंगारियां निकल रही थीं।
2: गोपी जी वाकई यहाँ भूत परेत है, चलिए मैंने तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया है, भाग चले।
1: रूपचंद ये क्या बचपना है, तुम्हारी एक नादानी से गोपीचंद का नाम बदनाम हो जाएगा।
2: सर मैंने कातिलों को पकड़ा, चोरों व आतंकवादियों को जकड़ा, लेकिन भूत का यह नया कैसा है, इसीलिए डर लग रहा है। भूत क्या?
1: जैसे मेरे कहने से तुम एकदम डर गए, यही डर इन गांव वालों के दिमाग में घर कर गया है।
0: गोपी चंद और रूप चंद बाबा की अंधेरी डरावनी कुटिया के अंदर जाते हैं। बाबा अपनी साधना में लीन थे।
5: सर देखिए बाबा कितने ज्ञानी हैं, आज भी केमिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं।
1: ओह तो ये केमिस्ट्री सारी भूत प्रेतों की हिस्ट्री है।
0: गोपीचंद सरपंच और गांव वालों को बुलाते हैं।
1: सरपंच जी डरने की कोई बात नहीं है, आपके गांव का भूत मिल गया है। ये रहा दमदम बाबा, यही आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं।
2: जी कैसे?
1: भाइयों रसायन शास्त्र से पानी में आग लग जाती है, ये रहे सोडियम के टुकड़े जिन्हें पानी में डालने पर आग लग जाती है, और कुएं का पानी भी इसने किसी रसायन से लाल किया है।
6: गोपी जी मुझे माफ कर लीजिए, पैसों के लालच में मैंने गांव वालों को मूर्ख बनाया।
1: साथियों विज्ञान से आदमी असमान में उंड सकता है और पानी में कुछ रसायनों से आग लगा सकता है, तो ये भूत प्रेत नहीं विज्ञान है।
7: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका

पुराना प्रेम का राग पुराना पुराना पुराना है यमुना पगला दीवाना।

0: सोना।
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन, बड़ी देर है
0: कब आएगा। अरे अरे, अरे।

0: दफा वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी गेस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।